0: नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की।
1: तो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक वो है समीर जी।
0: ठीक है मैम, मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आया और हमारे सुनने वालों को भी बिल्कुल समझ में आया होगा कि जो मेरे को मिला अभी तक आपने जो कहा उसमें कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या जैसा भी वो बिहेव कर रहा है, मे बी इरिटेटिंग, मे बी डिस्गस्टिंग, मे बी यू नो अपमानजनक कुछ हरकत है या कुछ बदतमीजी है, आपने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शांति से सोचिए, व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग इन दिस मैनर। अब मैम होता क्या है कि हम, मैं अपनी बात करूं एक सेकंड के लिए, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं और मुझे कोई इस तरह से करे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्सा ना कंट्रोल नहीं होता मैम, तो क्या होता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है ये समझने के लिए कि वो व्यक्ति ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है करके, उसके साथ क्या कंडीशन है, मे बी दूसरा व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब होगा, माइट बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू हर्ट मी, लेकिन मैं नहीं समझ पाता तो मैं गुस्से में फिर रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हूँ, रिएक्ट कर देता हूँ, मैं उसको भी दो गाली दे देता हूँ, लड़ जाता हूँ। सो वहां पर हम क्या करें मैम, मुझे ये प्रैक्टिकल बताइए ना, व्हाट शुड आई डू।
1: हाँ ठीक है, अगर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं ना तो बाद में आपको गिल्ट आता है,
0: आएगा
1: पछतावा
0: आएगा।
1: तो पछतावा अगर नहीं आना है तो यू हैव टू वेट, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, थोड़ा शांति से वो बकने दो, जो बकते बकने दो, जस्ट लिसन टू दैट एंड आफ्टर सी इफ इट इज अ वेरी क्लोज पर्सन लाइक योर फैमिली मेंबर, फिर जाके उनको बोल सकते हैं सी आई डिडंट लाइक व्हाट यू आर टेलिंग बट देयर मे बी सम रीजन दैट यू आर टोल्ड, सो बाय दैट टाइम वो जो घर वाले हैं वो शांत हुए रहेंगे तब तक, एंड देन दे विल गिव अ प्रॉपर कन्विंसिंग आंसर फॉर इट, then everything is solved. But if it is an external person whom you are not very close to और वो बोलता है, तो बोलने दो, वो बोलने दो, उसकी अपनी सोच करके छोड़ देना है. That is my way of responding. It keeps you cool. वो guilt जो होता है ना, पछतावा होता है, that is very very hurting. तो पछतावा से अलग रहना है तो you think. That is why you need that internal thinking. हम शांत रहे, वाई शुड आई स्पॉइल माई मूड बिकॉज समबड़ी इज टेलिंग दैट आई फील दैट, हर एक आदमी वो नहीं हो, दैट कम्स विथ सम स्पिरिचुअल नॉलेज बिकॉज यू लर्न टू बी कंपैशनेट, यू लर्न टू बी गुड इन योर वर्ड्स डीड्स एवरीथिंग एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल दीज थिंग्स वी रिस्पॉन्ड नॉट बिकॉज दे आर हर्टिंग अस. We may be having some tension or stress, and at that moment we can't decipher oh, क्यों बोल रहे हैं, हम immediate react करना है, वो हमारा सोच है, not the opposite party. तो ये guilt से avoid करना है and proper thinking. It will give us an exact thinking, the way how we should proceed with that. That comes with adhyatmic knowledge. नॉर्मल मैन वो नहीं आगा, इट कम्स विद स्पिरिचुअलिटी.
0: ओके, आई गेट इट मैम. प्लेन एंड सिंपल, आई एम रियली सॉरी, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज हियर विद माय मोस्ट सिंसियर एफर्ट्स. मुझे आपने जो अभी बताया उसमें मुझे मेरे काम की एक बात सुनाई दी. देखिए मैं एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल रूटीन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे रेडियो पर, तो मुझे सुनाई दिया कि अगर किसी भी तरह से कोई आदमी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, सो आई शुड नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, आई शुड जस्ट वेट, अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को मेरे को दबा के पकड़ के बस थोड़ा सा वक्त गुजारना है. आई शुड जस्ट लेट दिस टाइम पास फॉर यू नो कपल ऑफ आवर्स मे बी, और couple of minutes maybe, couple of days maybe.
1: Correct.

0: And then somebody would come to me and some situation would happen where the things would actually be explained to me. कि ऐसा एक्चुअली इस वजह से हो रहा था, अच्छा किया आपने रिएक्ट नहीं किया. दिस थिंग साउंड्स गुड टू मी मैम, दिस थिंग साउंड्स गुड टू मी. ये एक अच्छी टीचिंग मेरे को मिली. थैंक यू सो मच फॉर दैट.
1: थैंक यू.
0: ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल बात करते हैं. थियोरेटिकली आपने हमें बता दिया.
1: हाँ जी.
0: आपने तो इतनी प्यारी सी खूब बड़ी सी जिंदगी जी और अभी बहुत बड़ी जिंदगी और आपके सामने है. तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी थी वो कहाँ से शुरू हुई? हु टोल्ड यू अबाउट स्पिरिचुअलिटी?
1: अच्छा, अभी ये ना, इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी पाथ, बट इट कम्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन विच फैमिली यू आर बॉर्न इनटू. ये मैं अपने जिंदगी के बारे में बोल रही हूँ, इट मे नॉट अप्लाई टू एवरीवन,
0: सॉरी,
1: बट इन माई केस इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम.
0: Okay.
1: मेरे घर में दादी माँ थी, पापा मम्मी, तो इन दैट फैमिली रोज पूजा पाठ करते थे. एंड जनरली समीर जी ऐसे सिखा देते थे घर में कि यू मस्ट नॉट हर्ट एनीबडी, यू मस्ट नॉट डू बैड टू एनीबडी, कुछ गलत किया तो भी एक सॉरी बोल दो. इट इज थॉट एंड इट इज नॉट बाय एग्जाम्पल. What the elders do, a child learns from that, looking at it.
0: Okay.
1: तो वो सीख देख देख के हमने सीख लिया. It is just plain सीखना, no questions asked, सीख लिया. फिर बड़े होते गए, then we realize there are certain times when we hurt anybody, के बाद में sorry बोल देते हैं. But in spiritual knowledge, you come to really seriously think of why we should not do that, why we should not hurt, why we should not tell a lie. वो spiritual knowledge से मिलता है. कभी कभी झूठ ना अच्छाई के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है.
0: बोलना पड़ता है.
1: Like वो महाभारत में अश्वत्थामा अतः बोला ना, अतः कुंज रहा. So that was actually a lie which Lord Krishna told. But somehow he had to make the Pandavas win.
0: Correct.
1: तो वो हुआ. तो ऐसे जगह में हम बोल देते हैं, बट लेटर ऑन वी रियलाइज दैट वो झूठ, इट वाज नॉट हर्टिंग एनीबडी एज सच. ठीक है, बोल दिया. अभी बहुत बार बोल देते हैं हम, सोचो समीर जी बोलना नहीं चाहिए. अभी किसी ने हमको बुलाया 8 बजे आओ, और हम 7:30 बजे तक घर में बैठे हैं. फिर वो लोग बुलाते हैं, बेचारे कहाँ हो, ऐसे झूठ मूठ बोल देते हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं. बोलता देते हैं, बट वो गिल्ट होते हैं, क्यों यार बोलना, बोलना था ना, देर से उठे, हुआ नहीं, सॉरी बोलना था. बट वो होता नहीं. इमीडिएटली वी टेल दैट व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन स्पिरिचुअलिटी वी लर्न कब झूठ बोलना है, विच झूठ इज नॉट हर्टिंग एनीबडी, और एंड व्हाई डू वी हैव टू से दैट. सच बोल दो ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ऑब्जेक्ट पर थोड़ा डांट लेंगे हमको, ये बंदा को टाइम पे आना नहीं होता है, उतना ही बोलेगा ना. बट वी विल बी फ्री ऑफ दैट गिल्ट, क्यों मैंने झूठ बोला. तो ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज से आता है.
0: लेकिन मैम, मतलब मैं आपसे मतलब मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा था कि आपको कैसे मालूम पड़ा, वेयर डिड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी? मॉम ने, मम्मी पापा ने बोला, रिलेटिव ने, या कोई गुरु कहीं पर मिल गया?
1: नहीं जी, मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला है. सी, व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी कम अक्रॉस वेरियस पीपल एंड आवर लाइफस्टाइल चेंजेस. अभी मम्मी पापा के घर में एक टाइप ऑफ लाइफस्टाइल होता है, शादी होने के बाद यू आर पुट इनटू अ डिफरेंट फैमिली ऑल टुगेदर, तो तभी यू मस्ट चेंज योर वेज ऑफ बिहेवियर, change your ways of thinking. वो सब होता है, गुस्सा आता है, but we shouldn't show our anger to anybody. वो तो see, हमारे time के लड़की लोग छोटे उम्र में शादी हो जाते हैं. You have to adhere to certain protocols after marriage.
0: तो
1: protocol बनते रहते, that gives you a lot of stress. अंदर तो stress होता है ना, which will make you unhappy, sad, all these things. तो होता था. But later on, we got one, हम कांदिवली में रहते थे, बॉम्बे में एक जगह है, वहाँ एक योगा मास्टर था.
0: ठाकुर विलेज या ठाकुर कॉम्प्लेक्स?
1: ठाकुर में नहीं, वेस्ट में थे हम।
0: अच्छा ओके,
1: अंदरवली वेस्ट में।
0: ओके,
1: वो वहां तो योगा मास्टर के पास गए थोड़े दिन, हेल्थ रीजंस के लिए गए, बट देयर आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेडिटेशन, हाउ थिंकिंग, कंट्रोलिंग योर थॉट्स कैन डू वेरी मच गुड टू योर लाइफस्टाइल। तो उसमें आया, सो यू कंट्रोल योर थॉट्स, बी कूल, तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और कामनेस आता है बॉडी में। तो उससे स्टार्ट हुआ। फिर बाद में आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, फिलोसॉफिकल बुक्स, लाइक देयर वर ग्रेट सेंट्स लाइक शिरडी के साई बाबा, उनके उस सच्चरित में बहुत सारे वेज लिखे हैं वेयर यू कैन लीड अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ, नॉट मटीरियल थिंग्स, थॉट वाइज। तो इफ योर थॉट्स आर क्लीन, देन योर लाइफ विल बी वेरी पीसफुल। तो दैट इज हाउ आई केम इनटू दिस। एंड नाउडेज आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, नॉट दैट सम, सी वो क्या होता है, कभी कभी बुक्स रीड करते हैं, बट टू बी फ्रैंक आई डोंट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली, आई अप्लाई इट इन माई लाइफ, इफ इट इज रियली बेनिफिशियल फिर आई अडॉप्ट इट, नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ठीक है रेडी क्या हो गया। तो दैट इज कंटिन्यूड।
0: ऑलराइट, आई गेट इट। This is certainly a beautiful, beautiful journey in anyone's life. Lalita ma'am जो है यहाँ पर हमें अपनी life की story बता रही हैं, लेकिन हम सब relate कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भी वहीं थे, हमने भी वो समान देखा था, समाज देखा था, आसमान देखा था, परेशानियाँ झेली थी, meditation किया था, somebody came into our life and then इस तरीके से हमको समझ में आया। आई गेट इट। चलिए ललिता मैम, मैं आपसे परमिशन चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जिसे हम एक प्यारा सा भजन यहां पर सुन सकें और आपकी बातों पर मेडिटेट कर सकें, थोड़ा सोच सकें।

0: मैं किसी भी डेटी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी भगवान पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें धर्म समझाइए मैम, धर्म क्या है और वो क्या आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, सेपरेट है, व्हाट अबाउट इट? मतलब स्पिरिचुअलिटी और धर्म, रिलीजन, दोनों को जरा एक बार कनेक्ट कीजिए मेरे लिए.
1: ओके. एक्चुअली वो एक नहीं है, लेकिन आप बोले ना वो कनेक्टेड है. धर्म इज मोस्ट मोर ऑफ रिचुअल्स एंड रूल्स. एक एक धर्म में एक एक रूल्स होता है, इस टाइप से पूजा करना चाहिए, इस हवन करना चाहिए, ये मंदिर जाना चाहिए, वो मंदिर के डीटी में ऐसा पूजा होना चाहिए. दीज आर ऑल फिक्स्ड रूल्स विच रिलीजन टेल्स अस. स्पिरिचुअलिटी हैज नो फिक्स्ड रूल्स. इट इज इंटरनल. यू गो इनसाइड एंड सर्च फॉर पीस. धर्म अपने आप में दे शो द रूट. वो राह दिखाता है, बट स्पिरिचुअलिटी राह दिखाता नहीं है. इट मेक्स यू गो इनसाइड एंड यू फाइंड आउट द पीस. व्हाट इज गिविंग यू द पीस? दैट इज धर्म. धर्म इज डेफिनेटली, आई डोंट सी इट इज सेपरेट. बोथ लीड फॉर पीसफुल लाइफ, हैप्पीनेस, दोनों एक ही है. बट both mean the same, but the road is different. Road of dharma is you follow good conduct, go to your mandir jana, havan jana, wo karna, ye karna, wo sab ek ek dharma wo bolta hai. Some dharma don't believe in idol worship at all. They only follow certain set rules. So dharma is more of a set of rules which you follow. Spirituality is the inner search for that truth. हम क्यों है, मैं कौन हूं, वॉट इज द एम ऑफ माई लाइफ, वाई एम आई हियर, तो वो स्पिरिट आता है. धर्म विल नॉट टीच यू दैट. इट इज बाय बर्थ यू बिलोंग देयर एंड यू फॉलो सर्टेन रूल्स. वो है स्पिरिचुअलिटी. यू कैन अडॉप्ट एट एनी टाइम. धर्म इज यू आर बॉर्न विद दैट.
0: ऑलराइट जी, आई गेट इट. बहुत ही सिंपल सी शब्दों में मैम ने जो चीज़ बताई है. दोस्तों देखिए, मैं अपना इंटरप्रिटेशन साथ साथ यहाँ पर बताता चल रहा हूँ. एक बिल्कुल साधारण मनुष्य होने के नाते मैंने क्या समझा वो बता रहा हूँ. मैम ने बताया कि धर्म जो है रास्ता है एक अच्छी जिंदगी जीने का, और स्पिरिचुअलिटी है अपने अंदर झांकना, अपने को पहचानना. मैम ने कहा ना, हम कौन हैं, यहाँ क्यों हैं, क्या कर रहे हैं हम, ये सब जो है ये स्पिरिचुअलिटी में आ गया, अध्यात्म में. और जीवन जीने का अच्छा तरीका, स्वच्छ सुंदर पावरफुल प्योर पायस तरीका जो है वो है धर्म. धर्म हमें बताता है, मैम ने बताया, धर्म के साथ हम पैदा होते हैं और स्पिरिचुअलिटी हम कभी भी अपना सकते हैं. आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल. दिस इज क्यूट कि हम स्पिरिचुअलिटी कभी भी अपना सकते हैं. अमेजिंग. तब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात का एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहां पर आता है. मैम हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल बात करें जिससे साधारण लोगों को भी ये प्रोग्राम सुन के समझ में आए, उनको ऐसा ना लगे कि कोई साधु संत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, है ना. प्रैक्टिकल बात जो मेरे दिमाग में आई मैम, आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी हम जिंदगी में कभी भी अपना सकते हैं, ठीक है. धर्म हमारे साथ पैदा हुआ था, उसने हमें रास्ता बताया, ठीक है. नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज कि मैं आपकी बात सुनकर आज बहुत इंप्रेस हो गया, और इस प्रोग्राम को सुनकर 10 लोग और बहुत इंप्रेस हो गए, और उन्होंने डिसाइड किया ऑल राइट, ललिता मैम ने कहा है चलो लेट्स बी स्पिरिचुअल. ऐसा फैशन नहीं, एक ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, सचमुच उनको लगा अपनी जिंदगी को शांत करना है, यार बहुत गुस्सा आता है, लेट मी जस्ट बी पीसफुल एंड काम. तो मैम मेरे को प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए, हाउ कैन आई बी स्पिरिचुअल, 1 2 3 बेबी स्टेप्स मुझे बताइए ना, क्या करूं मैं.
1: ओके, फर्स्ट स्टेप इज व्हाई डू यू वांट टू बी स्पिरिचुअल. वो क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछ लो, व्हाई डू आई वांट, वो तो आंसर मिल जाएगा. आपको हैप्पीनेस चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए, then what gives you happiness, wo dhoondo. किसी को म्यूजिक में हैप्पीनेस मिलेगा, म्यूजिक सुनने में मिलेगा, किसी को अब खुद गाने में मिलेगा, किसी को कुकिंग में मिलेगा। तो यू ऑप्ट फॉर समथिंग विच गिव्स यू प्योर हैप्पीनेस। उसके बाद दिस इज फॉर अ ले मैन। मैं नहीं बोलती हूँ कि ऑरेंज वस्त्र पहन के हिमालय में जाके बैठ के जप करो, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी इन माई पार्लेंस। मेरे हिसाब में घर में बैठे बैठे हाउ टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री। तो चूज समथिंग विच गिव्स यू इमेंस प्लेजर, स्टार्ट डूइंग दैट वन बाय वन। ऐसा नहीं मुझे म्यूजिक पसंद है, खाना बनाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एट वन गो, स्टार्ट एट बेबी स्टेप। अगर म्यूजिक पसंद है, लुक आउट फॉर अ टीचर, सीखो अच्छा म्यूजिक एंड गिव अ फ्यू आवर्स और इवन अ फ्यू मिनट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट म्यूजिक। वॉट इज मेडिटेशन? इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑन समथिंग। अभी हमारे गुरु जी सब क्या बोलेंगे, द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज अपना श्वास, ब्रीदिंग। यू नीड नॉट सर्च फॉर ब्रीदिंग, अपने आप में ब्रीदिंग होता है। बट हाउ मेनी ऑफ अस कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर ब्रीदिंग? करते नहीं है। सांस तो हम सोने के टाइम भी सांस लेते हैं, जागते भी सांस लेते हैं, काम करके भी सांस लेते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस पे अटेंशन टू अवर ब्रीदिंग? तो वो पहले सिखाते हैं, पे अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग। ब्रीथ करते टाइम 50 जगह में थॉट जाएंगे, वापस लाओ ब्रीदिंग में। तो सेम वे व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, कुकिंग हो, सिलाई हो, कुछ भी हो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। आधा घंटा अगर कुक कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेट करो। मैकेनिकल जाना नहीं, इसमें हल्दी डालना, नमक डालना, मैकेनिकल है। लेकिन कॉन्सेंट्रेट अगर करते हैं तो उसमें एक जो जान डालते हैं ना कुकिंग, तो वॉट एवर यू डू कॉन्सेंट्रेट एंड डू, पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू वॉट यू डू, दैट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस। तो पहला सवाल है हैप्पीनेस।
0: ओके,
1: वंस यू गेट दैट हैप्पीनेस, स्ट्रेस भी निकल जाएगा। स्ट्रेस मेक्स यू अनहैप्पी, अनहैप्पीनेस गिव्स यू स्ट्रेस। तो हैप्पी हो जाएंगे अगर हम हैप्पी है सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज डू वॉट इज योर ड्यूटी। ऐसा नहीं बोझ करके वो ड्यूटी नहीं करना है। अगर हमारा ड्यूटी ये है तो करते रहो, एंड इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू इट, थॉट्स इन टू इट, बिकॉज फॉर मी स्ट्रेस फ्री शांत लाइफ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू दैट, इट गिव्स यू कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी। तो इट इज प्रैक्टिकल, यू डू यू विल नो इट। ये अभी सिखा नहीं सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव टू डू इट। बैठे रहो एक जगह में, कुछ नहीं, सुबह बैठो एक जगह में बैठो, हाउ मेनी ब्रेथ यू आर टेकिंग इन 1 मिनट,

0: कॉन्सेंट्रेशन है। तो हर जॉब में, हर काम में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते रहो तो ऑटोमेटिकली यू विल बी हैप्पी। हैप्पीनेस अगर आ गया तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा।
1: ऑफ कोर्स,
0: तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप।
1: ठीक है मैम,
0: नेक्स्ट स्टेप, सपोज यू नीड मनी। अभी मुझे मनी चाहिए चाहिए, ट्राई मीन्स ऑफ मेकिंग दैट मनी, फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ हुनर तो दिया ही है, उन्होंने किसी को ऐसे नहीं भेजा है। कुछ टैप दैट, फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, वो करो, मनी भी मिल जाएगा। तो एनीथिंग दैट डन विद पैशन एंड द एम, क्यों चाहिए ये, तो आपको वो भी अचीव होगा। मेरे पास नहीं है, ऐसा बोल के बैठने से नहीं होगा। आई विल ट्राई टू मेक इट, आई विल वर्क हार्ड टू मेक। दिस आर स्मॉल स्टेप्स बिफोर यू रियली गो इन टू दैट स्पिरिचुअलिटी, सिट इन वन प्लेस एंड मेडिटेट फॉर हाफ एन आवर। इन एनी फैमिली वन पर्सन कैन नॉट रन अवे एंड डू दिस, बट आधा घंटा तो मिल जाएगा ना दिन में, उसमें करते रहो। तो दीज आर स्मॉल स्टेप्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन थिंग, डू एवरीथिंग विद पैशन। अगर आपको अच्छा नहीं लगा करना तो उस समय मत करना, देयर विल बी अ टाइम यू विल लाइक टू डू दैट, तब करना। हर बार मूड नहीं होगा करने के लिए। अभी बैठे रहो, आपको गाना गाओ बोलेगा तो नहीं गाएंगे, नहीं गा। इवन पोएट्री जो लिखते हैं ना, किताब लिखते हैं, उनको भी एक टाइम होता है, रात के टाइम पेंटिंग करते हैं, नहीं तो दे विल, वो मूड आते हैं तभी वो लोग, दे विल डू देयर बेस्ट। तो टू डू योर बेस्ट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन थिंग। तो व्हाट आई डू इज, अभी मुझे नहीं करना है, आई विल गिव माई सेल्फ टाइम, अपने आप को मैं टाइम देंगे। आई वर्शिप माई सेल्फ, वर्शिप योर सेल्फ, बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, डोंट वरी अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। लोग तो सोचेंगे, वाई शुड यू वरी,
1: राइट?
0: समीर जी ये सब मेरे उम्र में मैं बोल लूंगी, बट फॉर ए यंगस्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। तो स्लोली स्लोली विद स्मॉल स्टेप्स कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, डू वॉट यू लव टू डू, इट इज हाफ एन आवर डे, पूरा दिन में आधा घंटा निकालो, अपन जो बहुत अच्छा लगता है, विच गिव्स यू हैप्पीनेस, डू दैट। किसी किसी को ऐसे चुपचाप कुर्सी में बैठे रहेंगे, कुछ ना करेंगे, उनको आराम मिलता है, दे फील फ्री, स्ट्रेस फ्री, वो भी करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो दैट इज हाउ इट बिल्ड्स।
1: ओके, ऑलराइट, आई गेट इट। सिंपल मेथड है, उनको ललिता मैम ने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन किया है दोस्तों, विच एक्चुअली मेक्स अवर थॉट प्रोसेस इजी, सिंपल एंड क्लियर। जैसा उन्होंने कहा कि अपनी पसंद का कुछ भी काम, चाहे दिन में 5 मिनट भी मिले, करिए। इस बात को तो मैं भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैम। कई कई मित्रों को बोलता रहा जो लोग गाते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, गुनगुनाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ, अरे यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में पूरे दिन काम करते रहते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, फिर भी अपने लिए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट यार, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट 5 आवर्स, 5 मिनट किधर पे भी कोने में ऑफिस में बैठ जाओ, एंड देन डू व्हाट यू लाइक, मे बी सिंगिंग है ना, थोड़ा सा गुनगुनाइए, बस उतना ही बहुत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आई मस्ट थैंक यू ललिता मैम टू यू नो एनलाइटन मी फॉर दिस रीज़, फॉर दिस यू नो थिंग, बिकॉज आई एम हैप्पी अबाउट इट। मेरे को जो पसंद है ना मैम, मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन करता हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी लाइक टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू द पीपल लाइक यू,
0: एब्सोल्युटली
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम मेकिंग रेडियो प्रोग्राम्स एंड टॉकिंग टू पीपल, लिसनिंग टू देम, लर्निंग समथिंग न्यू।
0: So, and also, yeah. समीर जी मैं बोलती हूँ, मेरी बेटी तो बहुत सारी चीज करती है, उसने बोला अम्मा आप करोगी ये, मैं बोले हाँ बिल्कुल करूंगी, एंड विदाउट एनी थॉट बिल्कुल करूंगी बोल दिया, फिर बाद में आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, बिकॉज़ क्या पूछने वाले हैं आप, तो मुझे समझना आना चाहिए। एंड अनदर थिंग लैंग्वेज, देन शी सेड नहीं अम्मा हिंदी यू नीड नॉट टॉक फुल्ली इन हिंदी, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात कर लो चलेगा। pressure, okay. What time? But yeah. Now I am feeling very, very relieved.
1: Yeah.
0: Samir ji, aapse baat karke bahut halka mehsoos karti hu main.
1: Wow, thank you. Acha, ma'am, seriously, I am getting a message in your message from you ki agar mere se baat karke koi bhi thoda sa relax ho pa raha hai, relieve ho pa raha hai, thoda sa peaceful ho pa raha hai, then I consider my life is worth it. Ho gaya.
0: Absolutely.
1: Baba Bholenath ne mere ko sahi jagah de diya. Okay, I'm done. Thank you.
0: Chaliye. Thank you.
1: Ma'am, thoda sa rukte hain. We'll take a pause and we'll listen to this beautiful, calm, peaceful bhajan. We'll come back.

0: बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच. आपने हमें आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन बताया, धर्म का डेफिनेशन बताया, दोनों के डिफरेंसेस बताए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताए धर्म का और आध्यात्मिकता का. देन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बेबी स्टेप्स बताने के लिए कि हम स्पिरिचुअल कैसे हो जाएं, वो भी आपने हमें सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करें. एंड देन यू एक्चुअली मेड अस फ्री. किसी भी आपने मेरे को प्रोटोकॉल में बांधा नहीं. आपने कहा जब भी दिन में फील करो कि ये करना है उधर करो.
1: बिल्कुल.
0: गरुआ वस्त्र पहन के पहाड़ पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है स्पिरिचुअल होने के लिए, है ना. बी अ नॉर्मल रूटीन पर्सन, काम पीसफुल पर्सन. गुस्सा आए उसको थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन करो. ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मेरे को समझ में आ रही है. आई रियली लाइक इट. एंड दोस्तों, आप लोगों के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये तीन चार प्रैक्टिकल एडवाइसेस जो ललिता मैम ने दी हैं, दीज आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल टिप्स टू लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली. अब एक और वर्ड आ रहा है मैम मेरे दिमाग में, जो आपने अभी भी थोड़ी सी देर पहले बोल भी दिया, तो आई वांट टू नो अबाउट इट. मेडिटेशन, ध्यान. ठीक है, मेडिटेशन ध्यान हो गया, हम ओम ओम ओम करके बैठ जाए, वो भी एक, आई मीन आई डोंट नो, अभी आप मुझे बताएंगी. एंड प्रेयर, प्रार्थना करना, है ना, आरती गाना या कीर्तन करना या जो भी है. सो मेडिटेशन और प्रेयर में अंतर बताइए मैम. एंड क्या ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, व्हाई?
1: ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. प्रेयर जो है वो भगवान से बातें करना है. एक्चुअली इट इज प्रेयर. प्रेयर में हमारे स्कूल में सिखाया, इट इज अ कॉन्वर्सेशन विथ योर गॉड. अभी भगवान को कौन सा, अभी प्रेयर को एक भाषा नहीं होता है. यू ऑलवेज टॉक टू द लॉर्ड इन योर कंफर्ट लैंग्वेज. अभी माई मदर टंग इज तमिल, बट भगवान से जब बात करते हैं तो इंग्लिश में ही बात करते हैं.
0: वाओ, ओके.
1: गॉड गिव मी दिस, गॉड होप एवरीथिंग गोज वेल, इंग्लिश में आता है, तमिल में नहीं आता है, बिकॉज एडुकेशन इंग्लिश में हुआ है ना. तो वो भाषा आता है. एंड वी हार्डली वी रियलाइज भगवान का भाषा क्या है. डज भगवान हैव अ भाषा? नो. वी जस्ट पुट अवर थॉट्स, अवर फीलिंग्स, सब भगवान के पास. Whenever we go to the Lord, most of the times before, see, stage comes when first you thank the Lord for everything.
0: Correct.
1: नहीं तो हमेशा बचपन से क्या है, you go only for asking something. बच्चे लोग परीक्षा में इजी पेपर आना चाहिए, पास होना चाहिए, मुझे अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, घर में सब सुख शांति होना चाहिए. We only keep asking. So prayer is just talking to the Lord, give your feelings to the Lord. वो है. एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस वो भगवान बेचारा वो सुन लेगा. एंड ही विल वर्क टूवर्ड्स इट, शांति देगा. एंड वी गेट दैट पीस, दैट कॉन्फिडेंस दैट भगवान हमको ठीक करेगा.

0: That is prayer. You ask the Lord. He is just like a Abhichare. So, vaisa hai, Bhagwan ke saath baat karna. The conversation with the Lord is prayer for me.
1: Okay.
0: मन दुख हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो जस्ट दिया जला और भगवान को बोलो, भगवान ये हुआ है, वो है प्रेयर. मेडिटेशन जो है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, हम अपने अंदर के थॉट्स को खोज लेते हैं. वी सर्च व्हाई दीस थिंग्स हैपन, व्हाई वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, एंड देन वी ओनली of mind when we meditate, because we are concentrating only on one thing. Abhi hamare man bahut chanchal hota hai, wo ek bar America mein hota hai, abhi idhar hota hai. So it is a very very chanchal bolte hai na, you can fickle. But if you meditate, that fickleness will go away. You will start thinking only on one point.
1: Okay.
0: So slowly slowly it will go on increasing. Meditation aaj 5 minute karo, 10 minutes, but it will lead you to the same happiness and peace and all these things as a prayer. But dono alag tarike hai jo shanti khoj karte hai na, jo shanti. Abhi prayer na, aaj subah mein pray karo, dopahar mein jaake jhagda bhi kar sakte hain.
1: Okay.
0: Hota hai.
1: Okay.
0: In meditation, people who are really meditative, spiritual, wo nahi karenge. अपने आप में अंदर से एक कूल काम बिहेवियर आ जाता है हमें. तो वो लोग उतना रिएक्ट नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे. प्रेयर में ऐसा नहीं होता है. सुबह वो बगल में छुरी मुंह में राम राम की जगह है. प्रेयर करेंगे, पूजा करेंगे, फिर बाद में
1: झगड़ा करेंगे.
0: नॉर्मल लाइफ दे विल बी. बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट. इट इज अ मच मच डीपर थिंग. बहुत बहुत अंदर खोज करना पड़ता है. एंड in spirituality it is a long standing ye hai life change.
1: Okay.
0: It lasts for a very long time. Prayer is momentary. Abhi pray karo, bhajan karo, kirtan karo, satsang karo, it is momentary. Abhi khush hote hain, do din khush rehte hain, then you will need that same bhajan and kirtan and prayer for the next level of happiness and shanti. Meditation is not that. अंदर से आता है ना, तो अंदर से ठीक हो जाएंगे. यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल फैक्टर टू और सम मटेरियल टू मेक यू हैप्पी. दैट इज द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रेयर.
1: ओके, अमेजिंग, फाइन, गुड. अगेन दोस्तों, आपने अगर गौर किया हो, ध्यान से सुना हो, तो मैम ने अगेन बहुत प्रैक्टिकली बात कही है. कोई माथे पर बहुत सारा त्रिपुंड लगाकर और टीका लगाकर बैठकर और बड़ा बड़ा धूप बत्ती जलाकर बात करने की बात नहीं की है कि प्रेयर क्या है एंड मेडिटेशन क्या है. बहुत सिंपल सी बात है. बड़ी प्यार से ढंग से उन्होंने बताया कि प्रेयर में हम मांगते हैं, भगवान हमें ठीक कर दो, भगवान हमें ठीक कर दो, एंड सो मैनी थिंग्स. और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं. मेडिटेशन बहुत प्यारे, बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने शब्दों को कहा कि प्रार्थना इज अ डायलॉग टू द गॉड. मुझे उस बात से मैम याद आया कि वन ऑफ माय फ्रेंड लॉन्ग बैक, हिज नेम इज आनंद श्रीनिवासन अय्यर. तो वी यूज टू लिव इन, वेल, इन दैट टाउन, कानपुर में रहते थे, तो वहां पर एक टेंपल था. तो वो कभी भी परेशान होता था, गुस्सा होता था, कुछ फ्रस्ट्रेशन होता था, वो जाके उस टेंपल में बैठ के एंड भगवान के ऊपर, अब कौन सा भगवान उसको जाने दीजिए, इट्स नॉट वेरी यू नो रेलेवेंट हियर. वो भगवान के ऊपर खूब गुस्सा करता था, वो खूब चिल्लाता था कि बस कर लिया, आर यू हैप्पी नाउ, मेरे को परेशान कर दिया ना, अब बड़ा मजा आ रहा होगा ना आपको. सो अभी मेरे को ख्याल आ रहा है जब आप कह रही हैं दैट ही एक्चुअली हैड बीन कम्युनिकेटिंग विद द गॉड. वो बात कर रहा था, कह रहा था मैं आपका बच्चा हूं, आई एम सैड नाउ, आर यू हैप्पी, मेरे को दुखी देख के आपको मजा आ रहा है, क्या कर रहे हो आप, why don't you, you know, I mean, he was talking. तो मुझे अभी
0: करेक्ट. और समीर जी ये बोलो, जब ना वो शांत हो जाएगा,
1: राइट,
0: तो ही दैट इज द मीडियम ऑफ लेटिंग आउट
1: करेक्ट
0: वो है.
1: दैट्स द ब्यूटी. अभी मेरे को समझ में आ रहा है. ओह गॉड, अमेजिंग, दैट्स सो ब्यूटीफुल. तो दोस्तों बस एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, एक छोटा सा भजन के मुखड़े सुनते हैं, एंड देन वी विल कम बैक टू ललिता मैम हियर.

0: अमेजिंग, ब्यूटिफुल। तो फाइन, यहां तक हम लोगों की बात हो गई स्पिरिचुअलिटी की, रिलीजन की, प्रेयर की, मेडिटेशन की, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। मैम बस अब हम लोग अपने प्रोग्राम के आखिरी पादान पे हैं, लास्ट स्टेज में हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि चलते चलते हमें, हमारी बात शुरू हुई थी ना मैम अध्यात्म की, यानी कि आत्मा का अध्ययन, रीडिंग अवर सेल्फ, स्टडीइंग अवर सेल्फ, हू वी आर वगैरह वगैरह। तो लास्ट में बस मुझे ये बताते चलिए कि आत्मा क्या है, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाई आत्मा। कोई ऐसा अंदर टॉर्च है या दिया है या इज देयर अ पावर विच विल जस्ट गो अवे व्हेन आई डाई, क्या है आत्मा, इज व्हाट?
1: ओके, आत्मा जो है वो अनंत है। एक्चुअली इट इज अ लाइफ गिविंग फोर्स इनसाइड एनी बॉडी। अभी इंसानी ने सब जीव में आत्मा होती ही है, होता है। ओके, सो दैट आत्मा इज अ लाइफ फोर्स।
0: ओके ओके,
1: विद इन अ बॉडी लाइफ इज देयर, व्हेन द आत्मा लीव्स देयर इज नो लाइफ। सो इट इज जस्ट अ लाइफ गिविंग फोर्स विच मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो इट, as learned people said, I have read somewhere, the atma knows how long it has to stay in one body.
0: Oh, okay.
1: So, wo jab, it will decide when I can leave this body. Agar wo decide kar liya, ye time mein main body chhod dunga, so it will go and that person is no more.
0: Okay.
1: Sirf body reh jata hai, atma chale jata. But it will never die. It will search for another body.
0: Oh, all right.
1: So, atma hai. That is atma. It is a life force with which every body moves, it runs, it works, it operates. That is atma.
0: I get it. सच में मैम, ऑन अ लाइटर पार्ट ऑफ इट, लेकिन एक साधारण इंसान को समझने के हिसाब से बोल रहा हूँ। आई एम रियली रिलीव्ड एंड आई एम रियली हैप्पी टू लिसन टू दिस, दैट आत्मा इज अजर अमर, इट इज नॉट गोइंग टू डाई, इट विल एक्चुअली सर्च फॉर अनदर बॉडी, राइट?
1: करेक्ट Correct.
0: So I'm really happy that Sameer Goyal will always live.
1: Yes, definitely. Sameer Goyal will live.
0: Wow.
1: But with another name. Sameer Goyal's Atma will live with another name, okay, and another body.
0: Good. So, दोस्तों, take this message. आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, आत्मा हैं. So you're not going to die. You'll always be here. अब इस पूरे प्रोग्राम को सुनकर, ललिता मैम की सारी बातें सुनकर, आप क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छे व्यक्तित्व जो हमेशा जीने वाला है या कुछ और? डिसीजन आपके हाथ में होगा। ललिता मैम से तो सारी टीचिंग्स हमने ले ली, हम उनके बारे में सोचें, गुने, मेडिटेट करें एंड देन डिसाइड। ललिता मैम बहुत बहुत आभार है आपको, साधुवाद, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे ढंग से, बहुत प्यारी प्यारी सिंपल तरीके से आपने हमें चीजें बता दी, थैंक यू।
1: तो आपको सब सिंपल तरीके से मैं बता पाई, दैट इज व्हाई आई एम सो हैप्पी। आई कुड स्पीक आउट माय हार्ट आउट, माय माइंड आउट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई केम टू दिस प्रोग्राम एंड सो हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू समीर जी। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर ऑलवेज।
0: थैंक यू मैम,
1: थैंक यू।
0: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: ये है कैसा जादू मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए
0: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
0: कहिए।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, शादी हो या फिर किसी अपने की जॉब, हम सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं या सोचते हैं? गिफ्ट क्या दें? कोई परफ्यूम देता है, कोई वॉच, कोई वॉलेट, कोई मोबाइल, और आजकल सबसे कॉमन गिफ्ट है एक नया स्मार्टफोन। लेकिन क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को ये कहते सुना है, बेटा जूते गिफ्ट मत करना, या वॉलेट गिफ्ट कर रहे हो तो उसमें एक सिक्का जरूर रख देना, या गिफ्ट कभी खाली हाथ मत देना? हम में से कई लोग इस बात पर मुस्कुरा देते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं और कहते हैं,

ये लोग तो बस अंधविश्वासी हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसी बातें सदियों से चली क्यों आ रही हैं? क्या इनके पीछे कोई सोच है, कोई परंपरा है, या सिर्फ एक कहानी? आज की बात इसी दिलचस्प विषय पर है। और शुरू करने से पहले एक बात, जो बातें हम आज करने वाले हैं वो ज्योतिष और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन्हें हर व्यक्ति का मानना जरूरी नहीं है। बहुत लोग इन बातों पर विश्वास नहीं रखते हैं और बहुत लोग इन बातों पर विश्वास रखते हैं। आप अपनी सोच और अपने विश्वास के हिसाब से इन्हें समझिएगा। आगे चलते हैं। पहला गिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के जमाने में सबसे एक्साइटिंग गिफ्ट क्या होता है? एक नया मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, और अगर गिफ्ट लेटेस्ट मॉडल का हो तो खुशी डबल। लेकिन कुछ ज्योतिष परंपराएं कहती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध राहु और केतु से जोड़ा जाता है। राहु जो भ्रम, उलझन और अचानक बदलाव का प्रतीक माना जाता है, और केतु जो अलगाव और वैराग्य से जोड़ा जाता है। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट करते वक्त सामने वाले से एक छोटा सा टोकन अमाउंट, जैसे कि 1 रुपया, ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वो गिफ्ट नहीं, एक सिंबॉलिक ट्रांजैक्शन बन जाता है। ये एक पारंपरिक मान्यता है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रूल नहीं है। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 1 रुपए का सिक्का भी कभी कभी सिर्फ पैसा नहीं, एक प्रतीक बन जाता है। दूसरा गिफ्ट, लेदर। अब बात करते हैं वॉलेट, हैंडबैग, बेल्ट, लेदर जैकेट्स, लग्जरी गिफ्ट्स बहुत क्लासी लगते हैं। लेकिन कुछ ज्योतिष परंपराएं कहती हैं कि लेदर को स्थिर या भारी ऊर्जा से जोड़ा जाता है, क्योंकि वो पशु की चमड़ी से बनी होती हैं। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि इसे बहुत करीबी रिश्तों में गिफ्ट करने से बचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी देखिए, कितने लोग सालों से लेदर वॉलेट गिफ्ट करते आए हैं और उनके रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं आई। तो फिर सच क्या है? शायद गिफ्ट से ज्यादा उसके पीछे का प्यार मायने रखता है, सोच के देखिए। तीसरा गिफ्ट, शूज। एक सबसे मशहूर बिलीफ ये है कि शूज गिफ्ट मत करो, वरना सामने वाला चल देगा। सच बताइए, कितने लोगों ने ये डायलॉग सुना है? अगर जूते गिफ्ट करोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। इस बात का जिक्र है पारंपरिक मान्यताओं में। कुछ लोग इसे ज्योतिष के 12वें भाव से जोड़ते हैं, जो अलगाव, यात्रा और दूरी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसी बात पर एक हंसी वाली बात भी याद आती है। अगर सिर्फ शूज गिफ्ट करने से लोग दूर चले जाते तो शू कंपनीज के ओनर्स के पास दोस्त ही नहीं बचते। इसलिए हर मान्यता को मुस्कुराहट के साथ देख लीजिए और अपने ऊपर कितनी अप्लाई होती है ये सोच लीजिए। असली गिफ्ट क्या है? दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपको अपनी जिंदगी का सबसे यादगार गिफ्ट कौन सा लगता है? हो सकता है कोई महंगा मोबाइल ना हो, कोई ब्रांडेड वॉच ना हो, हो सकता है वो सिर्फ एक हैंड रिटन लेटर हो, एक किताब हो, एक गुलाब हो, एक पुरानी फोटोग्राफ हो, या बस किसी अपने का गले लग जाना। क्यों? क्योंकि गिफ्ट की कीमत उसके प्राइस टैग से नहीं, उसके इमोशन से होती है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारे यहां तो तुलसी का पौधा भी गिफ्ट किया जाता है, भगवद गीता, रुद्राक्ष, चांदी का सिक्का, मिट्टी का दिया, किताबें, प्लांट्स। ये सब इसलिए नहीं कि इनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है या कम है, बल्कि इसीलिए क्योंकि इनके साथ एक शुभ भाव जुड़ा होता है। हमारी परंपराएं हमें यही सिखाती हैं कि गिफ्ट सिर्फ एक वस्तु नहीं, ये एक आशीर्वाद होता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक दादाजी से किसी ने पूछा, दादाजी सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होता है? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जो इंसान वक्त देता है। सब हैरान हो गए। दादाजी बोले,
पैसे दोबारा कमा लोगे, कपड़े फिर आ जाएंगे, फोन भी बदल जाएंगे, लेकिन जो अपना वक्त दे गया वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हें दे गया। और सच कहूं, इससे बड़ा गिफ्ट शायद सच में कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं तो इन पारंपरिक बातों को ध्यान में रख सकते हैं, और अगर नहीं रखते तो भी एक बात सबके लिए समान है, गिफ्ट की सबसे बड़ी एनर्जी उसका प्यार, नियत और दुआ होती है। एक महंगा गिफ्ट भी बिना अपनापन के अधूरा होता है, और एक छोटा सा फूल भी सच्चे दिल से अगर दिया जाए तो जिंदगी भर किसी किताब में याद रहता है। तो अगली बार जब आप किसी अपने के लिए गिफ्ट खरीदने निकले तो एक चीज जरूर पैक करना, भर भर के प्यार, क्योंकि वही आपका असली गिफ्ट है जिसकी एक्सपायरी डेट कभी नहीं आती, कभी नहीं होती। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, और फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प बात के साथ। यहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: चिंटू लड़की देखने गया शादी के लिए। वहां पर चिंटू ने पूछा, कितने तक पढ़ी हो? लड़की ने बोला, बीए तक। चिंटू ने साफ मना कर दिया और बोला, दो अक्षर पढ़ी है और वो भी उल्टी।

है प्यार। क्या एक छोटी सी रिसिप्ट आपको पैसों की नई सोच सिखा सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। आज मैं आपसे एक और बहुत ही अजीब सा सवाल पूछती हूँ। शॉपिंग करने के बाद रेस्टोरेंट से बिल मिलता है, पेट्रोल पंप की स्लिप, मेडिकल स्टोर की रिसिप्ट या ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ इनवॉइस, आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग उसे देखते भी नहीं है, सीधा पॉकेट से निकाला और क्रश करके डस्टबिन में डाला। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि रिसिप्ट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, वो एक कहानी होती है, एक ट्रांजैक्शन की, एक फैसले की, और शायद हमारी मनी हैबिट्स का एक छोटा सा मिरर। आज की बात एक छोटी सी रिसिप्ट से शुरू होती है और पहुंचती है हमारे पैसों से जुड़े हुए नजरिए तक। एक बार एक बिजनेसमैन अपने बेटे को मार्केट ले गया। शॉपिंग खत्म हुई, बेटा हर रिसिप्ट को मोड़ मोड़ कर डस्टबिन में डाल रहा था। पापा ने रोका। बेटा बोला, पापा अब इस कागज का क्या काम? पापा मुस्कुराए, कागज का नाम खत्म हो गया, लेकिन इसने मुझे ये याद दिलाया कि मैंने पैसा कहाँ लगाया है। फिर उन्होंने हर रिसिप्ट को देखा, कहीं जरूरी खर्च, कहीं इम्पल्सिव शॉपिंग, कहीं डिस्काउंट के चक्कर में एक्स्ट्रा खर्चा, और तब बेटा समझा कि रिसिप्ट सिर्फ बिल नहीं है, वो एक फीडबैक है। दोस्तों, दुनिया के कई प्रॉस्पेरिटी ट्रेडिशंस में एक इंटरेस्टिंग सा बिलीफ मिलता है। माना जाता है कि जब पैसा आपके हाथ से निकलता है, उसके साथ ही ग्रैटिट्यूड और अच्छी नियत भेजनी चाहिए। इसी सोच के चलते कुछ लोग रिसिप्ट पर लिख देते हैं, मे दिस मनी रिटर्न टू मी मल्टीप्लाइड, या हिंदी में, ये धन मेरे पास और अधिक समृद्धि के साथ वापस आए। उसके बाद वो रिसिप्ट को फाड़ देते हैं या जला देते हैं। अब एक बात बहुत जरूरी है, इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा करने से पैसा सच में बढ़कर वापस आए। ये बस एक पारंपरिक बिलीफ है। कुछ लोग इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कुछ इंटेंशन सेटिंग कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ सिंबॉलिक रिचुअल मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस रिचुअल का असली मतलब क्या हो सकता है? सोचिए, आपने 5,000 रुपए खर्च किए। अगर दिमाग बार बार कहे अरे 5,000 चले गए, तो कैसा फील होगा? लॉस ना। लेकिन अगर वही पैसा किसी कोर्स पर लगा हो, हेल्थ चेकअप पर लगा हो, एक अच्छी किताब पर लगा हो, या बिजनेस शुरू करने में, तो तब हम कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट था। यही माइंडसेट बदलता है। हर खर्च नुकसान नहीं होता, कुछ खर्च जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। सोचिए, स्कूल की फीस, डॉक्टर की कंसल्टेशन, पेरेंट्स के लिए दवा, या एक अच्छी किताब, या फिर एक ट्रेन जर्नी की टिकट जो आपको किसी नए मौके तक ले जाए, ये सब एक्सपेंसेस हैं या इन्वेस्टमेंट? सोच के देखेंगे तो शायद दोनों। लेकिन इनका रिटर्न सिर्फ पैसे में नहीं मिलता, कभी नॉलेज में, कभी हेल्थ में, कभी सिर्फ एक एक्सपीरियंस में, और कभी रिश्तों में। हमारे घरों में एक बात अक्सर कही जाती थी, लक्ष्मी का सम्मान करो। इसका मतलब सिर्फ नोट को पैर ना लगाना नहीं था, इसका मतलब था कि पैसा मेहनत से आता है, समझदारी से खर्च करो और कृतज्ञता के साथ इस्तेमाल करो। रिसिप्ट संभालना हो, बजट बनाना हो, या खर्च लिखना हो, ये सब फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तरीके थे। एक आदमी हर महीने कहता था, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है यार। उसके दोस्त ने कहा, एक महीना हर रिसिप्ट को संभाल कर देख। महीने के एंड में दोनों साथ बैठे, कॉफी, ऑनलाइन डिलीवरी,
रैंडम शॉपिंग, दो दो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस, तीन बार वही चीज। आदमी हंस पड़ा, पैसा गया नहीं, मैंने ही भेजा था। और उस दिन से उसने बजट बनाना शुरू किया। कभी कभी रिसिप्ट हमें पैसा नहीं, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स बताती है। पैसा पानी की तरह है, अगर वो सिर्फ रुक जाए तो बेकार हो सकता है, लेकिन अगर समझदारी से बहे तो खेतों को हरा भरा कर देता है। वैसे ही पैसा भी सिर्फ जमा नहीं करना है अलमारी में, समझदारी से चलना एक कला है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल सा आइडिया देती हूं, अगली बार जब रिसिप्ट हाथ में आए उसे फेंकिए मत, 2 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसे देखिए, खुद से पूछिए कि ये खर्च जरूरी था या नहीं। अगर हाँ तो शुक्रिया कहिए, अगर नहीं तो अगली बार एक बेहतर डिसीजन लीजिए। और अगर आप प्रॉस्पेरिटी रिचुअल्स में विश्वास रखते हैं तो अपनी परंपरा के हिसाब से सिंबॉलिक अफर्मेशन भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अफर्मेशन तभी काम करता है जब उसके साथ एक्शन हो। सिर्फ लिखने से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, लेकिन सोच बदल सकती है, और कई बार सोच ही हमारी जिंदगी बदल देती है। तो दोस्तों, रिसिप्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो एक याद है कि पैसा आया और पैसा गया, और उसके साथ एक डिसीजन भी है कि हर रुपया जो खर्च होता है वो या तो हमें कुछ सिखा कर जाता है या कुछ देख कर जाता है। इसलिए अगली बार रिसिप्ट को देखकर सिर्फ ये मत सोचिए कि कितना पैसा चला गया, कभी कभी ये सोचिए कि इस पैसे ने मुझे क्या दिया। और शायद यही सोच हमें अमीर नहीं, समझदार बना सकती है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, मिलूंगी फिर आपसे एक और दिलचस्प कहानी के साथ, जहां होंगी बातें इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पत्नी ने पूछा, सुनो जी, लड़का बहुत पैसे उड़ाने लगा है, जहाँ भी छुपाती हूँ खोज लेता है। पति ने कहा, नालायक की किताब में रख दे, एग्जाम तक नहीं ढूंढ पाएगा।

क्या पहली बार में ही हम अपना सारा असर छोड़ देते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपकी तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछती हूं। क्या आप किसी नए इंसान से जब मिलते हैं तो आप पहला सेंटेंस क्या बोलते हैं? हाय, मैं तनुषा हूं। हाय, मैं राहुल हूं। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। बस इतना ही? लेकिन सोचिए, अगर पहली लाइन ही थोड़ी अलग हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर पहला इम्प्रेशन सिर्फ नाम से नहीं बल्कि किसी बात से बने, क्या वो इंसान हमें ज्यादा देर तक याद रखेगा? आज इसी बात पर करते हैं थोड़ी सी इधर की और थोड़ी सी उधर की बातें। नाम या पहचान एक इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन आइडिया है। वो कहता है कि कभी कभी सिर्फ अपना नाम बताना ही पहचान बनाना नहीं होता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नाम बताना गलत है। नाम तो जरूर बताइए, लेकिन सवाल ये है, क्या लोग सिर्फ नाम याद रखते हैं या उस नाम से जुड़ी हुई फीलिंग? सोचिए, स्कूल के कितने टीचर्स के नाम आज आपको याद हैं और कितनों के डायलॉग्स याद हैं? ऑफिस में कितने कॉलीग्स के नाम भूल गए, लेकिन वो एक कॉलीग याद है जो हर मंडे पूछता था, वीकेंड कैसा रहा भाई? नाम से पहले एहसास याद रहते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आप किसी सेमिनार में गए, लोग आपसे मिलते हैं, पहला बोलता है हाय आई एम रोहन, बस इतना ही। दूसरा मुस्कुरा कर पूछता है, आज के सेशन में आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक क्या रहा? अब बताइए, कॉन्वर्जेशन किसके साथ लंबी चलेगी? जाहिर है दूसरे वाले के साथ। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही खुद के बारे में नहीं आपके बारे में जानने की कोशिश की। और इंसान की एक खूबसूरत आदत है, वो उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी बात सुनते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। बोलना जरूरी है या सुनना? हम बचपन से बोलना सीखते हैं, लेकिन सुनना कोई हमें सिखाता ही नहीं है। बहुत कम लोग सीख पाते हैं कि सिर्फ सुनें

कभी नोटिस किया है कि जब दो लोग मिलते हैं, एक बोलता ही रहता है और दूसरा सिर्फ अच्छा फिर यही शब्द बोलता रहता है। और बाद में पहला इंसान कहता है, यार कितना अच्छा बंदा था, मेरी बात कितनी ध्यान से सुना, हालांकि दूसरे वाले ने तो कुछ बोला ही नहीं। साइकोलॉजी भी कहती है कि जब कोई हमें ध्यान से सुनता है, हमें उसके साथ एक नेचुरल सा कनेक्शन महसूस हो जाता है। लाउड होने से पहले प्रेजेंस आती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह मुझे देखो, मुझे लाइक करो, मेरा रील शेयर करो, नोटिस मी। लेकिन जिंदगी का सबसे अजीब रूल क्या है आप जानते हैं? हर चमक सोना नहीं होती और हर शोर असर भी नहीं करता। कभी किसी प्रोफेसर को देखा है? वो चिल्लाते नहीं फिर भी पूरी क्लास चुप हो जाती है। कभी किसी जज को देखा है? कम बोलते हैं लेकिन उनका हर शब्द मायने रखता है। कभी किसी दादा दादी को देखिए, हर वक्त एडवाइस नहीं देते लेकिन जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। शायद असली प्रेजेंस आवाज की ऊंचाई में है ही नहीं, सोच की गहराई में है। एक कहानी से समझते हैं। एक यंग सेल्समैन था, हर मीटिंग में जाता था और बिना रुके बोलता रहता था अपनी कंपनी, अपना प्रोडक्ट, अपने अचीवमेंट्स, लेकिन फिर भी डील नहीं होती थी। एक दिन उसके सीनियर ने कहा, आज सिर्फ 3 सवाल पूछना मीटिंग में। अगली मीटिंग में उसने पूछा, आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? अगर वो सॉल्व हो जाए तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आप किस तरह का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? बस कस्टमर बोलता गया और मीटिंग के एंड में डील क्रैक हो गई। वापस आकर उसने पूछा, सर मैंने तो प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन भी नहीं किया। सीनियर मुस्कुराकर बोला, तुमने पहली बार प्रोडक्ट नहीं इंसान को समझा। और बिजनेस हो या रिश्ता, लोग सिर्फ तब जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सुन रहा है और उन्हें समझ रहा है। लेकिन ध्यान रहे एक और बात, हर जगह स्ट्रैटेजी लेकर जाना भी जरूरी नहीं होता। हर कॉन्वर्सेशन को कोई इंटरव्यू नहीं समझना चाहिए। हर मुलाकात नेटवर्किंग इवेंट नहीं होती, सोशल क्लाइंबिंग भी नहीं होती। कभी कभी सीधा सा नमस्ते, मैं तनुषा हूं, काफी होता है, साथ में एक सच्ची मुस्कान। कम्युनिकेशन का मतलब एक्टिंग नहीं है, ऑथेंटिसिटी है। ये आइडिया कि पहले क्वेश्चन पूछिए, पहले सामने वाले को समझिए, एक अच्छा कॉन्वर्सेशनल टिप हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार नाम बाद में ही बताना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से आप बात को बदल सकते हैं। असली इंप्रेशन किससे बनता है? आपका नाम लोग भूल सकते हैं, आपका डेजिग्नेशन भी बदल सकता है, आपकी कंपनी भी बदल सकती है, लेकिन आपने किसी को कैसा महसूस करवाया वो याद रह जाता है दोस्तों। शायद इसीलिए माया एंजेलू की वो बात आज भी मशहूर है, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। और वाकई कितनी सच बात है ये। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलिए तो सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा सवाल पूछिए, दिल से सुनिए, दिल से मुस्कुराइए और फिर अपना नाम बताइए। हो सकता है लोग आपका नाम भूल जाएं, लेकिन आपकी वो मुलाकात कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी बात के साथ मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प सोच के साथ, जहां होंगी बातें इधर की उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पति ने पत्नी को बोला, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी बोली, थैंक यू सो मच, और बताओ क्या कर रहे हो। पति ने बोला, खाली बैठा था तो सोचा थोड़ा मजाक कर लूं।

का। तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर आएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायणी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों,

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इस खोने लगे तो पूजा पाठ कर लेना। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे बेटे। वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों, ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों, कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं, उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है, जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और, किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति, कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है, कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत हजारों रुपए जानकर तो वो हैरानी रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी
ये किसी रामबाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह हैं वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों उसे मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान है वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूँ। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है कोई 3 साल का, 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी ये है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: नमस्कार साथियों।
6: मेरा भी नमस्कार।
5: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
6: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
5: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियाँ ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
6: आप पूछेंगे, कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
5: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
6: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
5: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
6: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
5: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
7: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
5: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
6: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
5: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
6: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
5: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
6: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
5: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
6: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
5: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
6: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
8: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
6: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
5: साहब, ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
6: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
5: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
6: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
5: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
6: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
5: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
6: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
5: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
6: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
5: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
6: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
5: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
6: सिंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
5: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
6: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ काली बाई।
5: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
6: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
5: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
6: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
5: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
6: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
5: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
9: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
10: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
11: ये कहानी है प्राचीन यूनान की, लेकिन आइए कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यूनान की। आपको बता दें कि यूनान दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। अंग्रेजी में इसे ग्रीस भी कहते हैं।
12: ये देश भूमध्य सागर में स्थित बहुत से द्वीपों का समूह है। यहाँ के निवासियों को यवन या यूनानी कहते हैं। यहाँ की राजभाषा यूनानी है, अंग्रेजी में इसे ग्रीक कहेंगे। ग्रीक भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और यूरोप की लगभग सभी भाषाओं को इसने बहुत से शब्द दिए हैं। यहाँ की मुद्रा या करेंसी है यूरो। तो साथियों, लगभग सभी राष्ट्रों का कोई ना कोई राष्ट्र वाक्य होता है, जैसे हमारे देश का राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते। वैसे ही यूनान का राष्ट्र वाक्य है एलेफ्थेरिया थानाटोस, जिसका अर्थ है या तो स्वतंत्रता या मृत्यु, अन्य कोई विकल्प स्वीकार्य नहीं है।
11: यूनान की राजधानी है एथेंस, जहां से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। उन दिनों आज की तरह ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक नहीं हुआ करते थे।
12: प्राचीन ओलंपिक खेलों में उन दिनों प्रथम आने वाले विजेता को जैतून की पत्तियों का मुकुट, द्वितीय आने वाले को जैतून के फलों की माला और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को जैतून के पत्तों की माला पहनाई जाती थी। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं प्राचीन यूनान की ही एक बहुत ही प्यारी और प्रेरक कहानी। ये कहानी है प्राचीन यूनान के एक बहुत अच्छे चित्रकार की। उसके बनाए गए चित्रों की हर जगह बड़ी धूम थी।
11: एक बार की बात है, उसने एक नर्तकी का आदमकद चित्र बनाया। वो बेहद खूबसूरत चित्र था। जब इस चित्र की प्रदर्शनी की गई तो समझिए कि तहलका मच गया। यूनान में हर जगह उस चित्र की चर्चा होने
13: लगी।
11: भीड़ की भीड़ उस चित्र को देखने के लिए आने लगी। ये इतना सुंदर और जीवंत चित्र था कि लगता था कि नर्तकी बस अभी बोल पड़ेगी।
12: नर्तकी का पूरा सौंदर्य इस पेंटिंग में मानो सजीव हो गया था। इस पेंटिंग की चर्चा उस देश के राजा के कानों में पड़ी। राजा भी ये प्रदर्शनी देखने आया और इस चित्र को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्रकार को बहुत से उपहार दिए।
11: इतना ही नहीं, राजा ने उस चित्रकार को शाही चित्रकार घोषित कर दिया। इस चित्र ने उस चित्रकार को रातों रात बहुत लोकप्रिय बना दिया। वो स्टार बन गया। इस चित्र की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। अब वो बेनाम चित्रकार बहुत प्रसिद्ध हो गया था।
12: जहां भी वो जाता, लोग सम्मान से खड़े हो जाते, उसका अभिनंदन करते और उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते थे।
11: कहते हैं कि सफलता का भूत कई बार सिर चढ़कर बोलता है। व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हो जाता है और वो अपने अलावा, अपने कौशल के अलावा कुछ और नहीं सोचता।
12: यही उस चित्रकार के साथ भी हुआ। अपनी कला से वो इतना प्रभावित हुआ कि अब वो दिन भर उस चित्र के सामने बैठा रहता था और उसे ही निहारता रहता था। वो बेसुध सा हो गया था। वो सबको यही बताता कि देखो, मैंने कितना महान काम किया है और मेरी बराबरी का और कोई कलाकार है ही नहीं।
14: क्या बात है, वाह वाह रे मेरी कला, क्या सुंदर चित्र बना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा चित्र कोई और कभी बना सकता है। शायद ऐसा चित्र कभी किसी ने नहीं बनाया है। वाह, कितनी महान कला है मेरे अंदर।
11: जी हां साथियों, इस मनोदशा में इंसान अपने आप से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपने सिवाय कुछ नहीं सोचता। अब तो ये होने लगा कि वो उस चित्र से उठते बैठते बात करता था। उसकी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ गई कि वो अक्सर रातों को भी उठ जाता था और उस चित्र से बातें करने लगता था।
14: हाँ, आइए आइए, देखने आइए, क्यों नहीं, देखिए देखिए, है ना कमाल का चित्र। बिल्कुल, कितना सुंदर चित्र है ये। मैं जब जब इसे देखता हूं मुझे ऐसा लगता है ये और सुंदर होता जा रहा है। वाह, अथा सुंदर।
11: और सुबह जो भी उसे मिलता सबको यही बताता कि देखो, मैंने कैसा महान कार्य कर दिखाया।
12: लोगों को शुरू में ये बात अजीब नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये तो असामान्य बात है। महीने बीत गए, अब उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग्स बनाना भी छोड़ दिया था। वो बस अपने उसी चित्र को देखता रहता था।
11: एक दिन की बात है, वो सवेरे उठा और हर रोज की तरह अपनी उसी पेंटिंग को देखने चल दिया। उसे बहुत गहरा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर किसी ने ढेर सारा रंग उड़ेल दिया है और किसी तेज चाकू से उस पेंटिंग को जहां तहां से काट दिया है। ये देखकर उस चित्रकार को मानो पागलपन का दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
15: ये क्या हो गया, किसने किया है ये काम, किसने किया ये?
11: वो पूरे म्यूजियम में शोर मचाने लगा।
15: किसने किया, किसने किया ये?
11: सब सहम गए थे। अचानक पीछे से गंभीर आवाज आई।
13: मैंने किया है।
11: वो चित्रकार पीछे मुड़ा तो चौंक गया। पीछे उसके गुरुजी खड़े थे।
14: गुरुजी, आप? क्या ये आपने किया है?
13: हाँ, मैंने किया है ये काम।
14: लेकिन क्यों?
13: इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम अपनी कला से संतुष्ट हो गए हो।
14: लेकिन गुरुजी, वो मेरी सर्वोत्तम रचना थी। इससे अच्छा तो कुछ बन ही नहीं सकता।
13: नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया जिसे संपूर्ण कहा जा सके।
14: गुरुजी,
13: अब तुमने अभ्यास करना, कुछ नया बनाना सब छोड़ दिया है। अब तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने बनाया उससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता। ये बात गलत है।
14: लेकिन गुरुजी, मैं जानता हूं कि अब मैं इस पेंटिंग से बेहतर कुछ बना ही नहीं सकता।
13: तुम्हारी यही सोच गलत है। तुम प्रसिद्ध तो हो गए हो, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुए। उठो, पेंट ब्रश लेकर अब फिर से शुरू हो जाओ। कुछ नया और बनाओ जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं।
11: दोस्तों, उस चित्रकार को बहुत पश्चाताप हुआ, और फिर जब उसने दोबारा पेंट ब्रश उठाया तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक से एक ऐसी बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई जो आज यूनानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथियों, सीखने का कोई अंत नहीं है।
16: जी हाँ, सीखते रहिए, प्रश्न करते रहिए, अवलोकन करते रहिए।
11: इस बात से संतुष्ट मत हो जाइए कि प्रकृति में या आसपास कुछ होता है। आप तब तक संतुष्ट न होइए जब तक ये न जान लें कि ऐसा क्यों होता है।
16: यदि आपने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, किसी विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, संगीत के अभ्यास से बहुत निपुणता प्राप्त कर ली है, तो अब इतने में ही संतुष्ट ना हो जाइए कि अब और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है।
11: सीखते रहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग।
16: यानी सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती।
13: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
10: साथ है तो संभव है।
17: ये बात बहुत पुरानी है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उन सब में गहरी मित्रता थी। वे सभी बड़े मेल प्रेम से रहते थे। जंगल में बड़े बड़े तालाब थे जहां बहुत से जल जंतु भी रहा करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा घना पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थीं जिस पर बहुत से जंगली हंस बसेरा करते थे। वे हंस सुबह दाना पानी लेने के लिए उड़ जाते और शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाते। पेड़ के पास ही एक झील थी। उसके शीतल जल में वे खूब नहाते और किलोल करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
18: एक दिन की बात है, जब पक्षी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा उगाया है। उस पौधे में एक छोटी सी कोमल लता थी जो पेड़ के तने से चिपकी हुई थी। उसे जब हंसों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक हंस जो आयु में दूसरे हंसों से बड़ा था और बुद्धिमान भी, उसने कहा,
19: क्या तुम उस छोटे पौधे को देख रहे हो जिससे लता निकल रही है?
20: हाँ, देख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है?
21: ऐसे तो बहुत से पौधे निकलते रहते हैं।
22: ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
20: हाँ, बेकार ही ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं।
19: लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
21: अरे छोड़िए भी, हमारे पास बातें करने के लिए क्या अब यही बचा है?
20: हाँ, और कोई बात हो तो कहिए, वरना चुप रहिए।
22: मानते हैं कि आप हम सबसे बड़े हैं,
21: लेकिन हम भी कोई कम समझदार नहीं हैं।
20: हाँ।
17: सभी हंसों ने उस बुद्धिमान हंस की बात काट दी और उसका मजाक भी उड़ाया। खैर, दिन बीतते गए। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा और उसकी लता पेड़ के तने का सहारा लेकर बड़ी होने लगी। अब वो लता इतनी बड़ी हो गई कि वो लगभग पेड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई।
18: उस पेड़ पर बसेरा करने वाले जंगली हंसों का झुंड रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता और शाम को हमेशा की तरह वापस आ जाता था। उन्हें वो पेड़ बहुत सुरक्षित लगता था, क्योंकि वो ऊंचा था और उसका तना इतना चिकना और सीधा था कि कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, शाम को जब सारे हंस वापस आ गए तो बुद्धिमान हंस ने सबको बुलाया और कहा,
19: साथियों, आज मैंने एक बार फिर से उसी विषय पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है।
20: उसी विषय पर? अरे किस विषय पर?
19: उसी पौधे के बारे में जिस पर हमने एक दिन चर्चा की थी, लेकिन आप सब ने उसे टाल दिया था।
21: उफ हो, फिर वही बात? अरे ऐसा तो सारे जंगल में होता रहता है।
20: हाँ, पौधे उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपको क्यों बेकार की चिंता हो रही है?
19: साथियों, मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है।
20: ओहो,
19: ध्यान से देखो।
20: अरे देख तो रहे हैं।
19: वो लता पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर वो इतनी ऊंची हो गई है कि हमारे पेड़ की डालियों तक पहुंच गई है।
17: बात आई गई हो गई, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वो लता धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और अब उसने एक मोटी रस्सी का रूप धारण कर लिया था। वो लता अब लगभग पेड़ की सभी शाखाओं तक पहुंच गई थी।
18: और वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए, एक बहेलिया वहां आया। उसने चुपके से कई बार देखा था कि उस पेड़ पर बहुत से जंगली हंस रहते हैं।
23: ये जगह ठीक है, यहाँ जाल बिछाता हूँ, यहाँ बहुत सारे पंछी फंस जाएंगे।
18: बहेलिया उस मजबूत लता की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और अपना जाल बिछा दिया।
17: जाल बिछा कर वो चला गया। उसे पता था कि पक्षी अब शाम को ही आएंगे। शाम को पक्षी वापस आए। बहेलिये के बिछाए जाल पर उनकी नजर नहीं गई और जैसे ही वो डालियों पर बैठे, वे सब के सब उस जाल में फंस गए।
22: अरे कोई है, हमारी सहायता करो।
24: अरे हमें छुड़ाओ भाई, हमारी सहायता करो भाई।
19: अरे ये क्या हो गया?
24: फंस गए भाई,
21: हम सब जाल में फंस गए।
19: अरे ये कैसे हुआ? तुम लोग भी मेरी बात नहीं मानते हो ना? मैंने कहा था
24: ऐसे फंस गए हम।
19: अरे क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो?
18: वे सभी चिल्लाते रहे, पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। संघर्ष करते करते वो थक गए। उन्होंने बुद्धिमान हंस से कहा,
24: हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी।
21: काश हमने आपकी बात मानी होती तो आज का दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता।
24: अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कोई उपाय बताइए।
19: शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने बहुत पहले ही तुम सबको चेतावनी दी थी, लेकिन तुम सब ने नहीं सुना। संकट के समय अब हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ध्यान से सुनो। कल सुबह जब वो बहेलिया आएगा तो हम सबको ऐसा भी नहीं करना होगा मानो कि हम मर चुके हैं।
24: भला इससे क्या होगा?
19: कोई भी बहेलिया मरा हुआ पक्षी नहीं चाहेगा। वो एक एक करके हमें जाल से निकालकर भूमि पर फेंक देगा।
24: हाँ?
19: जैसे ही वो आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा और पेड़ से नीचे उतरेगा।
24: हाँ?
19: इसी बीच हम सब एक साथ उड़ जाएंगे।
24: हाँ, ये ठीक है,
22: उड़ जाएंगे हम सब।
17: और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह बहेलिया वहां आया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बहुत से पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं, उसे बड़ा लाभ होने वाला है। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और जाल के पास जा पहुंचा। लेकिन ये क्या,
18: बहुत से पक्षी फंसे हुए थे लेकिन वो निश्चल पड़े हुए थे। उनकी गर्दनें ढलकी पड़ी थी और कोई हरकत नहीं थी। उसने जाल को हिलाया भी लेकिन किसी पक्षी ने कोई हरकत नहीं की। बहेलिया बड़बड़ाने लगा,
0: अरे ये क्या, ये सब तो मरे पड़े हैं। हो सकता है इन्होंने कोई विषैला बीज खा लिया हो, पर अब तो कोई लाभ नहीं। अब क्या करूं, इन्हें नीचे फेंक देता हूं, फिर जाल लेकर उतरना भी आसान हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही करता हूं।
17: तो इस तरह बहेलिये ने एक एक करके पक्षियों को जाल से निकालना शुरू किया और वो उन्हें नीचे जमीन पर फेंकता चला गया। अब अंतिम पक्षी भी भूमि पर फेंका जा चुका था।
18: जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा, योजना के अनुसार सभी उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। बहेलिया हाथ मलता हुआ आश्चर्यचकित और ठगा सा उन्हें देखता रह गया।
17: साथियों, प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी हेनरी फोर्ड ने कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल। इसका भाव ये है, संगठित होकर हम सशक्त बनते हैं और विभाजित रहकर निर्बल। यानी
1: साथ है तो संभव है।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: वो आखिरी पत्ता।
18: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
17: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से यह बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
18: ताकि यहां की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
17: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
19: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: तो सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
19: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
18: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
17: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
18: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
23: सू
19: जी,
23: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
19: जी हाँ।
23: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
19: जी डॉक्टर साहब।
23: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
19: मैं पूछती हूँ।
17: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
18: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
19: क्या?
17: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
19: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
18: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
5: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए।
19: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
17: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
19: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
19: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
5: Only 4
19: मेरी तरफ देखो
5: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
19: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
5: 3 पत्तियां।
19: पत्तियां?
5: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
19: हाँ,
5: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
19: क्या लगता है?
5: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
19: क्या जॉन्सी?
5: उस दिन उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
19: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
5: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सू?
19: हाँ
5: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
19: ओ जॉन्सी।
17: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
18: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
17: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
18: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
23: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
17: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
18: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
5: 2, ओह, अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
17: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
23: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
17: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
18: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम 1 पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
5: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
17: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
18: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
5: सू मेरी दोस्त।
19: हाँ जॉन्सी।
5: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल सरा खिड़की सू।
17: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
19: सू? हाँ जॉन्सी।
5: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
19: हाँ बिल्कुल,
5: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
19: बिल्कुल जॉन्सी।
5: हाँ, हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
19: पत्ता?
5: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
19: हाँ,
5: हाँ,
19: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
5: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
19: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
5: हाँ, हाँ।
18: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
23: कुछ, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
18: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
19: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
5: बेहतर।
19: ये लो कॉफी पियो।
5: थैंक यू
19: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
5: क्या हुआ?
19: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
5: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
19: हाँ।
5: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
19: हाँ वही।
5: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
19: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
5: ओह गॉड,
19: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
5: क्या?
19: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
5: क्यों नहीं गिरा?
19: हाँ,
5: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
17: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
19: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
5: ओह,
19: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
5: पेंटिंग?
19: हाँ।
5: कैसी पेंट?

0: है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू
0: हाँ, उन्होंने बना दिया,
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू मास्टरपीस, मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रही हों।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत।
3: सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है
2: पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, छावा की आवाज। स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांडिया भील 90.8 FM छावा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुँचाने के प्रयासों में लगी हुई है। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह अपने किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाए, कृषि की नई तकनीकों को पहुंचाए, जिससे हमारे किसान की जो आजीविका है वो सशक्त बन सके और कृषि के नए से नए उपकरणों का उपयोग कैसे करना है आदि जानकारियों से हमारा किसान जो है वह अवगत हो सके। इसी के साथ किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और आज हम जानेंगे कि मोटे मोटे धान की खेती से जुड़े हुए, उसका उपयोग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हम जानेंगे, सीखेंगे और अपने खेतों में इसका प्रयोग करके हम जानेंगे।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: से पहले मैं आपसे मोटे अनाजों के बारे में जानना चाहूंगी। अक्सर हम इस समय सुन रहे हैं और काफी जोर दिया जा रहा है मोटे अनाजों को लेकर, तो क्या अहमियत है इनकी हमारे आहार का हिस्सा ये बने, ये क्यों जरूरी है?
5: देखिए, अगर हम बात करें आज से मतलब 30 साल पहले की
4: जी,
5: तो हमारे देश में जो खेती होती थी मोटे अनाज की खेती होती थी। मोटे अनाज मैं बताना चाहूंगी क्या क्या हमारे हैं। मक्का है आपका, जौ है, रागी, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, और भी छोटे अनाज हैं जो इनकी
4: श्रेणी
5: में आते हैं।
4: बिल्कुल,
5: तो इन्हीं की खेती हमारे यहाँ पे होती थी। पर 60 के दशक के बाद क्या हुआ कि हम जैसे चावल और गेहूं की खेती करने लगे और इनको हम भूल गए एक तरीके से
4: जी।
5: तो अब इसका दोबारा से चलन, क्योंकि विश्व इसकी वैश्विक मांग इतनी ज्यादा हो रही है कि मोटे अनाज का हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये पोषणता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है
4: जी।
5: तो इसीलिए अब इन पे इतना ध्यान दिया जा रहा है कि मोटे अनाजों को भी अपने हम भोजन में शामिल करें, गेहूं चावल के साथ साथ। हमें ये नहीं कि एक ले लिया तो दूसरे को हटा दिया, हमें इन सबको सम्मिलित करके चलना है। तो हम एक अपना कहते हैं ना, जो बात करते हैं कि अगर हमें, क्योंकि विविधीकरण ही एक तरीके का ये है, और विविधीकरण से ही आपकी जो दुगनी आय की जो हमारा सपना है वो भी पूरा हो सकता है। तो इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है मोटे अनाज का हमारे भोजन में और हमारी खेती में इस्तेमाल होना।
4: बिल्कुल, तो काफी महत्ता है मोटे अनाजों की और इसके प्रसंस्करण से किसान किस तरह से दोहरा लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
6: पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं, बल्कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने में भी मददगार साबित होते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। सरकार मोटे अनाजों की खेती और इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांवा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ्र मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। इस तरह मोटे अनाज का प्रसंस्करण करके आप कई तरह के उत्पाद बनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं।
4: तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज हम लाभकारी कीटों की बात करने जा रहे हैं, तो ये कौन से लाभकारी कीट हैं, इनके बारे में बताएं, क्योंकि कीट का जिक्र आते ही किसानों को एक दहशत सी हो जाती है क्योंकि फसलों को काफी नुकसान होता है कीटों से, लेकिन कुछ कीट लाभकारी भी होते हैं, तो वो कौन से कीट होते हैं बताएं।
7: जी बिल्कुल, हमेशा ये सोचते हैं कि किसान की अगर खेती बाड़ी करनी है तो हमेशा एक हानिकारक कीटों की बात करते हैं
4: जी।
7: लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर हम हमेशा खेती बाड़ी में कीड़ों की समस्या की बात करते हैं तो कीड़ा एक इकोसिस्टम है, एक पर्यावरण है, जैसे हर जगह पर हर तरह के प्राणी होते हैं, हर पेड़ पर कई तरह के जीव रहते हैं, उसी तरह से हर इकोसिस्टम में, हर खेत में हर तरह के कीड़े रहते हैं। उनमें कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि परभक्षी कीट होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि परागण क्रिया में बहुत मददगार होते हैं। अगर हम उन सभी कीटों को हटा देंगे तो क्या होगा कि जिनको हम हानिकारक कीट समझ रहे हैं वो मर जाएंगे, तो उनकी अनुपस्थिति में जो हमारे उपयोगी कीट है वो भी मर जाएंगे और हमारी जो आमदनी है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार जहर वाले जो पेस्टिसाइड है वो डालते जा रहे हैं, जहर बढ़ा रहे हैं, यानी आमदनी की दुगना करने की बात करें, लेकिन अगर हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत महंगे आते हैं, और दूसरा हमारा जो पर्यावरण है वो भी दूषित होता जाएगा, और जो भी प्रोड्यूस हम पैदा कर रहे हैं वो भी हमें खाने में जहरीला होगा, यानी कि हम मानव शरीर के स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही बरत रहे हैं। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कि हमें आमदनी दुगनी करनी है, दुगनी कैसे करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे लाभकारी कीट है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि खेती करनी चाहिए, मंडुए की और जितने भी हमारे फॉर्मुलेट्स है ना
4: जी।
7: अभी हम खेती के साथ में मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमारे साथ एक साथ दो इनकम के जरिए होंगे, और दूसरा अगर हम रेशम कीट पालन करते हैं तो हम रेशम उद्योग आगे बढ़ा सकते हैं
4: जी।
7: परागण कीटों की हम जो बात करें, अगर फूलों वाली कोई भी फसल है, चाहे वो सरसों है यानी कि तिलहन है, दालें हैं, फल हैं, सब्जी है, अगर परागणकर्ता कीट वहां भ्रमण नहीं करेंगे तो फूलों में क्रिया नहीं होगी और परागणकर्ता नहीं होगी, उसकी अनुपस्थिति में कोई भी फल पैदा नहीं होगा, तो समझिए डायरेक्ट लॉस है
4: जी। बिल्कुल डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कीट है वो हानिकारक ही नहीं होते हैं बल्कि कई कीट लाभकारी भी होते हैं, ये उत्पादकता के लिए भी अहम है और इसके साथ ही किसानों की आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं, तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
6: कीटों का नाम सुनकर अक्सर हमारे दिमाग में फसलों के नुकसान की बात ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी कीट फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते, कुछ कीट फसलों के दोस्त भी होते हैं जिन्हें मित्र कीट कहा जा सकता है, और खेती में इनका अपना एक अलग महत्व होता है। बता दें कि विश्व की लगभग 90% जंगली फूलों वाली पौधों की प्रजातियां परागण के लिए कीट पतंगों और जानवरों पर निर्भर करती हैं। विश्व की करीब 75% से ज्यादा खाद्य फसलों और वैश्विक कृषि भूमि का 35% परागण इनसे जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये कीट पतंगे जैव विविधता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खियों का परागण फसल उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। मधुमक्खियां काफी फसलों में पराग कण के रूप में काम करती हैं, जिससे बीज उत्पादन में वृद्धि होती है। बीज बड़े हो जाते हैं, बीजों के कारण बीजों की सुगंध, फलों में सुगंध और पोषक तत्व, विभिन्न फसल के पौधों में वृद्धि, हरे चारे का उत्पादन, फूलों में नॉक्टर्स और तेल बीज फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। करीब 80% फसलें क्रॉस परागण पर निर्भर हैं, जिनमें अन्य कीटों के साथ साथ मधुमक्खियों का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। बता दें कि चेरी, बादाम, अंगूर, लीची, मूली, खीरा, प्याज, सरसों और कपास फसलों का उत्पादन केवल मधुमक्खी परागण के कारण 50% से ज्यादा बढ़ जाता है। मधुमक्खियों के अलावा पतंगे भी फूलों के बीच पराग को ढोने का काम करते हैं। अन्य कीट परागणकों में ओवलेट मॉथ, अंडरविंग मॉथ और जियोमीटर मॉथ शामिल है।
4: तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए एक बार फिर से डॉक्टर श्रीवास्तव का रुख करते हैं और इन मित्र कीटों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, हमें मित्र कीटों के बारे में और भी जानकारी दें कि कौन कौन से होते हैं ये मित्र कीट और किस तरह से इनके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है।
7: देखिए, मित्र कीटों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जरूरी ये बात है कि हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करें।
4: जी,
7: हम हमेशा खेती बाड़ी की उपज को बढ़ाने की बात करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारे पेस्टिसाइड हानिकारक कीटों के लिए करते हैं, पर उन हानिकारक कीटों के साथ साथ हमारे जितने भी परभक्षक हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अगर परभक्षक कीट खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें जहर डालना ही पड़ेगा। तो हमें जब भी हम किसी भी फूलों वाली कोई भी फसल या सब्जी उगा रहे हैं और वो फूलों की अवस्था में है तो कोई भी कीटनाशी को नहीं डालना चाहिए।
4: जी।
7: दूसरा, बॉर्डर लाइन जितनी भी होती है वहां पर जो घास होती है वो मित्र कीटों को बढ़ावा देती है। तो अगर हम कहें संरक्षण हमें करना चाहिए तो हमें उन कीटों का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। साथ ही में बहुत से लोग मधुमक्खी पालते हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी सरसों लगी, जैसे अभी आने वाले समय में सरसों का सीजन आने वाला है, जो अलसी वैरायटीज है उत्तरा, वो अभी शुरू हो जाएंगी, अक्टूबर में आना शुरू हो जाएंगी, तो जहां भी ये खेती बाड़ी है और मधुमक्खी के बक्से रखे हैं तो किसानों को इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि उनकी पैदावार बढ़े। आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम परागणकर्ता कीटों को अपने खेतों में आने देंगे या हमारे खेत के 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी परागणकर्ता कीट है तो उससे उपज 2 से 4 गुना बढ़ सकती है।
4: बिल्कुल, तो ये महत्व है परागणकर्ता कीटों की। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे आपसे आगे डॉक्टर श्रीवास्तव।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आइए जानते हैं, अगर कोई किसान है वो थोड़ा सा सक्षम नहीं है, अगर वो मुर्गी पालन या कुकुर पालन हो गया, उसके अलावा बकरी पालन, भैंस पालन, कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर इसमें क्या सरकार द्वारा कुछ अनुदान मिलेगा या अन्य किसी भी चीज में अनुदान कैसे ले सकते हैं और क्या इसकी क्या प्रोसेस होती है, आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: बहुत, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पूंजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है
3: जी।
2: तो इसमें हाँ, सरकार की तरफ से अनुदान की है आपका, जैसे हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ही बनाया हुआ है, उनकी तरफ से अनुदान आपको मिल सकता है। पर आपका अनुदान का आपका राशि देखनी है कि अगर आपका आप एक छोटी इकाई लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुदान की अलग सुविधा है। जैसे खादी ग्राम उद्योग है, वहां से आपको छोटी इकाई के लिए मिल सकता है। बड़े उद्योग के लिए जाते हैं तो हमें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के उद्योग से ये जो है मदद मिल सकती है। और यही नहीं, आपके नजदीकी जो भी बैंक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पे भी आपकी कई योजनाएं हैं बैंक की। आपको 50,000 रुपए से लेके 10 लाख तक का वो लोग ऋण देते हैं और कम मतलब ब्याज दरों पे, खासकर किसानों के लिए, हमारी किसान महिलाओं के लिए, ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सके। तो आप किसी भी योजना से इसके जो आपका जो आपने ऋण लेना है, आप इकाई शुरू करनी है, तो आप लाभ उठा सकते हैं।
3: बिल्कुल। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया क्या है डॉक्टर रितु?
2: ये सबका थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे मंत्रालय की बात करें तो आपको वहां पे जो भी आप काम एक शुरू कर रहे हैं उस पे आपने काम शुरू करना, एक तो वो भी एक मंत्रालय ने किया है कि एक जिला एक उत्पाद
3: जी, बिल्कुल।
2: तो उस योजना के तहत भी आप कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब पंजीकृत करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे, और फिर वहां पे आप उनको एक प्रोजेक्ट बना के देना होगा, और फिर आपको जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको अनुदान मिल जाएगा। ऐसे ही बैंक में, अगर आपके पास में बैंक है तो आप बैंक में भी जाके भी अपना आपको कार्य रूप तो देना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या क्या उसमें मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और मशीनों से आप क्या क्या फायदा ले सकते हैं। तो ये आपको उनके कार्य रूप एक देना पड़ेगा ताकि वो उसके हिसाब से आपको ऋण दे सके।
3: बिल्कुल। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर ऋतु, आपने बताया जैसे मोटे अनाज जो है वो बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, पौष्टिक होते हैं, ऐसे में जबकि हम इस देश में कुपोषण की समस्या से भी जूझ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुपोषण से जंग में ये एक अहम हथियार का की जो भूमिका है वो निभा सकता है?
2: बिल्कुल निभा सकते हैं। कभी अगर पिछले साल 2021 के अगर आंकड़ों की बात करें कुपोषण की, तो लगभग हमारे देश में 33 लाख बच्चे जो है कुपोषण से ग्रसित है, और इसका से जस्ट हाफ आधे बच्चे मतलब गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रसित हैं। तो एक ये बहुत बड़ी ढाल का काम आपका कर रहा है मोटे अनाज, क्योंकि इनमें ऐसे कई पौष्टिक तत्व हैं जो कि हमारे और अनाज में नहीं मिलते
3: जी।
2: जैसे अगर हम बात करें खनिज की, तो खनिज आपके कैल्शियम की, जो कि हड्डियों के लिए बच्चों के बढ़वाने में बहुत आवश्यक होता है, गर्भवती महिला को आवश्यक होता है क्योंकि उसको अपने लिए और अपने बच्चे के लिए देना होता है। अगर वो उसको नहीं मिलता है भोजन से तो वो उसको खुद कमजोर होगी, आगे जो उसका आने वाला बच्चा होगा वो कमजोर होगा। तो ऐसे हमारे मोटे अनाज, जैसे आपका रागी है, रागी कैल्शियम से भरपूर है, मतलब 100 ग्राम रागी में आपका 344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है
3: जी।
2: तो अगर इसका इस्तेमाल हमारे भोजन में, महिलाओं के भोजन में, बच्चों के भोजन में कर दिया जाए तो ये समस्या हमारी कम हो जाएगी। ऐसे ही हमारा एक खनिज है आयरन, यानी कि लौह तत्व, जिसकी और लौह तत्व से अनीमिया होता है, और ये हमारी आज भी अगर हम बात करें 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं, 70% महिलाएं अनीमिया से ग्रसित हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमारे मोटे अनाज, और ये जो आपका लौह तत्व है, आपका ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, इन सब में बहुत अच्छे से पाया जाता है। ज्वार और बाजरा, इनमें तो बहुत अच्छी मात्राएं पाया जाता है
3: जी।
2: तो अगर इनका इस्तेमाल होगा तो ये जो कुपोषण की समस्या है ये हमारी काफी हद तक से निजात पा सकते हैं, बस जरूरत है इनको अपने भोजन में, हमें अपने भोजन में शामिल करने की।
3: जी बिल्कुल, और धारणा ये है कि जो मोटे अनाज है स्वाद में शायद आपको इतने अच्छे ना लगे, तो ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि इससे जो जो उत्पाद है वो और ज्यादा स्वादिष्ट बन जाते हैं। तो कैसे बनते हैं, किस किस तरह के उत्पाद है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं ये मोटा अनाज क्यों कहा जाता है और इससे क्या फायदा हो सकता है और किसानों को कैसा इसमें लाभ मिल सकता है, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी खेती में हमें ज्यादा मेहनत या मशक्कत नहीं करनी पड़ती।
3: अच्छा,
2: ये आपके बड़े कहेंगे कठोर फसलें हैं, आपके विषम परिस्थितियों में भी उग जाते हैं, यानी कि इनको पानी की आवश्यकता कम होती है, यानी जहाँ सूखा
4: है जहाँ
2: सूखा आपका क्षेत्र होता है वहाँ पे आप इसकी खेती कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है, मतलब रफ एंड टफ।
3: जी,
2: तो
3: कम पानी वाली जो जगह है, वहाँ हो सकते हैं, क्षेत्र है वहां पर भी इसकी खेती की जा सकती है।
2: वर्षा आधारित, जहाँ पे वर्षा निर्भर रहते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो और तो जलवायु के हमारे उस पे आधार पे मतलब बहुत अच्छे, जो हम बात करते हैं अपने क्लाइमेट रेजिलेंट की, तो उसमें ये बहुत फिट बैठते हैं, मतलब हमारे लिए कहेंगे कि सुटेबल है, तो इसलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है।
3: जी,
2: और जैसे बात करें कि किसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, जैसे किसान भाई बात करें आपके गेहूं और चावल की, इनकी पैदावार में हमें मतलब 120 से 150 दिन लग जाते हैं, जबकि आप मोटे अनाज की आप खेती करते हैं तो ये 70 से 100 दिन में तैयार हो जाता है।
3: अच्छा,
2: तो और साथ ही साथ जैसे आपने गेहूं अनाज से फसल को लेके बेचा, पर आपने मोटे अनाज में आपको एक तो खाद्य के रूप में आप जो मिल रहा है आपको उपज खाद्य में ले सकते हैं, दूसरा जो आपका बचत बचता है वो चारे में जाता है, तीसरा आप ईंधन में। अच्छा, और फिर इसके औद्योगिक इस्तेमाल भी हैं, स्टार्च बनाने में, जैसे मक्का है स्टार्च इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी है।
3: अच्छा,
2: वहां सबसे मेन आपका मक्का ही मांग की जाती है। आपका और भी चीजें हैं, इंडस्ट्रियल उत्पाद है जो कि हमारे जैसे जौ है, इसका अल्कोहल में काम होता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है, तो ये काफी औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो विविधीकरण के लिए रास्ता खोलते हैं मोटे अनाज हमारी खेती में, तो इसीलिए किसानों के लिए इनकी खेती महत्वता और अनाज के साथ महत्व रखती है।
3: बिल्कुल डॉक्टर, तो आप बता रही थी कि किस तरह से जो किसान हैं उनके लिए मोटे अनाजों की खेती बेहद लाभकारी हो सकती है, एक तो कठोर परिस्थितियों में भी इनकी खेती की जा सकती है और इसके कई तरह के उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं और इसके इस्तेमाल कई जगहों पर है, तो आमदनी का जो जरिया है किसानों के लिए वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इनके खाद्य प्रसंस्करण पर आते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि जो मोटे अनाज है लोगों की धारणा है कि खाने में इसके उतना स्वाद नहीं है, तो ऐसे में बताएं कि प्रसंस्करण की महत्ता कितनी है, खासतौर पे बच्चों के लिए आपने बताया कि बहुत ये महत्वपूर्ण है, तो कैसे उनके लिए दिलचस्प बनाया जाए।
2: जी, तो जैसे पहले जैसे मोटे अनाज का हमारे खाने में खिचड़ी रोटी दलिया इनके रूप में होता था, पर अब जैसे क्योंकि पौष्टिकता की दृष्टि से ये काफी अच्छे हैं और सभी को सभी वर्ग के लिए बहुत अच्छे मतलब है, और खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी, तो बच्चों में इसका खान पान कैसे मतलब इसका बढ़ाया जाए कि बच्चे इसको पसंद करें, तो कई प्रकार के इसके उत्पाद अब बनने लग गए हैं, मतलब नाश्ते के रूप में आपका उपमा के रूप में सूजी इनकी बन जाती है और आपका इनका बिस्किट जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बिस्किट भी नहीं, हम जैसे बाजरे का, हमारा ये उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है बाजरे का क्षेत्र है, तो यहाँ पे बाजरे का प्रसंस्करण में हमने बाजरे के बिस्किट पे प्रशिक्षण आयोजित किया था, तो एक महिला ने ये उद्योग शुरू किया तो 15 प्रकार के उन्होंने बिस्किट बनाए, तो उसमें बच्चों के लिए भी बिस्किट बनाए और वो खासकर बच्चों के लिए बच्चों द्वारा बहुत पसंद किया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चॉकलेट डाल दिया गया।
3: अच्छा,
2: तो बच्चों को स्वाद में बहुत अच्छा आया, तो यही इन मोटे अनाज का ब्रेड आपका केक इस तरीके से उत्पाद है, और यही नहीं है जैसे हमारा नूडल्स वगैरह आते हैं वो भी इनसे बन जाते हैं, पास्ता जो अगर हम विदेशी खाने पे जाएं तो पास्ता भी बनता है इस मोटे अनाज से, तो इसकी मशीन भी आ गई है और हमारा एक संस्थान है हैदराबाद में इसी का, कदन्य फसलों, इनको मोटे अनाज को हम कदन्य फसलें ही बोलते हैं, तो हैदराबाद में इसका संस्थान है, जो इन्हीं सभी फसलों पे काम करता है और उसके प्रसंस्करण पे भी काम करता है। क्योंकि जैसे बात हम कर रहे हैं प्रसंस्करण की कि खेती में आपको तभी फायदा होगा कि अगर आपने जब उसको कोई नया रूप दे दिया, खाली अनाज को निकाल के बेचने से ज्यादा फायदा नहीं है, आपने अगर अनाज का मूल्य संवर्धन कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया, तभी आपको फायदा मिलेगा। बाजरा का दाम जैसे देख रहे थे कि 1500 से 2000 के रूप में जाता है क्विंटल, पर वही अगर बाजरा बिस्किट जाएंगे तो वो आपको 4 गुना तक ज्यादा चला जाएगा। तो ये मूल्य संवर्धन भी हो जाएगा, एक कुपोषण की जो हमारी समस्या है वो भी कम हो जाएगी और हमारे जो स्वास्थ्य है वो भी, उसमें भी लोगों में सुधार आएगा।
3: बिल्कुल।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें
3: करना चाहूंगी और रेशम कीट पालन के बारे में आपसे जानना चाहूंगी।
4: जी, अगर हम लाभकारी कीटों की बात करें तो पहला आता है मधुमक्खी पालन और दूसरा है रेशम कीट पालन।
3: जी।
4: बहुत सारे जितने भी हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ सभी लोग, ज्यादातर लोग रेशम कीट पालन करते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाएं भी हैं इस बारे में कि किस तरह हम आमदनी को बढ़ावा दें। तो हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड बैंगलोर में स्थित है, ये हेडक्वार्टर है और उसकी कई सारी रीजनल स्टेशन है जो हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। तो जो भी कोई अगर रेशम कीट पालन करना चाहता है तो अपने निकटवर्ती जो भी हमारा रेशम कीट पालन केंद्र है वहां से संपर्क करके अंडे ले सकता है, अंडे या फिर लार्वा ले सकता है और हर जगह उनको आसानी से पाला जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, मतलब बहुत से लोग तो एक छोटे से कमरे में रेशम कीट पालन कर सकते हैं और ये काम बहुत आसान है और महिलाएं इसे बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो अगर कोई भी किसान अगर चाहता है कि खेती बाड़ी के साथ में हम आमदनी का एक और जरिया रखें तो रेशम कीट पालन एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, इसको सब अपनाना चाहिए और इसमें बहुत सारी स्कीमें भी वर्तमान में चल रही हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: तो ऋतु, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि किस तरह से कई तरह के उत्पाद मूल्य संवर्धन करके मोटे अनाजों के बनाए जा सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए या फिर इसको एक व्यवसाय का रूप देने के लिए क्या किसानों को उससे पहले प्रशिक्षण ले लेना चाहिए और इससे उन्हें कितना लाभ होगा?
2: जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मोटा अनाज हम अभी तक पारंपरिक खाने में इस्तेमाल करते थे, पर अगर हम और जो नए उत्पाद है जैसे हम बात कर रहे हैं कि बेकरी के जैसे बिस्किट है, ब्रेड है या पास्ता है, नूडल्स है, ये सब बनाना है तो ये नई चीजें हैं, तो इनकी मशीनें भी हैं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है प्रशिक्षण लेना। और प्रशिक्षण के लिए आपके पास कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे जैसे मैंने बताया कि हैदराबाद में संस्थान है वहां, या नजदीकी है तो कृषि विज्ञान केंद्र, आप यहां पे संपर्क करके प्रशिक्षण कार्यक्रम ले सकते हैं, या अगर वो वहां पे नहीं होता फला कृषि विज्ञान केंद्र में तो वो आपको संस्थान में भी नॉमिनेट करके भेज सकते हैं ताकि आप प्रशिक्षण ले लें। क्योंकि इसकी मशीनी कैसी है और सबसे बड़ी बड़ी आती है कि मोटे अनाज को आप सीधा, जैसे कुछ अनाज जैसे बाजरा है इसको हम सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको पचने में थोड़ा भारी होता है, क्योंकि इसकी जो ऊपरी परत होती है उसपे मतलब कहेंगे कि पोषक तत्व विरोधी एक परत होती है तो उसको हटाना पड़ता है। तो उसके लिए कई चीजें, छोटी छोटी चीजें जैसे आप अंकुरण कर लें, उसको भिगो के रख लें, या पॉपिंग यानी कि जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं पॉपिंग कर लें, या उसको चपटा करके फ्लेकिंग बोलते हैं वो कर लें, तो उससे वो जो पोषक विरोधी तत्व है वो हट जाते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो कि करनी पड़ती हैं इस्तेमाल करने से पहले, ऐसे ही मक्का में भी करना पड़ता है। तो ये इन सब चीजों के लिए आपको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सीधे ही उत्पाद बनाएंगे और कुछ मतलब उत्पाद ठीक नहीं निकले तो उससे पहले जरूरी है कि एक जानकारी ले लें और ताकि फिर उसको उद्यम में आए।
3: बिल्कुल, आपने बताया कि कई तरह के मशीनों का भी उपयोग होता है इसमें, इसके बारे में कुछ और हमें जानकारी दें।
2: जी, जैसे आपका प्रोसेसिंग की जो प्रसंस्करण की मशीन है, जैसे आपकी इनकी ग्रेडिंग, क्योंकि दाने बहुत छोटे होते हैं इनकी, आप हाथ से नहीं कर सकते, तो इनकी ग्रेडिंग की मशीन आती है जिसमें दानों की छटाई हो जाती है, फिर इनकी मिलिंग जैसे आटे के रूप में करना है तो वो मशीन आती है, फिर पॉपिंग की मशीन आती है जिसमें ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं।
3: अच्छा।
2: और फिर एक आपका एक अच्छा हेल्दी कहेंगे स्वस्थ नाश्ता या एक अच्छा एक स्नैक के रूप में उभर के आता है, तो इस तरीके से ये इनकी मशीन भी आ गई है। तो ये और जो इन मशीनों का इस्तेमाल जो है और जो हमारी हैदराबाद की संस्था उन्होंने बनाई है मशीनें, तो उनके संपर्क करके ली जा सकती हैं हमारे, जैसे बताया कि ऋण लेकर हम सारी मशीनें नहीं खरीद सकते, तो इसमें अनुदान की आवश्यकता होती है, तो ये ऋण लेकर इन मशीनों का इस्तेमाल करके अपर यहाँ ये चीज तब करें जिस क्षेत्र में जो अनाज आपका मोटा अनाज हो रहा है, जैसे ज्वार का क्षेत्र है तो ज्वार के संबंधित मशीन ही लें, बाजरे का क्षेत्र बाजरा प्रसंस्करण संबंधित मशीन ही लें, मक्का का है तो मक्का प्रसंस्करण संबंधित मशीन ही लें, तभी उसका इस्तेमाल सही से हो पाएगा।
3: बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जाना आपने कि किस तरह से जो मोटे अनाज है उनका आप प्रसंस्करण कर सकते हैं, और उसके लिए बेहतर होगा कि आप पहले प्रशिक्षण ले लें और तमाम जानकारियां हासिल कर लें और उसके बाद इस व्यवसाय की शुरुआत करें।
1: किसान साथियों, मोटे अनाज से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानेंगे, उससे पहले यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटा भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मोटे अनाज की खेती और मित्र कीटों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां अभी तक हमने ली है, साथ ही और जानकारियां हम लेंगे एक्सपर्ट के माध्यम से। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को मोटे अनाज और मित्र कीट से संबंधित।
2: में रेशम कीट पालन के बारे में आपने हमें जानकारी दी, अगर इसके बारे में किसान कुछ और जानना चाहते हैं या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उन्हें कहां संपर्क करना चाहिए?
3: देखिए, हर ब्लॉक में हर डिस्ट्रिक्ट में CRC यानी चौकी रेयरिंग सेंटर, सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने अपनी संस्थाएं अपने केंद्र स्थापित कर रखे हैं। तो आप अपने किसी भी नजदीकी संस्था में जाके संपर्क कर सकते हैं, वो आपको अंडे भी दे देंगे और बच्चे भी दे देंगे और पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है और आप आसानी से उसको शुरुआत कर सकते हैं। कहाँ करना चाहते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर किसी भी राज्य में करना चाहते हैं तो वहां पे कौन सी फसल आप लेंगे, जैसे अगर हम असम की बात करें तो वहां का मूंगा सिल्क, आपने सुना होगा कि मूंगा सिल्क की साड़ियां मेखला चादर वगैरह बनती है। तो अगर असम या हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट यानी झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, यहाँ करना चाहते हैं तो इरी सिल्क वॉर्म यानी कि जो कैस्टर पर रहता है और मूगा सिल्क वॉर्म जो सोमन स्वल, क्योंकि जहां पर भी उसके पेड़ होंगे होस्ट जिस पर हम पालेंगे कीड़ों को, यानी जो रेशम कीट के कीड़े होंगे उनको पालने वाले पेड़ों का होना भी आवश्यक है। तो पहले तो आप हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ पे करना है और किस रेशम कीट को करना है। एक्चुअली दो तरह के रेशम कीट हैं, एक तो होता है जंगली और दूसरा होता है पालतू वाला।
1: चलिए इसी के साथ हम काफी समय से मोटे अनाज की खेती को लेकर काफी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि हमें मोटे अनाज की कौन कौन सी फसलें लेनी चाहिए, इससे कौन सी फसलों में हमें अधिक लाभ हो सकता है।
2: बिल्कुल डॉक्टर ऋतु।
4: हाँ, मोटे अनाज में आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, जौ है, कोदो है, सवा है, ये आपके सब मोटे अनाज में आती हैं।
2: जी,
4: तो आपके यहाँ पे ये जैसे ज्वार और बाजरा की खेती आप कर सकते हैं, मक्के की भी खेती आपके यहाँ पे हो सकती है, तो आप इसमें प्रसंस्करण की संभावनाएं देख सकते हैं अपने क्षेत्र में।
2: जी जी बिल्कुल। मक्के की बात की आपने, मक्के में किस तरह से प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के विकल्प है किसानों के पास, बताएं।
4: जी, जैसे मक्का है, जैसे बात करें अगर इसमें पोषणता की दृष्टि से, तो मक्का आपका जो आता है प्रोटीन से भरपूर होता है।
2: जी
4: ठीक है, और खासकर अगर पीली मक्का की बात करें तो उसमें विटामिन ए काफी मात्रा में होता है जो कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पोषण के साथ साथ इसमें रेशा बहुत होता है हमारे, जो कि हमारे खाने में जरूरत है। तो अगर इस बात करें इसके प्रसंस्करण की, तो मक्की का आटा बनता है, पर मक्की के आटे में थोड़ा सा ये ऐसी दिक्कत की वो थोड़े दिन के लिए ही रह पाता है, पर प्रसंस्करण तकनीक आ गई है, बहुत छोटी सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके इस आटे की अवधि हम जो है लंबे समय तक, जैसे हम गेहूं का आटा रखते हैं वैसे ही हम इसको रख सकते हैं। फिर इसी आटे से, मक्की के आटे से आप कई प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं, जैसे हम रोटी तो हो ही गई, पर आपका इसी मक्की के आटे से सूजी आपका बन जाता है, इसी मक्के से आप दलिया बना सकते हैं, उस दलिया से आप अन्य जो बच्चों के लिए शिशु आहार जो हम कहते हैं वो बना सकते हैं, और इसके अलावा आपका मक्की का कई उत्पाद, लड्डू है आपका, फिर केक है, बिस्किट है, ये सब उत्पाद भी इससे मक्के से आपके बन सकते हैं और बन रहे हैं। अभी सरकार ने ये भी किया है कि कई राज्यों में मिड डे मील जैसे बच्चों के लिए जाता है तो उनमें भी इन अनाजों का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया है ताकि बच्चों को पोषण से सुरक्षित रखा जा सके।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: जैसे बाजरे के बिस्किट के लिए आपको जो हमारी बेकिंग सिकाई की मशीन आती है जिसमें हमारे केक वगैरह बनते हैं, वो आपको लेना होगा। मशीन आपके अलग अलग प्रकार की आती है, मतलब कहेंगे क्षमता के आधार पे आती है कि आपने 30 किलो बेक करना है, 40 किलो बेक करना है, 20 किलो बेक करना है, तो उसके आधार पे ये मशीनें आती हैं और ये बिजली से भी चलती हैं, ईंधन से भी चलती हैं। अच्छा, तो आपको अगर ये जैसे बाजरे के मशीन आप कह रहे हैं कि कहाँ से आप ले सकते हैं शायद, है ना?
2: जी जी।
4: तो आपने जैसे प्रशिक्षण सबसे पहले आप इसमें लीजिएगा, किसी भी आप कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या कोई संस्था ऐसी हो तो वहां से आप लें। और आपको खादी विलेज, जो खादी ग्राम उद्योग है, उनका एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, उसमें आप इसमें इस योजना के तहत आप अप्लाई करें कि आप इस यूनिट को लगाना चाहते हैं। उन मशीनों के आपको नाम लिखने हैं, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ मशीन बेकिंग के नहीं, आपको इसमें बिस्किट जो है हमारा आटा गूंद के बनता है, तो उसकी गूंदने की मशीन आती है, वो गूंदने के लिए मशीन चाहिए होती है। फिर थोड़ा आपको सामान टेबल है।

0: किसान साथियों, चलिए रुक करते हैं रेशम कीट के ऊपर। कैसे ये रेशम कीट रेशम को बनाता है, क्या उसमें क्या खासियत होती है जो रेशम बना देता है, और कैसे बनाता है, हम इसका पालन कैसे करते हैं, और क्या क्या किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए आदि जानकारियों को लेते हैं इसमें। आइए लेते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
1: देखिए, सबसे पहले तो बात अगर हम करेंगे तो कौन सी वैरायटी और कौन सी ब्रीड, अगर हम रेशम कीट पालन की बात करें तो आपने ली कहाँ से है और आपके जगह के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा, लेते समय हमें ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रेन या वैरायटी हम ले रहे हैं, जो भी जिस भी प्रजाति का ले रहे हैं, उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि सेरिकल्चर यानी कि सिल्क फॉर्म रेयरिंग यानी रेशम कीट पालन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो बीमारी की, और वो होती है कि हम साफ सफाई का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसमें कई बार बैक्टीरिया वायरस की बीमारी आ जाती है। तो जब भी सीआरसी जो भी हमारे चौकी रेयरिंग सेंटर्स होते हैं, हम उनसे बच्चे लेते हैं और उनको लेकर आकर हम उन्हें पालना शुरू करते हैं। फीडिंग ट्रेज होती है, उसमें हम मलबरी यानी शहतूत की पत्तियों को देते हैं उन्हें खाने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है। और एक बार में, अगर एक दिन में जब हम रेशम कीट पालन करते हैं तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके खाने की रिक्वायरमेंट भी उसी के अनुसार बढ़ती है। तो एक दिन में हमें लगभग 3 से 4 बार खाना उनको देना पड़ता है। तो जब हम पत्तियां खिला रहे होते हैं, तो जैसे अगर नया बच्चा है तो उनको जो ऊपर की पत्तियां होती है, कोमल पत्तियां होती है, वो खिलानी होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसको हम बड़ी पत्तियां देते हैं जो कि मैच्योर लीव्स होती हैं। पर हर बार इस बात का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम फीडिंग ट्रेज में जो खाने वाली प्लेट्स होती है उसमें हम बच्चा और खाना दोनों रख रहे होते हैं, और उनका एक्सक्रीटा भी, मल भी उसी में होता है, तो हमें साफ सफाई का समुचित प्रबंधन करना होता है। और जब रेशम कीट का बड़ा बच्चा हो जाता है, सूरी बड़ी हो जाती है, और वो कोया यानी कि जो कुकून होता है सिल्क का, रेशम का बनाना शुरू करती है, तो उसको हम अलग लेकर जो माउंटेज होते हैं, जिसे वुडन में अगर कहें लकड़ी के बने तो चंद्रिका जिसे कहते हैं, उसके अनुसार हम उस बच्चे को वहां शिफ्ट करते हैं ताकि वो गोल गोल घूमकर एट के आकार का घूमकर रेशम बनाना शुरू करता है। रेशम कहाँ से आता है? जो लार्वा होता है उसके मुंह में एक तरह की ग्रंथियां होती है जिसे हम सिल्क ग्लैंड कहते हैं। वो सिल्क अपने मुंह से निकालकर अपने पूरे शरीर के चारों तरफ लपेटना शुरू करता है और एक तरह से फाइनली कुकून बन जाता है। अब उस कुकून को हम मार्केट में लेके आते हैं। अगर आपने अच्छा खाना खिलाया है रेशम कीट को तो अच्छा कुकून बनेगा, और दो तरह के कुकून होते हैं, या तो यूनिवोल्टिन, बाइवोल्टिन और मल्टीवोल्टिन। तो मार्केट में उसके जो कुकून का मार्केट लगता है, पूरी मंडिया लगती है, और अगर अच्छा कुकून है तो अच्छे मार्केट की प्राइस आपको मिलेगी।
0: बिल्कुल किसान साथियों, अभी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर हासिल किया। आपने जाना कैसे एक पालतू रेशम की कीट होती है और जंगली भी रेशम की कीट पाई जाती है, तो इसका हमें कैसे देख रेख करना चाहिए, कैसे हम इसका पालन कर सकते हैं, और कैसे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। साथ ही यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भीड़ 90.8 FM में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मोटे अनाज से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, साथ ही रेशम पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए आइए लेते हैं कुछ और एक्सपर्ट की राय। यहाँ पर हमारे किसान का सवाल है कि जो हमारी बाजरे की फसल है वो कौन से समय में लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसको बारिश के समय में लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकती है या इसे हम गर्मी के समय में ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे एक्सपर्ट की राय।
2: इसकी फसल की बाजरे की बात करें तो बरसात के समय, इस समय ये बिजाई का समय बहुत उपयुक्त है आपका बाजरे के लिए। इस हफ्ते तक भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और इसकी क्योंकि अक्टूबर तक आपकी इसकी कटाई कर लेंगे तो इसमें उपज आप ज्यादा अच्छी होगी। क्षेत्र है तो वहां के लिए जो किस्म है बाजरा की वो ही आप लगाएं। वैसे आप बाजरा की ऐसी किस्में भी आ गई जिसको हम बायो फोर्टिफाइड किस्में कहते हैं जी, तो जी। वो भी काफी आ रही। बायो फोर्टिफाइड का मतलब इनमें कुछ ऐसे पोषक तत्व और डाल दिए गए हैं जिनकी इससे गुणवत्ता और बढ़ जाए। तो ऐसी ही कई किस्में आ रही हैं, बाजरा में भी ऐसी कई किस्में आई हैं
3: जी, जी।
2: तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ये आपके क्षेत्र में आप ये लगा सकते हैं। बायो फोर्टिफाइड किस्म है 1200 AHB 1200 FE। आप ये महाराष्ट्र की निकली हुई किस्म है विश्वविद्यालय की, कृषि विद्यापीठ की, तो वहाँ आप ये किस्म भी ले सकते हैं, लगा सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: मक्के की खेती आप दो बार कर सकते हैं, एक अभी जो अभी फसल आ गई और फिर एक सर्दियों में भी आप कर सकते हैं। दो समय में ले सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो आप दो बार कर सकते हैं। और मक्का जैसे आपका इस क्षेत्र के आधार पे ही आप किस्म लेंगे। एक मक्का में हमारे वैज्ञानिकों ने यह भी जांच किया है क्वालिटी प्रोटीन मक्का, यानी कि जो प्रोटीन की जो गुणवत्ता है उस मक्के में बहुत अच्छी है, जो क्योंकि हमें प्रोटीन सभी खाद्यों में मिल जाता है पर अच्छा क्वालिटी का गुणवत्ता वाला प्रोटीन है वो हमें इस क्वालिटी प्रोटीन मक्का के किस्म मिल जाता है। तो वहाँ उस क्षेत्र के लिए भी इसके किस्में होंगे, उनको लगाएंगे तो और आपको फायदा होगा। इसी में आपका प्रसंस्करण से अगर आप जुड़ जाएंगे मक्के के प्रसंस्करण से तो आपको कहेंगे डबल, यानी कि दुगना आपको हो सकता है। तो आप उसी के प्रसंस्करण में भी आ सकते हैं। कई उत्पाद जैसे हमने पहले ही बताए, तो बेकरी के अगर उद्योग में जाते हैं तो आपको ब्रेड बिस्किट केक वगैरह लेके जा सकते हैं। अगर आप नाश्ते वाले उसमें जाते हैं तो आप बढ़िया भी है आपके हैं, नमकीन वाले स्नैक्स हैं, मिक्सचर हैं, छिड़वा भी इसका बनता है मक्की का, मतलब चपटा जैसे कॉर्नफ्लेक्स जैसे आते हैं वही आपका है। और छिड़वा आपका कच्ची मक्का को मशीन से प्रेस कर दिया जाता है और हल्का भून लिया जाता है, तो एक छिड़वा का स्नैक एक नमकीन स्नैक बन सकता है।
3: मतलब अगर आप कई तरह के जो उत्पाद है वो किसान बना सकते हैं, मूल्य संवर्धन की जो संभावनाएं हैं इसमें बहुत ज्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाभकारी कीटों में एक अहम कीट लाख कीट भी है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारियां दें।
4: जी बिल्कुल, लाख हमने बात की थी मधुमक्खी की क्योंकि शहद मिलता है
3: जी,
4: रेशम कीट की थी क्योंकि रेशम के कपड़े हम सिल्क की साड़ियां पहनते हैं
3: बिल्कुल।
4: और आपने कई बार देखा होगा कि पंजाबी में चूड़ा और बंगाली लोग एक स्पेशली कड़ा पहनते हैं, तो लाख वो लाख का बना होता है। और हमारी जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी होती है ज्वेलरी उसमें लाख का प्रयोग किया जाता है
3: जी।
4: तो लाख जो है वो कहाँ से मिलता है, वो एक कीड़े से मिलता है, एक ऐसा कीड़ा जो पेड़ के ऊपर रहता है और अपने ऊपर एक कवर बना के चलता है। उस कवर, वो जो कवर होता है उस कवर को हम जो ट्विक्स होती है हम छीलते हैं फिर उसे पीसते हैं और छान के हम लाख बनाते हैं। और लाख के कीड़े जंगलों में बहुत सारे पेड़ों पर रहते हैं और लाख के लिए एक विशेष संस्थान है हमारा रेजिन का, जो कि झारखंड रांची में उपस्थित है नमकुम नामक जगह पर। तो जो लोग लाख में करते हैं, जो लोग रूरल हैं, जो ग्रामीण हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, वो ऐसी शाखाओं को कलेक्ट कर सकते हैं जिनपे की लाख कीड़ा रहता है और उसे आसानी से प्रोसेस करके हम लाख को बेच सकते हैं। कई तरह के लाख बिकता है मार्केट में, जैसे कच्चा लाख हुआ, प्रोसेस लाख हुआ, और उसकी आसान प्रक्रिया है और इसको भी एक रोजगार का बहुत ही उत्तम साधन अपनाया जा सकता है।
3: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाज का मनाने जा रहे हैं और भारत के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इसकी अगुवाई करने की, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी, ये बहुत अच्छा हमारी सरकार ने पहल लिया कि हम पहले तो हमने 2018 में देश का बताइए मिलेट का साल मनाया था, पर 2023 में हमारी सरकार ने विश्व में इसको प्रचार करने के लिए, ताकि इसकी मांग जैसे लोगों में बढ़े, जानकारी मिले कि हाँ इसका इस्तेमाल जो हमारे पोषण के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ यही नहीं कि कुपोषण के लिए, हमारे अच्छे बच्चे, हमारे शहरीकरण के वजह से हमारी कई बीमारियां, आपके कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है इन मोटे अनाजों में
3: जी।
2: कैंसर आपका आपका हृदय के संबंधित रोगियों में आजकल आप देख रहे हो कि दिमागी जो मेंटल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं उसको भी कम करने की क्षमता है इन अनाजों में, इसलिए इस पे जोर देने के लिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2023 को, और ये बहुत अच्छी पहल है और इससे लगता है कि हमारे देश में लोग विश्व में जानेंगे कि मोटे अनाज की खेती करने वाला देश क्या क्या मतलब कर सकता है इस क्षेत्र में।
3: जी डॉक्टर ऋतु, आपने लगातार हमें मोटे अनाजों के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत जी।
1: किसान भाइयों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, आपने जाना मोटे अनाज से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को, कैसे अभी मोटा अनाज जो है बहुत ही पौष्टिक आहार बन चुका है और साथ ही इसमें कैंसर से लड़ने तक की ताकत है। तो किसान साथियों, यहाँ पर मोटे अनाज और जो हमारा कीट पालन है, इससे भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ही मुनाफा हो सकता है। तो जो भी किसान भाई इसकी तरफ अपना रुख करना चाहते हैं वो अपना रुख कर सकते हैं, साथ ही केवीकी के माध्यम से जो भी अनुदान मिल रहा है उसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त पर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडा भील 90.8 FM के साथ।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कुछ कहानियां किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहां गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहां हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने काम से सिर्फ सफलता नहीं बल्कि एक बहुत नई सी सोच को दुनिया को देते हैं। आज हमारे साथ हैं दीपक कुमार खियानी जी, जो फाउंडर हैं परिवर्ल्ड के। इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ अपनी जर्नी शुरू की, गिफ्ट अ प्लांट इंस्टेड ऑफ अ बुके। परिवर्ल्ड के जरिए वो सिर्फ पौधे नहीं देते बल्कि लोगों को नेचर से दोबारा जोड़ने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पहल कर रहे हैं। ग्रीन गिफ्टिंग, इंडोर गार्डनिंग और हेल्दी ग्रीन स्पेसेस को बढ़ावा देते हुए उनका मानना यह है कि एक पौधा सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि जीवन, उम्मीद और रिश्तों का प्रतीक है। तो आइए स्वागत करते हैं दीपक जी का। तो दीपक जी, जिंदगी अनप्लग्ड और SN रेडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
1: बहुत ही शानदार। थैंक यू तनुषा जी एंड थैंक यू SN रेडियो फॉर हैविंग मी।
0: थैंक यू सर, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी खूबसूरत सोच हम सबके साथ साझा करने के लिए। हम बहुत ही उत्सुक हैं कि हम आपकी जर्नी आगे की सुने, किस तरह से परिवर्ल्ड जो आपका ब्रांड है, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, किस तरह से वो एग्जिस्टेंस में आया, क्या उसके पीछे सोच रही, कैसा आपका सफर था, तो इन्हीं सब बातों को हम आज आगे लेके जाएंगे। और इसी से मैं अपना पहला सवाल आपसे पूछती हूँ कि परिवर्ल्ड जो आपका ब्रांड है, जो आपका एक बेबी चाइल्ड है बेसिकली, उसकी शुरुआत किस तरह से हुई, उसका थॉट कैसे जन्मा कि गिफ्ट अ प्लांट इंस्टेड ऑफ अ बुके, ये सोच आपके अंदर कहां से आई, कौन सा ऐसा मोमेंट था, क्या ये कोई पर्सनल कहानी थी या कोई पर्सनल एहसास था जिसने आपको इंस्पायर किया, अगर इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: तनिषा जी, जैसे क्या है कि हम गिफ्टिंग करते हैं तो ये दो थॉट्स को आपस में कनेक्ट करने से हुआ। एक थॉट तो ये रहता था कि लोग बाहर तो प्लांट्स लगाते थे लेकिन अपने घर में इंडोर प्लांट्स नहीं लगाते थे और नॉर्मली खुद कभी कई बार लेते नहीं थे। दूसरा, हम इसको देखते थे कि जब प्लांट्स गिफ्टिंग के अंदर लोग बाग इसलिए नहीं यूज कर रहे थे क्योंकि उसकी जगह वो बुके दे रहे थे, बट हमने ये देखा बुके तो आपका 2 या 3 दिन के अंदर ही उसकी लाइफ शेल्फ खत्म हो जाती है, बट आप प्लांट किसी को देते हो तो वो आपका कई बार उसके साथ 1 साल 2 साल उसके पास पड़ा रहता है और कई बार एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि लोग बुके देते हैं, कई बार आप देखो शादियों में बुके देते हैं तो बहुत सारे बुके की इवन शादियों में छोड़ के चले जाते हैं या फंक्शन में छोड़ के चले जाते हैं, कोई लेके नहीं जाते हैं,
0: इतने महंगे।
1: तो हमारे दिमाग में ये आइडिया आया था कि क्यों नहीं हम ये प्लांट गिफ्टिंग करी जाए और वो इंडोर प्लांट्स ही करी जाए ताकि लोग अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट रख सकें जिससे उनकी हवा, पानी, उनका मेंटल पीस सब चीजें इम्प्रूव हो पाए।
0: जी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि हम जब प्लांट गिफ्ट करते हैं तो वो मर जाते हैं, तो इसीलिए लोग शायद बुकेज की तरफ जाते हैं कि वो खूबसूरत भी ज्यादा लग रहे हैं, उसमें कलर्स भी ज्यादा हैं और प्लांट अभी यू नो सिर्फ एक सीड स्टेज पे है, तो क्या ये एक डर होता है लोगों को, किस तरह से आप इसको देखते हैं?
1: एग्जैक्टली, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है और हमने इसी चीज को एड्रेस किया था। अगर आप परिवर्ल्ड के साथ प्लांट देते हैं तो हमने सबसे बड़ी बात ये चैलेंज एड्रेस किया था कि आप प्लांट अगर किसी को दे रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कैसे कि इसकी देखभाल कैसे करनी है। तो परिवर्ल्ड ये चीज प्रोवाइड कराता है, अगर आपने किसी को प्लांट गिफ्ट किया है तो फिर वो डायरेक्टली परिवर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है, हमारे हर प्लांट के ऊपर क्यूआर कोड होता है जिसको आप स्कैन करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उसको कितना पानी देना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है। इवन आप प्लांट जब में कभी कोई इश्यू भी आता है तो आप उस टाइम भी उसमें देख सकते हैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करके। और हमने उसके लिए बाकायदा एक कस्टमर केयर सपोर्ट भी बनाया है कि अगर आपको उसके बाद भी कोई चैलेंजेस आ रहा है तो आप हमारे कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं और वो आपको उसके सही सॉल्यूशन बता देंगे ताकि आपका प्लांट वो डाई नहीं हो और वो चलता रहे। ये चीज हमने ऑलरेडी एड्रेस की थी इसमें। तो ये बहुत बड़ा इश्यू होता है कि ज्यादातर लोग जो प्लांट गिफ्ट करने में भी हिचकते हैं ना, वो सिर्फ यही रीजन होता है।
0: और कई बार हम बस खूबसूरती पे जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे बुके देंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा, बट हम उसकी जो लॉन्ग टर्म जो सोच है, जो आपकी सोच है, परिवार की सोच है, उस पे नहीं जाते कि अगर हम किसी को बुके देते हैं तो वो तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर ना उसकी कोई मेमोरी है, ना उस गिफ्ट का कोई वजूद उस इंसान के साथ जिएगा। बट अगर आप प्लांट गिफ्ट करते हैं और अगर वो हम वो सामने वाला इंसान उसको सही से उसकी केयर करके उसे बड़ा करता है तो कहीं ना कहीं वो हमेशा के लिए उसके जहन में साथ रहेगा। और जब जब कोई इंसान जिसको आपने गिफ्ट किया है अब वो उस प्लांट को देखेगा तो उसको हमेशा आपकी याद आएगी और हमेशा वो ये याद रखेगा कि आपने उसको इतना खूबसूरत सा गिफ्ट दिया था जो उसके साथ बड़ा हुआ। इसी से मुझे एक इंस्टेंस याद आता है, जब मेरी मदर ने, मेरी दीदी की जब फर्स्ट जॉब लगी थी तो इनको एक छोटा सा बैम्बू गिफ्ट किया था और वो बैम्बू आज 5 साल में इतना बड़ा वो बैम्बू हो गया है। तो मेरी दीदी जब भी उसको देखती है वो यही कहती है कि अब बस जब भी मेरी जॉब चेंज होगी आप मुझे एक और गिफ्ट करोगे बैम्बू। तो ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस मैं साझा कर रही हूँ, बट हाँ ऐसा होता है जब आप प्लांट गिफ्ट करते हैं तो सच में उसका फर्क पड़ता है अगर आप उसकी सही से देखरेख करें, उसे सही से बड़ा करें, उसका ध्यान रखें, तो वो पौधा आपको हमेशा उस इंसान की याद दिलाएगा जिसने आपको वो गिफ्ट किया। तो इसी तरह से ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। आपको भी क्या दीपक जी ऐसा लगता है कि जब आप एक प्लांट गिफ्ट करते हैं तो हमारे आपसी रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं, किस तरह से, और अगर आप कोई कस्टमर एक्सपीरियंस शेयर कर सके हमारे साथ?
1: देखिए, जैसे आपने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस लिया कि आपकी सिस्टर को आज भी याद है कि वो प्लांट उनकी मदर ने, आपकी मदर ने उनको दिया है। सेम ही होता है अगर आप किसी को प्लांट गिफ्ट करते हैं और उनकी टेबल पे वो प्लांट पड़ा हुआ है, जब भी वो प्लांट को देखते हैं तो उनको याद आता है कि वो ये प्लांट मेरे को तनुषा जी ने गिफ्ट किया है, ये प्लांट मुझे दीपक जी ने गिफ्ट किया है, और वो मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे आपकी रिलेशनशिप भी ग्रो कर रही होती है इंसान के साथ। हमारे पास तो एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस भी कस्टमर का कि उन्होंने गिफ्टिंग करी थी एक जगह और वो किसी एक बड़े कार डीलर्स थे तो उनके साथ उनका मिलना नहीं होता, तो वो जीएम को गिफ्ट करके चले गए थे। बट जैसे ही वो प्लांट उनके बॉस के पास पहुंचा था तो उनके पास उनका नंबर नहीं था, तो उन्होंने हमारी वेबसाइट से हमारा नंबर लेके हमको कनेक्ट किया और हमसे पूछा कि ये प्लांट हमको किसने किया। तो हमें पता था कि ये गिफ्टिंग इन्होंने करी है, तो हमने उनको वापस कनेक्ट कराया उनका आपस में और फिर उनका कंटिन्यू बिजनेस ग्रो होता गया और आज उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू उनके साथ बना। और जब भी जाते हैं वो देखते हैं, हर बार उनको गिफ्ट करें प्लांट और वो खुद जो गिफ्ट कर रहे हैं हमारे फ्रेंड, वो ये भी देखते हैं कि उनकी टेबल पे वो लास्ट ईयर का प्लांट पड़ा हुआ है। अब आप बताइए कि वैसे आप किसी को कोई भी गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट के लिए आप बहुत कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। अगर मान लो अगर आपको किसी सीएम से मिलना हो या किसी ऐसे पर्सनैलिटी से मिलना हो जहां पे प्राइस का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता हो, तो वहां पे आप क्या गिफ्ट करेंगे? वहां पे आप ज्यादातर या तो बुके कर देते हैं या प्लांट ही गिफ्ट करते हैं। हम वही सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लांट के अंदर बहुत ही बेटर क्वालिटी का प्लांट दे रहे हैं, उसको पूरा सिस्टम के थ्रू, सपोर्ट सिस्टम के थ्रू दे रहे हैं ताकि आपको बुके देने की जरूरत ना पड़े।
0: राइट, बिल्कुल। और कोई ऐसा क्लाइंट एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप आज भी याद रखते हैं और याद करते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरा जो पर्पस है, मेरा जो बिजनेस का विजन और मिशन है, ये सही में सक्सेसफुल हो गया, ऐसा कुछ?
1: ऐसे कई क्लाइंट्स जो होते हैं, कई बार गिफ्टिंग मिली होती है, तो हमारे को एक एक्सपीरियंस ये भी मिला था कि एक बार एक कस्टमर ने हमसे एक प्लांट दिया था और उसने आगे गिफ्ट किया था, तो जिन्होंने जिसको गिफ्ट किया था उसमें से उन्होंने बहुत सारे प्लांट बना दिए और बाद में 19 में से प्लांट बना के वो उन्हीं को गिफ्ट कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं तुम्हारे प्लांट का दिया हुआ पार्टी है, उसी में से ही हमने इसकी सैपलिंग निकाल के इससे बहुत सारे प्लांट बना दिए। तो मैं कई बार वो उसी से ही गिफ्टिंग करते जा रहे हैं, तो जो अगर थोड़ा बहुत, और ये एक ऐसा अटैचमेंट हो जाता है प्लांट से, लोग फिर प्लांट से बातें भी करते हैं ना। आपको किसी ने दिया होगा, अगर किसी लव्ड वन ने दिया होगा, आपकी सिस्टर, जैसे आपने अपना मदर वाला एग्जांपल दिया, किसी फ्रेंड ने आपको प्लांट दिया, बाकी सारी चीजें आप थोड़े टाइम में भूल जाते हैं। इवन आपको किसी ने पेंटिंग दी है तो आप भूल जाते हैं, अगर कोई ऐसी चीज कोई पहनने के लिए भी दी है, जींस दी है, लेकिन ये या खाने के लिए कोई चॉकलेट दी है, वो कुछ मोमेंट दी है, बट इसमें ये होता है कि रिकॉल्स हो जाती है मेमोरी।
2: राइट, जब जब आप उसे देखते हैं तब तब आपको याद आता है, और तब तक शायद आपको एक जिम्मेदारी फील होती है कि मुझे इसे बड़ा रखना है, मुझे इसे बड़ा करना है, इसका ध्यान रखना है, इसे मुरझाने नहीं देना है। तो एक अपने आप एक सस्टेनेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर से निकलती है। तो मैं यही सोचती हूँ जब मैं वो मेरी सिस्टर का प्लांट देखती हूँ कि इसने, मम्मा ने तो दिया, उन्होंने तो उसको वो गिफ्ट किया, उनका इंटेंशन था, उनका प्यार था और एक अच्छा गिफ्ट उन्होंने दिया, बट सामने वाले ने भी कितनी केयर दिखाई, कितना उसका ध्यान रखा कि वो इतने से बैम्बू से इतना बड़ा हो गया। तो ये बहुत अच्छा एक बीज बो देता है, सिर्फ आपके घर में नहीं, आपके दिल में, आपके जीवन में, कि आपको एक पौधे को तो बड़ा करना ही है, इसका तो मुझे ध्यान रखना ही है अपने बच्चे की तरह। तो बहुत ही खूबसूरत गिफ्टिंग का आइडिया है सर ये। इन्हीं प्यारी बातों, इन्हीं गहरी बातों के बीच में हम सुनेंगे हमारा आज का पहला गीत आपकी फरमाइश पे। तो बताएं आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी का सॉन्ग सुनना चाहूंगा।
2: क्या बात है, तो चलिए सुनते हैं अगर तुम साथ हो, फिल्म तमाशा।

0: वेलकम बैक दीपक जी, क्या खूबसूरत गीत है ये। आगे चलते हैं। प्लांट केयर के जो इसेंशियल्स हैं, जैसे आपने बताया कि परिवर्ल उनको भी केटर करता है, तो इंडोर गार्डनिंग के लिए आप किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स को, उनको थोड़ा डिटेल में अगर साझा करें।
1: देखिए क्या होता है कि कोई भी जो प्लांट लगाने के लिए जो हिचकता है ना, तो सबसे बड़ा उसकी हिचक होती है उसकी मेंटेनेंस, कि मैं इसकी मेंटेनेंस कैसे करूंगा। और यह बिजनेस ज्यादातर लोगों के, बहुत अनऑर्गेनाइज लोगों के हाथ में है, तो कई बार उनसे आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि प्लांट में, अगर आप उनको बोलेंगे मैंने पानी कम दिया है तो बोलेंगे आपको पानी ज्यादा देना चाहिए था।
0: हाँ,
1: अगर आप उनको बोलोगे पानी ज्यादा दिया है तो बोलेगा पानी कम देना चाहिए था।
0: ये होता है।
1: तो इसलिए आप परेशान होके थकार के कई बार आप प्लांट्स लगाना ही बंद कर देते हैं। तो हमने उसके लिए सॉल्यूशन निकाल रखे हैं कि चाहे वो बिगिनर से हो या एक्सपर्ट लेवल का बंदा हो, तो हमने कुछ ऐसे एसेंशियल्स जैसे प्लांट केयर हमारे किट है, जिससे आप एक बार में अगर आप दे रहे हैं तो ना आपको माली की रिक्वायरमेंट है, ना उसको प्लांट की इतनी देख रेख करने की जरूरत है, वो बिल्कुल लो मेंटेनेंस हो जाते हैं और आप बिल्कुल इजीली स्प्रे से भी काम कर सकते हैं और वो 100% ऑर्गेनिक भी होते हैं। तो उससे क्या है, आपके प्लांट बहुत शाइनी होने लगते हैं। आप कभी हमारे पास आएंगे तो आप देखेंगे, इस गर्मी में लोग प्लांट्स के लिए परेशान होते रहते हैं, हम तो प्लांट्स बिल्कुल, आप हमारे पास कभी आएंगे हमारा जो प्लांट्स सेक्शन है, तो आप देखेंगे कि यहाँ तो बिल्कुल उनके प्लांट को कोई टेक केयर की करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारा पर्पज ये भी होता है कि जो लोग हिचकते हैं, उस हिचक के पीछे मेंटेनेंस वाले उसको इश्यू को खत्म करना, वो इतने लो मेंटेनेंस हो जाए कि आपने एक वीकली एक बार अगर स्प्रे भी कर दिया तो इनफ है, छोटा सा 5 मिनट के लिए, तो आपके प्लांट बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल ही फ्रेश दिखे हमेशा। और जब हेल्दी फ्रेश प्लांट दिखते हैं या कभी उसमें फूल आता है, तो आपकी वो खुशियां जो होती है ना, वो एक अलग लेवल पे होती है, उसका हैप्पीनेस का लेवल एक आपके एकदम से शूट अप हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साइंस ने प्रूव किया है कि जब हम पौधों के, पक्षियों के, जानवरों के अराउंड रहते हैं, नेचर के अराउंड रहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। सिर्फ हवा का बदलाव नहीं, ये चीजें हमें एक्चुअली खुशी देती हैं, जैसे फिश को देखना, अपने पेट्स को देखना, पौधों के साथ बैठना, और सच में कई लोग बातें करते हैं, मैंने खुद देखा है। इसी से मेरा अगला सवाल है कि परिवर्ल जो है वो सिर्फ प्लांट्स नहीं बेच रहा है, बल्कि लोगों को एक समझ बेच रहा है, एक सस्टेनेबल समझ। आज जब सब कुछ इंस्टेंट है, आज जैसे कि हमने बात की कि बुके देना, तो इंस्टेंटली इतना पैसा पे किया और उगे हुए इस खूबसूरत से कलरफुल फूल आपने किसी को दे दिए, तो गार्डनिंग हमें किस तरह से, किसी पौधे का ध्यान रखना हमें किस तरह से पेशेंस सिखाता है, सरेंडर सिखाता है, एक्सेप्टेंस और इसी तरह के और बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन सिखाता है।
1: देखिए क्या होता है कि जब आप किसी भी एक पॉइंट तो देखेंगे, अगर कोई प्लांट लवर है, आप देखेंगे कि वो प्लांट लेवल ज्यादा हम्बल मिलेगा आपको, थोड़ा काइंड ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पेशेंस डेवलप होता है। जब वो किसी आप प्लांट को छोटे से लेके बड़ा ग्रो करते हैं ना, तो आप एक तरफ से पूरी लाइफ शेल देखते हैं उसकी, आप देखते हैं उसके अंदर नई लीव्स आई है, नया फ्लावर आया है, वो आपको खुशियां भी दे रहा होता है। कभी वो प्लांट आपके यहाँ मुरझा जाता है, उसकी कोई लीव्स खराब हो जाती है, उसके अंदर जो फूल था वो चला जाता है, तो आपको एक जीवन का एक सर्कल समझ में आता है कि जो भी हो रहा है वो एक साइकिल में है, ये जाएगा आएगा, और इसी से आपका पेशेंस डेवलप होता है। आजकल हम जो चीजें, जैसे आपने कहा कि इंस्टेंट हमारे को हर चीज का आंसर चाहिए, तो वहां पे ये चीज देखने को मिलती है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग किसी की मेंटल लेवल पे बन जाती है, तो आप क्या होता है उसको प्रैक्टिकली देख रहे हो, उसके साथ ग्रो कर रहे हो, आप कंटिन्यू प्लांट ग्रो हो रहा है तो आप भी ग्रो हो रहे हो। अच्छा, जिसने आपको प्लांट गिफ्ट किया है, आपने किसी को प्लांट गिफ्ट किया, वो भी आपके साथ ग्रो कर रहा होता है। आपने किसी को प्लांट गिफ्ट किया तो आपकी विश रहती है कि एक तरह से आप उसको ग्रोथ विश कर रहे हो आपकी, कि आप ग्रो करो। तो आपके अंदर से थोड़े से एंगर है, इमोशन जो नेगेटिव इमोशन है वो कम होते हैं और पॉजिटिव इमोशन बढ़ जाते हैं, इसलिए तो लोग प्लांट से प्यार भी करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो वो आपको उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, अपनापन सा हो जाता है। तो इससे आपकी जो अपने जीवन की यात्रा है ना, काफी सारी चीजें आपको पता है, जैसे कि प्लांट के अंदर अगर मुरझा गया तो नई लीफ आएगी, तो आप ये धीरे धीरे ये भी समझना शुरू कर देते हो कि लाइफ में ये चैलेंज आया है, ये भी एक टाइम बाद चला जाएगा और एक अच्छा समय फिर से आएगा। ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। सच में ग्रोथ की बात है, माइंडसेट की बात है, किस तरह से आप भी उस इंसान के साथ ग्रो होते हैं जिसको आपने एक पौधा गिफ्ट किया है, और ऑब्वियसली पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में भी लाते हैं और सामने वाले की लाइफ में भी एक बीज बोते हैं पॉजिटिविटी का। इसी से मेरा अगला सवाल है कि जिस तरह के आज हमारा लाइफस्टाइल है, अर्बन लाइफस्टाइल है, हम कंक्रीट जंगल्स में रह रहे हैं लिटरली, तो आपके हिसाब से घर में एक ग्रीन कॉर्नर बनाना सिर्फ हवा नहीं बल्कि इंसान की सोच और इमोशंस को भी बदल सकता है, इस पे थोड़ा सा और अगर आपकी कोई रिसर्च है, अगर आपकी परिवर्ल्ड का कोई एक एक आइडिया है जो इस पे बात करता है कि इंसान कैसे इन प्लांट्स के साथ साथ चेंज हो सकता है, उसके इमोशंस बदल सकते हैं, और अगर कोई एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहें तो वो प्लीज साझा करें।
1: तनुषा जी, जैसे आपने कंक्रीट की बात करी है ना आपने, तो सबसे बड़ा अभी भी चैलेंज लोगों को ये समझने जैसे मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि आउटडोर में तो आपने बहुत सारे प्लांट लगा लिए होते हैं कई बार, बट आपके इंडोर में प्लांट्स नहीं है और आपका ज्यादातर समय इंडोर में बीतता है और आपके इंडोर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी जो जैसे आपने कोरोना भी बोला गया था कि आपको वेंटिलेशन रखना है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितने सारे जो भी वुडन में यूज हुआ है, केमिकल्स यूज हुए हैं हमने, वो चलते रहते हैं हमारे पार्टिकल्स, वो दिखते नहीं है ना, तो ये वही वाली बात होगी। जैसे ही आपने उनको प्लांट को एंटर किया तो वो आपके एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, एक सबसे बड़ी बात। जब आपको क्लीन होता है तो आपके मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे भी उसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कही कि आपने ग्रीन कॉर्नर बनाने चाहिए। ग्रीनरी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप थ्योरिकल तो साइंस ने बहुत कुछ प्रूव किया है ना, उसके लिए तो चीजें नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ इतनी आप प्रैक्टिकल चीज को देखिए कि जब लोग परेशान होते हैं तो कहाँ जाते हैं, वो रिसोर्ट घूमने चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। तो आपने कभी इसको सोचने की कोशिश करिए कि वहां जाके आप मेंटल पीस में क्यों चले जाते हो, क्योंकि हमारी जो ह्यूमंस की बॉडी है वो बहुत लंबे समय तक जंगलों में रही है, पहाड़ों में रही है, तो ये नेचर जो होता है ना उससे इतना हम कनेक्टेड हैं, ये हमारे बायोसिस्टम के अंदर इतना इन्वॉल्व है, जैसे ही हम उनके नजदीक जाते हैं तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। आप कभी भी देखिए, आप अगर आप स्ट्रेस फील करें आप गार्डन चले जाइए, आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस डाउन हो गया।
0: बिल्कुल
1: ना, इसको प्रैक्टिकली कभी कभी कभी कुछ चीजों को हम थ्योरी के ऊपर में समझने से ज्यादा प्रैक्टिकल देखेंगे ना तो हमें ज्यादा ही चीजें समझ में आ जाती है सिंपल वे में।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने कि ह्यूमंस इतने समय तक जंगलों में रहे हैं, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो वहीं से हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सोल है वो उसी को क्रेव करता है, और अब तो हमने बहुत अलग जीने का स्टाइल, एक एक जीवन हमने डेवलप कर लिया है अपने आसपास, जिस तरह से हम कटे हुए नहीं थे, जिस तरह से हम बने हुए नहीं थे। तो खैर, इन्हीं अमेजिंग बातों के बीच, गहरी बातों के बीच, गहरी सोच के बीच हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, आप ही की फरमाइश पे सर।
1: अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी अग्नि।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत गीत है ये, बहुत ही सुंदर। अगर थोड़ा सा आप हमारे लिए गुनगुना दें, अगर आप गाते हैं तो इतना बहुत मजा आएगा जी।
1: मेरे गाने की कभी कुछ है नहीं, क्योंकि मेरी लिरिक्स कभी मुझे याद नहीं रहते हैं।
0: अच्छा, कोई नहीं,
1: गाने में हम इतना कभी डूब जाते हैं जो लिरिक्स को याद रखने का रहता
0: नहीं। कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ, जब तक आप अपने फोन में फटाफट से लिरिक्स ढूंढ लीजिए, गाना ढूंढ लीजिए, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीपक जी हमारे श्रोताओं के लिए कुछ गुनगुना दीजिए, तब आप गाइएगा।
1: ओके
0: जी, अभी सुनते हैं, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, इसी उम्मीद के साथ ये गाना सुनेंगे हम फिल्म अग्निपथ।

0: बेहतरीन गीत और बेहतरीन कुछ बातें आपसे हो रही हैं दीपक सर। आगे चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप खुद नेचर से बहुत करीब हैं, तो क्या किसी पौधे को जब आप उगता हुआ देखते हैं, मुरझाता हुआ देखते हैं और दोबारा जीवित होता हुआ देखते हैं, तो जिंदगी का भी कोई सबक आपको मिलता है जो कभी किसी किताब में नहीं मिल सकता? कोई ऐसा सबक जो बिल्कुल आपके लिए अनोखा हो, अनूठा हो, जिसने आपके दिल को बहुत छुआ हो, वो अगर साझा करना चाहें?
1: धनुषा जी, इसको अगर कभी आप कहेंगे तो मेरे लिए ये अनुभव रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे जिंदगी के बारे में हमारे लाइफ में कुछ चीजें ऐसे चल रही होती है, वो मैंने ये पाया कभी भी अचानक नहीं होती है, वो कहीं डीप आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो दबी हुई होती है, फिर वो सरफेस पे आती है और फिर वो कोई बड़ा इशू भी बनती है और कभी बड़ी हैप्पीनेस भी बनती है। सेम अगर आप पौधों को देखिए कि पौधे जो डेवलप होते हैं वो सीड से हो रहे होते हैं। जब एक सीड अंदर काम कर रहा होता है ना जमीन के अंदर, तब हमें नहीं पता चलता है कि वो सीड उगेगा नहीं उगेगा, कितना बड़ा होगा, लेकिन उसको कंटिन्यू अगर चीजें मिलती रहती है तो वो फिर धीरे धीरे आपको एक छोटी सी पौध के रूप में एक सरफेस पे आता है और उससे कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। सेम आपके विचारों के साथ भी होता है कि आपके पास कोई विचार आया होता है, वो कभी भी हमें लगता है कि सडन आया है, सडन नहीं आया होता है वो कभी भी, हम बहुत एक्चुअली हम उसको भी बहुत गहराई से देख नहीं पाते हैं, तो किसी न किसी चीज से वो ट्रेवल कर रहा होता है वो थॉट, और उस थॉट से फिर थॉट डेवलप होते हैं तो वो अपने आप को ग्रे होता है। तो ये कॉमन मैंने पैटर्न जो मेरे इस काम के दौरान मैंने देखा है, इस बिजनेस को करते हुए देखा है कि कैसे, और दूसरा होप तो देता है ये कि जब आप देखते हो कि कोई प्लांट, कभी आप देखना कभी कोई एक प्लांट हो और आपने एक चैलेंज टास्क लिया हो कि ये मेरा प्लांट डाय होने वाला है और आपने उस पर मेहनत करी हो और उसको वापस से जिंदा किया हो, कभी अगर ऐसा प्लांट मौका मिलेगा आपको, तब आपके अंदर एक ऐसी उमंग आएगी कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं गिरने के बाद वापस से उठ के खड़ा नहीं हो सकता हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात आपने कह दी। मुझे कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करके लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी हैं, तो क्या कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसने आपको इस बिजनेस में और ग्रो करने की हेल्प की? कोई आपकी ऐसी पर्सनल प्रैक्टिस जो आप सोचते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को करनी चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें अलाइन होती हैं, सेंटर होती हैं, आपकी सोच डेवलप होती है, जैसे कि आपके थॉट्स हैं, आपके थॉट्स में बहुत गहराई है, एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बातें हैं, तो क्या आप कोई प्रैक्टिस है जो अपनाते हैं, अगर वो साझा करना चाहें?
1: देखिए एक्चुअली क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी के बात में अगर आप मानेंगे तो थोड़ा मेरा इस पे थॉट माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है आज की डेट में, वो बहुत ही कमर्शियल हो गई है। आप देखेंगे कि जितना भी हम डाउनफॉल देख रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस के अंदर, वो सब उसका सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि वो कमर्शियल हो गया है। तो आप किसी भी जगह में चाहिए ना, तो आजकल बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं नहीं, है ना। पर्सनली आप जैसे पूछते हैं तो मैं बताऊं, आई एम ऑल्सो विपश्यना मेडिटेटर, तो वहां हम यही चीज सीखते हैं कि हम माइंड और मैटर की कैसे चीजें हमारे माइंड और मैटर की इंटरेक्ट होती है और कैसे हमारे जो अटैचमेंट है वो हमारे कितने गहरे होते हैं। और जब आप बहुत चुप रह के अपनी चीजों को देखते हो अच्छे तरीके से, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। जैसे आज के दिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं किसी भी गलती के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराता,

0: में भी दूसरों को ही दोषी ठहराता था कि ये प्रॉब्लम है किसी और की वजह से हुई है, इवन है ना किसी ने गाड़ी भी आके ठोक दी मेरी है, तो किसी और की वजह से ठुक गई। बट अब मैं उस चीज को बंद कर दिया है और जहां तक कोशिश ये रहती है, देखने की कोशिश करता हूं मैं कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी क्या गलती थी। तो हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं इस सब्जेक्ट से।
1: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सच में स्पिरिचुअलिटी का मतलब अल्टीमेटली यही है कि आप भीतर जाएं, खुद को समझें और खुद में जो कमियां हैं उनको ठीक करें, क्योंकि अपने आप बाकी चीजें अलाइन हो जाएंगी अगर सेंटर अलाइंड है, इनर सेल्फ अलाइंड है। और एक पॉइंट के बाद आप ब्लेम गेम करना बंद कर देते हैं कि इसकी वजह से उसकी वजह से। सब कुछ अंदर से ही रूट हो रहा है, अंदर से ही शुरू है और अंदर पे ही खत्म है। तो आप दुनिया को नहीं बदल सकते, बट खुद को जरूर बदल सकते हैं। तो अपने माइंड एंड मैटर को सेंटर करने की कोशिश करें, जिस तरह से दीपक सर ने बताया। इन्हीं स्पिरिचुअल बातों के बीच मैं चाहूंगी कि हम एक और गाना सुने आपकी फरमाइश पे।
0: अब आपने ऐसी बातें करी तो मेरे मन में पहले तो कोई और सॉन्ग था, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप कुन फाया कुन,
1: क्या बात है, क्या बात है। आप भी इम्तियाज अली के बड़े अच्छे फैन लगते हैं मुझे।
0: हाँ, इम्तियाज अली की बातों में अगर आप देखेंगे तो बहुत कभी कभी कुछ ऐसी
1: रूहानियत है। जी बिल्कुल, रूहानियत है उनकी फिल्मों में, रूहानियत है उनके डायरेक्शन में, रूहानियत है उनके गानों में, रूहानियत है। बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर हैं। और हाल ही में उनकी फिल्म आई है मैं वापस आऊंगा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, मैं चाहूंगी सभी लोग देखें। और अगर आपने भी नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जरूर देखें। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, कुन फाया कुन, फिल्म रॉकस्टार।

0: बहुत ही रूहानी गीत, एक बहुत ही सुंदर फिल्म से। थैंक यू सो मच दीपक जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी बातों के साथ साथ इतने प्यारे गीत हमारे लिए, फरमाइश करने के लिए। तो आगे चलते हैं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जो मुझे लगता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन है आज की इस पूरी कॉन्वर्जेशन का। मान लीजिए अगर भगवान आपसे कहें कि आप पूरी दुनिया में बस एक बीज बो सकते हैं, सिर्फ एक, तो वो क्या एक पौधे का बीज होगा या किसी एक इंसानियत की वैल्यू का, और क्यों?
1: धनुषे जी, आपने जैसे बोला कि एक बीज बो सकते हैं, तो वो मेरे को लगता है कि वो बीज सिर्फ अपने अंदर ही बोना चाहिए, और वो बीज होना चाहिए साइलेंस। आज के इतने समय में जो भी चीजें अगर आप देखेंगे, हम इतना इवॉल्व हो चुके हैं एज ए ह्यूमन लाइफ में कि अब हमारे पास फिजिकली इतने काम नहीं है, लेकिन हमारा जो मेंटल लेवल है ना, वो किस लेवल का चल रहा है हम देख रहे हैं, हमारे लोगों में कितना डिस्टर्बेंस है। अभी कई सारी स्टडीज आ रही है कि जेन जी के साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कि वो उनकी फोकस नहीं कर पा रहे हैं लंबे समय तक।
0: तो आप हमने हो रहे हैं जी,
1: यस, तो वो हमने देखा है कि हमने हमारे माइंड को बिल्कुल भी पीस और बोरिंग होने का तो समय नहीं दे रहे हैं। तो आप अगर आप किसी से बात करेंगे, अगर उसको बोलेंगे कि आपको आधा घंटा है ना बिना कुछ बोले बिना कुछ करे बैठना है, तो बड़ा ही मुश्किल है कि आज की डेट में आधा घंटा बिना बोले बिना करे, वो आधा घंटा अगर आप उससे मोबाइल ही ले ले में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इवन आप कभी बच्चे से देखेंगे, अगर आप उससे आधे घंटे के लिए फोन ले लेंगे ना, तो वो आप साइलेंस ओवर देंगे अगर पेरेंट्स हैं तो, क्योंकि वो आप बच्चा है, लेकिन आप उसके बिहेवियर में देख पाएंगे उसका कितना अंदर है। तो साइलेंस होना लोग भूल गए हैं, साइलेंस अपने अंदर जब वो लाएंगे तो वो अपने आप के साथ कनेक्ट होंगे।

0: आपका दीपक सर।
1: थैंक यू तनीषा जी।
0: तो दोस्तों, दीपक जी से आज की बातचीत में हमने ये महसूस करा कि पौधे सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे जीवन के भी अध्यापक होते हैं। वो बिना कुछ मांगे बहुत कुछ देना सिखाते हैं और हर मौसम में जीना सिखाते हैं। परी वर्ल्ड के माध्यम से आप सिर्फ ग्रीनरी नहीं बल्कि एक ग्रीन माइंडसेट भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत सी सोच के साथ हम आगे चलते हैं और आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। दीपक जी का दिल से अभिनंदन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ ये प्यारी बातचीत में शामिल हुए। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार।

हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं, और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायनी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी, और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो

तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इस खोने लगे तो पूजा पाठ कर लेना। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हों, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे बेटे। वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए, बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों, ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों, कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं, उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है, जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और, किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति, कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है, कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत हजारों रुपए जानकर तो वो हैरानी रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी
ये किसी राम बाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया, जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह हैं वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती, बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों से मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा, और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी

जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान है वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूँ। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है, कोई 3 साल का, 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी ये है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हाँ दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?

0: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, मतलब उनके बारे में कितने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो वो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने अपने लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
1: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
0: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, तो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी, मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने देर तक तेरे लिए बचता रहेगा। कोई घा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास। What?

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है।
2: सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरे।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंता ने कहा। अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: उन्नीस सौ अस्सी के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था। छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो, अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: शाम की सुर्ख शफक हूँ मैं, शाम की सुर्ख शफक हूँ मैं, तुम सुबह की लाली हो। तुम्हें तो फलक चढ़ना है अभी, तुम्हें तो फलक चढ़ना है अभी, मैं कुछ देर में ओझल हो जाऊंगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय, और फिर एक बार दहलीज पर दस्तक दे चुकी हूं उस सिलसिले के साथ जो सीधे आपकी रूह को छू लेता है, यानी आपका पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जज्बातों को बयां करने के लिए कभी कभी रिवायती रास्ते नाकाफी लगते हैं, इसलिए आज की ये महफिल अपने दामन में कुछ अलहदा रंग समेटे हुए है। आज हम किसी दायरे में महदूद नहीं रहेंगे। इस बार हमारे इस सफर में आपको बिल्कुल मुनफरिद योनर के कलाम सुनने को मिलेंगे। आज की फहरिस्त में जहां एक तरफ कोक स्टूडियो की वो रूहानी और नए ज़माने की सूफियाना मौसीकी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे जज्बाती नगमे हैं जो हाल फिलहाल के सालों में हमारे दिलों की धड़कन बने हैं। यानी आज का कारवां रिवायती शायरी और आज के नए दौर के फ्यूजन का एक बेहद हसीन मिलाप है। तो और वक्त ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं जज्बातों के इस नए सफर का। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि आज की महफिल में हम कुछ बिल्कुल अलग जॉनर की सैर करेंगे। अब देखिए ना, ये इस तरह की भी सैर होती है, अलग जॉनर की सैर, और फरमाइएगा। तो हमारी आज की पेशकश हमें सीधे ले चलती है कोक स्टूडियो सीज़न 8 के उस रूहानी मंच पर जहाँ पुराने ज़माने की एक बेहद मकबूल धुन को नए अंदाज और मखमली वेस्टर्न साजों के साथ पेश किया गया है। इस लाजवाब फ्यूजन को अपनी शानदार और पुरकशिश आवाज़ों से सजाया है अली जफ़र और सारा हैदर की जोड़ी ने। दोस्तों, ये नगमा दिल की उस कश्मकश को बयां करता है जहां इंसान लाख कोशिशों के बाद भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता। इस ट्रैक में जो वेस्टर्न जैज म्यूजिक का तड़का है वो आज की युवा पीढ़ी को भी बेहद पसंद आता है। इसके नहायत ही खूबसूरत मिसरे कुछ इस तरह हैं। ऐ दिल, किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, रहता है रात दिन तुझे

रहता है रात दिन तुझे किसी का इंतजार क्यों। तो आइए सीधे रुख करते हैं कोक स्टूडियो के इस सहर अंगेज यानी जादुई फ्यूजन की तरफ। सुनिए और खो जाइए अली जफर और सारा हैदर की इस सुरीली जुगलबंदी में। आपकी नजर।

कोक स्टूडियो के उस कमाल के वेस्टर्न और सूफियाना फ्यूजन के बाद अल्फाज से एहसास तक के इस दूसरे मरहले पर आइए। रूह को एक ऐसे सूफियाना एहसास से जोड़ते हैं जहां दुनिया की चकाचौंध एकदम फीकी पड़ जाती है। हमारी ये पेशकश उस्ताद ए आर रहमान साहब के उस अलहदा और जादुई संगीत से सजी है जिसे उन्होंने फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए तैयार किया था। इस बेहद गहरे और रुमानी कलाम को जब शायर इरशाद कामिल साहब के अल्फाज मिले और उसे यश यासिका सिक्का ने अपनी मखमली और साफ आवाज में साफ आवाज से नवाजा तो ये सीधे दिल पर असर करता है। इस कलाम में दिल की उस बेबसी को दिखाया गया है जहां इस चंचल मन को इस मतलबी दुनिया का कोई भी रंग रास नहीं आता, कोई भी खुशी मुकम्मल नहीं लगती। मन हर वक्त अपने वजूद की तलाश में रहता है। इसके बोल कुछ इस तरह से हैं, मन चंद्रे नू रास ना आवे, मन चंद्रे नू रास ना आवे, कोई रंग दुनिया दा। तो आइए सीधे रुख करते हैं रहमान साहब की लाजवाब मौसीकी और यसिका सिक्का की इस मुनफरिद आवाज की तरफ। मन चंद्रे नू रास ना आवे, कोई रंग दुनिया दा। मुलायजा फरमाएं।

दोस्तों, हमारी आज की अगली पेशकश सुफियाना गायकी के बेताज बादशाह हंस राज हंस साहब की आवाज में सजा एक ऐसा शाहकार है जो पिछले कई सालों से हर टूटे हुए दिल की आवाज बना हुआ है। इसे मशहूर सूफी शायर बाबू मान सिंह ने बड़ी शिद्दत के साथ लिखा है। कलाम के बोल हैं, मेंढा तो है रब खो गया। मेंढा का मतलब यहाँ पे है मेरा तो है रब खो गया। मेंढा तो है रब खो गया, कोई ढूंढ के लावे ना। दुनिया तो हंस हंस के वेखे, दुनिया तो हंस हंस के वेखे, कोई नैन मिलावे ना। हंसराज हंस साहब की आवाज में जो तड़प है वो इस बात को सीधे दिल तक पहुंचा देती है। तो चलिए इस लाजवाब अल्फाजों और इस बुलंद सुफियाना गायकी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप गजल मुलाहिजा फरमाएं।

दोस्तों आइए अब रुख करते हैं ऐसे दौर की तरफ जहां मोहब्बत के इजहार में एक गजब की पाकीज़गी और ठहराव हुआ करता था। हमारी अगली पेशकश हमें सीधे लेकर चलती है साल 1997 की म्यूजिकल फिल्म सुर की हसीन वादियों में। इस बेहद जज्बाती नगमे को शायर निदा फाजली साहब ने अपने अनमोल लफ्जों से नवाजा है और इसकी सुरीली धुन M.M. किरवानी साहब ने तैयार की है। किरवानी जब इस कमाल की बंदिश को गुलुकारा महालक्ष्मी अय्यर अपनी मासूम सी आवाज में गाती है तो वक्त शायरी में तो वक्त मानो ठहर सा जाता है। दोस्तों इस शायरी में महबूब को बड़ी सादगी और शिद्दत के साथ पुकारा गया है। यहाँ शाम के ढलने के बाद और चांद के खिलने जैसे खूबसूरत लम्हों को सिर्फ और सिर्फ उसकी यादों से जोड़ा गया है। महालक्ष्मी जी की आवाज़ का जो सूफियाना अंदाज है वो इस नगमे को और भी खास बनाता है। इसका मिसरा कुछ यूं है। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जा

दोस्तों, महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में उस दिलकश कल शाम के रंग के बाद अल्फाज से एहसास तक के इस मरहले पर आइए रुख करते हैं एक ऐसे नायाब शाहकार की तरफ जिसने साल 2000 में आते ही हर दिल पर हुकूमत करना शुरू कर दिया था। हमारी ये पेशकश एक बेहद मशहूर नॉन फिल्म एल्बम से है जिसे अजीम शायर बशीर बद्र साहब ने अपने अनमोल लफ्ज़ों से नवाजा है और इसकी सुरीली धुन संदेश शंडीले साहब ने तैयार की है। जब इस कमाल की शास्त्रीय बंदिश को अपनी पुरसकून आवाज़ से KS चित्रा ने सजाया तो ये सीधे दिल तक उतर जाती है। सारंगी की मध्यम तान और KS चित्रा जी की आवाज़ का जो संगम है वो इस नगमे को अमर बना देता है। ये हमारे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है। इसके मिसरे कुछ यूं हैं।

दोस्तों, घड़ी की सुइयां एक बार फिर से गवाह हैं कि हमारा आज का ये वाबस्ता वक्त अब खत्म होने को है। सुरों का जो कारवां आज हमने मिलकर शुरू किया था, उसे अब यहीं एक खूबसूरत मोड़ देने की घड़ी आ गई है। हर मुलाकात का अपना एक वक्त तय होता है, मगर उन मुलाकातों से जो यादें बनती हैं, वो वक्त के दायरे से बहुत आगे निकल जाती हैं। आज की इस महफिल के आखिरी लम्हों में मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक नहायत ही खूबसूरत शेर याद आ रहा है, जो आज की गुफ्तगू पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। 90.8 FM पर SN रेडियोज और रेडियो तांतिया भील पर आपके साथ का ये सलीका और ये मोहब्बत ही है जो हर रोज इस महफिल को इतना खास बना देती है। आज के इन तमाम अफसानों और जज्बातों को आपके ख्यालों के हवाले करके अब मैं रुखसत होती हूँ। आप अगली मुलाकात तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ज़िंदगी के हर एक सुर को जी भर कर महसूस कीजिए। अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय को दीजिए अब इजाज़त। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: ભાવના આપણા ભાઈઓનું ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છીએ

0: પઢંગલા ભાઈઓનું ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છીએ આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટેન્ટેબલ 90.8 એફએમ ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है. जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं. गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. आप भी लगवा लीजिए. 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार. 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
2: हर घर सूर्य घर.
3: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम. किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम छावा की आवाज. स्वागत करते हैं.

0: है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया 90.8 FM छावा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगी हुई है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह अपने किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाए, कृषि की नई तकनीकों को पहुंचाए, जिससे हमारे किसान की जो आजीविका है वो सशक्त बन सके और कृषि के नए से नए उपकरणों का उपयोग कैसे करना है आदि जानकारियों से हमारा किसान जो है वह अवगत हो सके। इसी के साथ किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और आज हम जानेंगे कि मोटे मोटे धान की खेती से जुड़े हुए, उसका उपयोग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हम जानेंगे, सीखेंगे और अपने खेतों में इसका प्रयोग करके हम जानेंगे।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: पहले मैं आपसे मोटे अनाजों के बारे में जानना चाहूंगी। अक्सर हम इस समय सुन रहे हैं और काफी जोर दिया जा रहा है मोटे अनाजों को लेकर, तो क्या अहमियत है इनकी, हमारे आहार का हिस्सा ये बने, ये क्यों जरूरी है?
3: देखिए, अगर हम बात करें आज से मतलब 30 साल पहले की
2: जी,
3: तो हमारे देश में जो खेती होती थी मोटे अनाज की खेती होती थी। मोटे अनाज बताना चाहूंगी क्या क्या हमारे हैं। मक्का है आपका, जौ है, रागी, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, और भी छोटे अनाज है जो इनकी
2: श्रेणी
3: में आते हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो इन्हीं की खेती हमारे यहाँ पे होती थी। पर 60 के दशक के बाद क्या हुआ कि हम जैसे चावल और गेहूं की खेती करने लगे और इनको हम भूल गए एक तरीके से
2: जी।
3: तो अब इसका दोबारा से चलन, क्योंकि विश्व इसकी वैश्विक मांग इतनी ज्यादा हो रही है कि मोटे अनाज का हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये पोषणता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है
2: जी।
3: तो इसीलिए अब इन पे इतना ध्यान दिया जा रहा है कि मोटे अनाजों को भी अपने हम भोजन में शामिल करें, गेहूं चावल के साथ साथ। हमें ये नहीं कि एक ले लिया तो दूसरे को हटा दिया, हमें इन सबको सम्मिलित करके चलना है। तो हम एक अपना कहते हैं ना, जो बात करते हैं कि अगर हमें, क्योंकि विविधीकरण ही एक तरीके का ये है, और विविधीकरण से ही आपकी जो दुगनी आय की जो हमारा सपना है वो भी पूरा हो सकता है। तो इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है मोटे अनाज का हमारे भोजन में और हमारी खेती में इस्तेमाल होना।
2: बिल्कुल, तो काफी महत्ता है मोटे अनाजों की और इसके प्रसंस्करण से किसान किस तरह से दोहरा लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
4: पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं, बल्कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने में भी मददगार साबित होते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। सरकार मोटे अनाजों की खेती और इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांवा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ्र मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खानपान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। इस तरह मोटे अनाज का प्रसंस्करण करके आप कई तरह के उत्पाद बनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं।
2: जी, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज हम लाभकारी कीटों की बात करने जा रहे हैं, तो ये कौन से लाभकारी कीट हैं, इनके बारे में बताएं, क्योंकि कीट का जिक्र आते ही किसानों को एक दहशत सी हो जाती है, क्योंकि फसलों को काफी नुकसान होता है कीटों से, लेकिन कुछ कीट लाभकारी भी होते हैं, तो वो कौन से कीट होते हैं बताएं।
5: जी बिल्कुल, हमेशा ये सोचते हैं कि किसान कि अगर खेती बाड़ी करनी है तो हमेशा एक हानिकारक कीटों की बात करते हैं
2: जी।
5: लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर हम हमेशा खेती बाड़ी में कीड़ों की समस्या की बात करते हैं, तो कीड़ा इकोसिस्टम है, एक पर्यावरण है, जैसे हर जगह पे हर तरह के प्राणी होते हैं, हर पेड़ पर कई तरह के जीव रहते हैं, उसी तरह से हर इकोसिस्टम में, हर खेत में हर तरह के कीड़े रहते हैं। उनमें कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि परभक्षी कीट होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि परागण क्रिया में बहुत मददगार होते हैं। अगर हम उन सभी कीटों को हटा देंगे तो क्या होगा कि जिनको हम हानिकारक कीट समझ रहे हैं वो मर जाएंगे, तो उनकी अनुपस्थिति में जो हमारे उपयोगी कीट है वो भी मर जाएंगे और हमारी जो आमदनी है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार जहर वाले जो पेस्टिसाइड है वो डालते जा रहे हैं, जहर बढ़ा रहे हैं, यानी आमदनी की दुगना करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत महंगे आते हैं, और दूसरा हमारा जो पर्यावरण है वो भी दूषित होता जाएगा, और जो भी प्रोड्यूस हम पैदा कर रहे हैं वो भी हमें खाने में जहरीला होगा, यानी कि हम मानव शरीर के स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही बरत रहे हैं। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कि हमें आमदनी दुगनी करनी है, दुगनी कैसे करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे लाभकारी कीट हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे कि खेती करनी चाहिए मंडुए की और जितने भी हमारे फॉर्मुलेट्स है ना
2: जी।
5: अभी हम खेती के साथ में मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमारे साथ एक साथ दो इनकम के जरिए होंगे, और दूसरा अगर हम रेशम कीट पालन करते हैं तो हम रेशम उद्योग आगे बढ़ा सकते हैं
2: जी।
5: परागण कीटों की हम जो बात करें, अगर फूलों वाली कोई भी फसल है, चाहे वो सरसों है यानी कि तिलहन है, दालें हैं, फल हैं, सब्जी है, अगर परागणकर्ता कीट वहां भ्रमण नहीं करेंगे तो फूलों में क्रिया नहीं होगी और परागण क्रिया नहीं होगी,
2: बल्कि
5: अनुपस्थिति में कोई भी फल पैदा नहीं होगा, तो समझिए डायरेक्ट लॉस हो गया
2: जी। बिल्कुल डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कीट है वो हानिकारक ही नहीं होते हैं, बल्कि कई कीट लाभकारी भी होते हैं, ये उत्पादकता के लिए भी अहम है और इसके साथ ही किसानों की आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं, तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
4: कीटों का नाम सुनकर अक्सर हमारे दिमाग में फसलों के नुकसान की बात ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी कीट फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते, कुछ कीट फसलों के दोस्त भी होते हैं, जिन्हें मित्र कीट कहा जा सकता है, और खेती में इनका अपना एक अलग महत्व होता है। बता दें कि विश्व की लगभग 90% जंगली फूलों वाली पौधों की प्रजातियां परागण के लिए कीट पतंगों और जानवरों पर निर्भर करती हैं। विश्व की करीब 75% से ज्यादा खाद्य फसलों और वैश्विक कृषि भूमि का 35% परागण इनसे जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये कीट पतंगे जैव विविधता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खियों का परागण फसल उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। मधुमक्खियाँ काफी फसलों में पराग कण के रूप में काम करती हैं, जिससे बीज उत्पादन में वृद्धि होती है। बीज बड़े हो जाते हैं, बीजों के कारण बीजों की सुगंध, फलों में सुगंध और पोषक तत्व, विभिन्न फसल के पौधों में वृद्धि, हरे चारे का उत्पादन, फूलों में नॉक्टर्स और तेल बीज फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। करीब 80% फसलें क्रॉस परागण पर निर्भर हैं, जिनमें अन्य कीटों के साथ साथ मधुमक्खियों का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। बता दें कि चेरी, बादाम, अंगूर, लीची, मूली, खीरा, प्याज, सरसों और कपास फसलों का उत्पादन केवल मधुमक्खी परागण के कारण 50% से ज्यादा बढ़ जाता है। मधुमक्खियों के अलावा पतंगे भी फूलों के बीच पराग को ढोने का काम करते हैं। अन्य कीट परागणकों में ओवलेट मॉथ, अंडरविंग मॉथ और जियोमीटर मॉथ शामिल है।
2: या तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए एक बार फिर से डॉक्टर श्रीवास्तव का रुख करते हैं और इन मित्र कीटों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, हमें मित्र कीटों के बारे में और भी जानकारी दें कि कौन कौन से होते हैं ये मित्र कीट और किस तरह से इनके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है।
5: देखिए मित्र कीटों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जरूरी ये बात है कि हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करें
2: जी।
5: हम हमेशा खेती बाड़ी की उपज को बढ़ाने की बात करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर बहुत सारे पेस्टिसाइड हानिकारक कीटों के लिए करते हैं, पर उन हानिकारक कीटों के साथ साथ हमारे जितने भी परवक्ष कीट वो भी बढ़ जाते हैं। अगर परवक्ष कीट खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें जहर डालना ही पड़ेगा। तो हमें जब भी हम किसी भी फूलों वाली कोई भी फसल या सब्जी उगा रहे हैं और वो फूलों की अवस्था में है तो कोई भी कीटनाशक को नहीं डालना चाहिए
2: जी।
5: दूसरा, बॉर्डर लाइन जितनी भी होती है वहां पर जो घास होती है वो मित्र कीटों को बढ़ावा देती है। तो अगर हम कहें संरक्षण हमें करना चाहिए तो हमें उन कीटों का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं
2: जी।
5: साथ ही में बहुत से लोग मधुमक्खी पालते हैं, तो अगर वो अगर मान लीजिए आपकी सरसों लगी, जैसे अभी आने वाले समय में सरसों का सीजन आने वाला है, जो अर्जी वैरायटीज है उत्तरा वो अभी शुरू हो जाएंगी, अक्टूबर में आना शुरू हो जाएंगी, तो जहां भी ये खेती बाड़ी है मधुमक्खी के बक्से रखे हैं तो किसानों को उसको बढ़ावा देना चाहिए
2: जी,
5: ताकि उनकी पैदावार बढ़े। आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम परागणकर्ता कीटों को अपने खेतों में आने देंगे या हमारे खेत के 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी परागणकर्ता कीट है तो उससे उपज 2 से 4 गुना बढ़ सकती है।
2: बिल्कुल, तो ये महत्व है परागणकर्ता कीटों की। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे आपसे आगे डॉक्टर श्रीवास्तव।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों आइए जानते हैं, अगर कोई किसान है वो थोड़ा सा सक्षम नहीं है, अगर वो मुर्गी पालन या कुकुड़ पालन हो गया, उसके अलावा बकरी पालन भैंस पालन कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर इसमें क्या सरकार द्वारा कुछ अनुदान मिलेगा या अन्य किसी भी चीज में अनुदान कैसे ले सकते हैं और क्या इसकी क्या प्रोसेस होती है, आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: बहुत, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पूंजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है
3: जी।
2: तो इसमें हाँ सरकार की तरफ से अनुदान की है, आपका जैसे हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ही बनाया हुआ है, उनकी तरफ से अनुदान आपको मिल सकता है। पर आपका अनुदान का आपका राशि देखने की, अगर आपका आप एक छोटी इकाई लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुदान की अलग सुविधा है, जैसे खादी ग्राम उद्योग है वहां से आपको छोटी इकाई के लिए मिल सकता है, बड़े उद्योग के लिए जाते हैं तो हमें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के उद्योग से ये जो है मदद मिल सकती है। और यही नहीं, आपके नजदीकी जो भी बैंक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पे भी आपकी कई योजनाएं हैं बैंक की, आपको 50,000 रुपए से लेके 10 लाख तक का वो लोग ऋण देते हैं और कम मतलब ब्याज दरों पे, खासकर किसानों के लिए, हमारी किसान महिलाओं के लिए, ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सके। तो आप किसी भी योजना से इस ये जो आपका जो आपने ऋण लेना है, आप इकाई शुरू करनी है, तो आप लाभ उठा सकते हैं।
3: बिल्कुल, और इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया क्या है डॉक्टर रितु?
2: ये सबका थोड़ा सा अलग अलग है, जैसे मंत्रालय की बात करें तो आपको वहां पे जो भी आप काम एक शुरू कर रहे हैं उस पे आपने काम शुरू करना, एक तो वो भी मंत्रालय ने किया है कि एक जिला एक उत्पाद
3: जी, बिल्कुल।
2: तो उस योजना के तहत भी आप कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब पंजीकृत करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे, और फिर वहां पे आप उनको एक प्रोजेक्ट बना के देना होगा और फिर आपको जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको अनुदान मिल जाएगा। ऐसे ही बैंक में, अगर आपके पास में बैंक है तो आप बैंक में भी जाके भी अपना आपको कार्य रूप तो देना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या क्या उसमें मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और मशीनों से आप क्या क्या फायदा ले सकते हैं, तो ये आपको उनके कार्य रूप एक देना पड़ेगा ताकि वो उसके हिसाब से आपको ऋण दे सके।
3: बिल्कुल, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर ऋतु, आपने बताया जैसे मोटे अनाज जो है वो बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, पौष्टिक होते हैं, ऐसे में जबकि हम इस देश में कुपोषण की समस्या से भी जूझ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुपोषण से जंग में ये एक अहम हथियार का की जो भूमिका है वो निभा सकता है?
2: बिल्कुल निभा सकते हैं। कभी अगर पिछले साल 2021 के अगर आंकड़ों की बात करें कुपोषण की, तो लगभग हमारे देश में 33 लाख बच्चे जो है कुपोषण से ग्रसित है और इसका जैसे जस्ट हाफ आधे बच्चे मतलब गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रसित हैं
3: जी।
2: तो एक ये बहुत बड़ी ढाल का काम आपका कर रहा है मोटे अनाज, क्योंकि इनमें ऐसे कई पौष्टिक तत्व हैं जो कि हमारे और अनाज में नहीं मिलते
3: जी।
2: जैसे अगर हम बात करें खनिज की, तो खनिज आपके कैल्शियम की जो कि हड्डियों के लिए बच्चों के बढ़वारे में बहुत आवश्यक होता है, गर्भवती महिला को आवश्यक होता है क्योंकि उसको अपने लिए और अपने बच्चे के लिए देना होता है, अगर वो उसको नहीं मिलता है भोजन से तो वो उसको खुद कमजोर होगी, आगे जो उसका आने वाला बच्चा होगा वो कमजोर होगा। तो ऐसे हमारे मोटे अनाज जैसे आपका रागी है, रागी कैल्शियम से भरपूर है, मतलब 100 ग्राम रागी में आपका 344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है
3: जी।
2: तो अगर इसका इस्तेमाल हमारे भोजन में, महिलाओं के भोजन में, बच्चों के भोजन में कर दिया जाए तो ये समस्या हमारी कम हो जाएगी। ऐसे ही हमारा एक खनिज है आयरन यानी कि लौह तत्व, जिसकी और लौह तत्व से अनीमिया होता है और ये हमारी आज भी अगर हम बात करें 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं 70% महिलाएं अनीमिया से ग्रसित हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमारे मोटे अनाज और ये जो आपका लौह तत्व है, आपका ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, इन सब में बहुत अच्छे से पाया जाता है। ज्वार और बाजरा इनमें तो बहुत अच्छी मात्राएं पाया जाता है
3: जी।
2: तो अगर इनका इस्तेमाल होगा तो ये जो कुपोषण की समस्या है ये हमारी काफी हद तक से निजात पा सकते हैं, बस जरूरत है इनको अपने भोजन में, हमें अपने भोजन में शामिल करने की
3: जी। बिल्कुल, और धारणा ये है कि जो मोटे अनाज है स्वाद में शायद आपको इतने अच्छे ना लगे, तो ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि इससे जो उत्पाद है वो

0: और ज्यादा स्वादिष्ट बन जाते हैं। तो कैसे बनते हैं, किस किस तरह के उत्पाद है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं ये मोटा अनाज क्यों कहा जाता है और इससे क्या फायदा हो सकता है और किसानों को कैसा इसमें लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
3: मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी खेती में हमें ज्यादा मेहनत या मशक्कत नहीं करनी पड़ती।
0: अच्छा,
3: ये आपके बड़े कहेंगे कठोर फसलें हैं, आपके विषम परिस्थितियों में भी उग जाते हैं, यानी कि इनको पानी की आवश्यकता कम होती है, यानी जहाँ सूखा है जहाँ सूखा आपका क्षेत्र होता है वहाँ पे आप इसकी खेती कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है, मतलब रफ एंड टफ।
0: जी,
3: तो इस ये
0: कम पानी वाली जो जगह है वहाँ हो सकते हैं, क्षेत्र है वहाँ पर भी इसकी खेती की जा सकती है।
3: बिल्कुल, वर्षा आधारित जहाँ पे वर्षा निर्भर रहते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो और तो जलवायु के हमारे उस पे आधार पे मतलब बहुत अच्छे, जो हम बात करते हैं अपने क्लाइमेट रेजिलेंट की, तो उसमें ये बहुत फिट बैठते हैं, मतलब हमारे लिए कहेंगे कि सुटेबल है, तो इसलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है।
0: जी,
3: और जैसे बात करें कि किसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, जैसे किसान भाई बात करें आपके गेहूं और चावल की, इनकी पैदावार में हमें मतलब 120 से 150 दिन लग जाते हैं, जबकि आप मोटे अनाज की आप खेती करते हैं तो ये 70 से 100 दिन में तैयार हो जाता है।
0: अच्छा,
3: तो और साथ ही साथ जैसे आपने गेहूं अनाज से फसल को लेके बेचा, पर आपने मोटे अनाज में आपको एक तो खाद्य के रूप में आप जो मिल रहा है आपको उपज खाद्य में ले सकते हैं, दूसरा जो आपका बचत व्यवस्था है वो चारे में जाता है, तीसरा आप ईंधन में।
0: अच्छा,
3: और फिर इसके औद्योगिक इस्तेमाल भी हैं, स्टार्च बनाने में, जैसे मक्का है स्टार्च इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी है।
0: अच्छा,
3: वहां सबसे मेन आपका मक्का ही मांग की जाती है। आपका और भी चीजें हैं, इंडस्ट्रियल उत्पाद है जो कि हमारे जैसे जौ है, इसका अल्कोहल में काम आता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो ये काफी औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो एक विविधीकरण के लिए रास्ता खोलते हैं मोटे अनाज हमारी खेती में, तो इसीलिए किसानों के लिए इनकी खेती महत्वता और अनाज के साथ महत्व रखती है।
0: बिल्कुल डॉक्टर, तो आप बता रही थी कि किस तरह से जो किसान हैं उनके लिए मोटे अनाजों की खेती बेहद लाभकारी हो सकती है, एक तो कठोर परिस्थितियों में भी इनकी खेती की जा सकती है और इसके कई तरह के उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं और इसके इस्तेमाल कई जगहों पर है, तो आमदनी का जो जरिया है किसानों के लिए वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इनके खाद्य प्रसंस्करण पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जो मोटे अनाज है, लोगों की धारणा है कि खाने में इसके उतना स्वाद नहीं है, तो ऐसे में बताएं कि प्रसंस्करण की महत्ता कितनी है, खासतौर पे बच्चों के लिए आपने बताया कि बहुत ये महत्वपूर्ण है, तो कैसे उनके लिए दिलचस्प बनाया जाए।
3: जी, तो जैसे पहले जैसे मोटे अनाज का हमारे खाने में खिचड़ी रोटी दलिया इनके रूप में होता था, पर अब जैसे क्योंकि पौष्टिकता की दृष्टि से ये काफी अच्छे हैं और सभी को सभी वर्ग के लिए बहुत अच्छे मतलब हैं और खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी, तो बच्चों में इसका खान पान कैसे मतलब इसका बढ़ाया जाए कि बच्चे इसको पसंद करें, तो कई प्रकार के इसके उत्पाद अब बनने लग गए हैं, मतलब नाश्ते के रूप में आपका उपमा के रूप में सूजी इनकी बन जाती है और आपका इनका बिस्किट जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बिस्किट भी नहीं, हम जैसे बाजरे का, हमारा ये उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है बाजरे का क्षेत्र है, तो यहाँ पे बाजरे का प्रसंस्करण में हमने बाजरे के बिस्किट पे प्रशिक्षण आयोजित किया था, तो एक महिला ने ये उद्योग शुरू किया तो 15 प्रकार के उन्होंने बिस्किट बनाए, तो उसमें बच्चों के लिए भी बिस्किट बनाए और वो खासकर बच्चों के लिए बच्चों द्वारा बहुत पसंद किया क्योंकि उसमें थोड़ा सा चॉकलेट डाल दिया गया।
0: अच्छा,
3: तो बच्चों का स्वाद बहुत अच्छा आया। तो यही इन मोटे अनाज का ब्रेड, आपका केक, इस तरीके से उत्पाद है, और यही नहीं है जैसे हमारा नूडल्स वगैरह आते हैं वो भी इनसे बन जाते हैं, पास्ता जो अगर हम विदेशी खाने पे जाएं तो पास्ता भी बनता है इस मोटे अनाज से, तो इसकी मशीन भी आ गई है और हमारा एक संस्थान है हैदराबाद में इसी का, कदन्य फसलों, इनको मोटे अनाज को हम कदन्य फसलें ही बोलते हैं, तो हैदराबाद में इसका संस्थान है जो इन्हीं सभी फसलों पे काम करता है और उसके प्रसंस्करण पे भी काम करता है, क्योंकि जैसे बात हम कर रहे हैं प्रसंस्करण की कि खेती में आपको तभी फायदा होगा कि अगर आपने जब उसको कोई नया रूप दे दिया, खाली अनाज को निकाल के बेचने से ज्यादा फायदा नहीं है, आपने अगर अनाज का मूल्य संवर्धन कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया, तभी आपको फायदा मिलेगा। बाजरा का दाम जैसे देख रहे थे कि 1500 से 2000 के रूप में जाता है क्विंटल, पर वही अगर बाजरा बिस्किट जाएंगे तो वो आपको 4 गुना तक ज्यादा चला जाएगा, तो ये मूल्य संवर्धन भी हो जाएगा, एक कुपोषण की जो हमारी समस्या है वो भी कम हो जाएगी और हमारे जो स्वास्थ्य है वो भी उसमें भी लोगों में सुधार आएगा।
0: बिल्कुल,
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भी 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें
0: करना चाहूंगी और रेशम कीट पालन के बारे में आपसे जानना चाहूंगी।
4: जी, अगर हम लाभकारी कीटों की बात करें तो पहला आता है मधुमक्खी पालन और दूसरा है रेशम कीट पालन।
0: जी।
4: बहुत सारे जितने भी हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ सभी लोग, ज्यादातर लोग रेशम कीट पालन करते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाएं भी हैं इस बारे में कि किस तरह हम आमदनी को बढ़ावा दें। तो हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड बैंगलोर में स्थित है, ये हेडक्वार्टर है और उसकी कई सारी रीजनल स्टेशन है जो हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। तो जो भी कोई अगर रेशम कीट पालन करना चाहता है तो अपने निकटवर्ती जो भी हमारा रेशम कीट पालन केंद्र है वहां से संपर्क करके अंडे ले सकता है, अंडे या फिर लार्वा ले सकता है और हर जगह उनको आसानी से पाला जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, मतलब बहुत से लोग तो एक छोटे से कमरे में रेशम कीट पालन कर सकते हैं और ये काम बहुत आसान है और महिलाएं इसे बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो अगर कोई भी किसान अगर चाहता है कि खेती बाड़ी के साथ में हम आमदनी का एक और जरिया रखें तो रेशम कीट पालन एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, इसको सब अपनाना चाहिए और इसमें बहुत सारी स्कीमें भी वर्तमान में चल रही हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: तो ऋतु, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि किस तरह से कई तरह के उत्पाद मूल्य संवर्धन करके मोटे अनाजों के बनाए जा सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए या फिर इसको एक व्यवसाय का रूप देने के लिए क्या किसानों को उससे पहले प्रशिक्षण ले लेना चाहिए और इससे उन्हें कितना लाभ होगा?
3: जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मोटा अनाज हम अभी तक पारंपरिक खाने में इस्तेमाल करते थे, पर अगर हम और जो नए उत्पाद है जैसे हम बात कर रहे हैं कि बेकरी के जैसे बिस्किट है, ब्रेड है या पास्ता है, नूडल्स है, ये सब बनाना है तो ये नई चीजें हैं, तो इनकी मशीनें भी हैं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है प्रशिक्षण लेना। और प्रशिक्षण के लिए आपके पास कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे जैसे मैंने बताया कि हैदराबाद में संस्थान है वहां, या नजदीकी है तो कृषि विज्ञान केंद्र, आप यहां पे संपर्क करके प्रशिक्षण कार्यक्रम ले सकते हैं, या अगर वो वहां पे नहीं होता फला कृषि विज्ञान केंद्र में तो वो आपको संस्थान में भी नॉमिनेट करके भेज सकते हैं ताकि आप प्रशिक्षण ले लें, क्योंकि इसकी मशीनी कैसी है। और सबसे बड़ी बड़ी आती है कि मोटे अनाज को आप सीधा, जैसे कुछ अनाज जैसे बाजरा है इसको हम सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको पचने में थोड़ा भारी होता है, क्योंकि इसकी जो ऊपरी परत होती है उसपे मतलब कहेंगे कि पोषक तत्व विरोधी एक परत होती है तो उसको हटाना पड़ता है। तो उसके लिए कई चीजें, छोटी छोटी चीजें जैसे आप अंकुरण कर लें, उसको भिगो के रख लें, या पॉपिंग यानी कि जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं पॉपिंग कर लें, या उसको चपटा करके फ्लेकिंग बोलते हैं वो कर लें, तो उससे वो जो पोषक विरोधी तत्व है वो हट जाते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो कि करनी पड़ती हैं इस्तेमाल करने से पहले, ऐसे ही मक्का में भी करना पड़ता है। तो ये इन सब चीजों के लिए आपको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सीधे ही उत्पाद बनाएंगे और कुछ मतलब उत्पाद ठीक नहीं निकले तो उससे पहले जरूरी है कि एक जानकारी ले लें और ताकि फिर उसको उद्यम में आए।
0: बिल्कुल, आपने बताया कि कई तरह के मशीनों का भी उपयोग होता है इसमें, इसके बारे में कुछ और हमें जानकारी दें।
3: जी, जैसे आपका प्रोसेसिंग की जो प्रसंस्करण की मशीन है, जैसे आपकी इनकी ग्रेडिंग, क्योंकि दाने बहुत छोटे होते हैं इनकी, आप हाथ से नहीं कर सकते, तो इनकी ग्रेडिंग की मशीन आती है जिसमें दानों की छटाई हो जाती है, फिर इनकी मिलिंग जैसे आटे के रूप में करना है तो वो मशीन आती है, फिर पॉपिंग की मशीन आती है जिसमें ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं।
0: अच्छा।
3: और फिर एक आपका एक अच्छा हेल्दी कहेंगे स्वस्थ नाश्ता या एक अच्छा एक स्नैक के रूप में उभर के आता है, तो इस तरीके से ये इनकी मशीन भी आ गई है। तो ये और जो इन मशीनों का इस्तेमाल जो है, और जो हमारी हैदराबाद की संस्था उन्होंने बनाई है मशीनें, तो उनके संपर्क करके ली जा सकती हैं हमारे, और जैसे बताया कि ऋण लेकर हम सारी मशीनें नहीं खरीद सकते तो इसमें अनुदान की आवश्यकता होती है, तो ये ऋण लेकर इन मशीनों का इस्तेमाल करके अपर यहाँ ये चीज तब करें जिस क्षेत्र में जो अनाज आपका मोटा अनाज हो रहा है।
0: जी।
3: जैसे ज्वार का क्षेत्र है तो ज्वार के संबंधित मशीन ही लें, बाजरे का क्षेत्र बाजरा प्रसंस्करण संबंधित मशीन ही ले, मक्का का है तो मक्का प्रसंस्करण संबंधित मशीन ही ले, तभी उसका इस्तेमाल सही से हो पाएगा।
0: बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जाना आपने कि किस तरह से जो मोटे अनाज है उनका आप प्रसंस्करण कर सकते हैं और उसके लिए बेहतर होगा कि आप पहले प्रशिक्षण ले लें और तमाम जानकारियां हासिल कर लें और उसके बाद इस व्यवसाय की शुरुआत करें।
2: किसान साथियों, मोटे अनाज से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानेंगे, उससे पहले यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटा भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मोटे अनाज की खेती और मित्र कीटों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां अभी तक हमने ली है, साथ ही और जानकारियां हम लेंगे एक्सपर्ट के माध्यम से। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को मोटे अनाज और मित्र कीट से संबंधित।
2: में रेशम कीट पालन के बारे में आपने हमें जानकारी दी, अगर इसके बारे में किसान कुछ और जानना चाहते हैं या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उन्हें कहां संपर्क करना चाहिए?
3: देखिए, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में CRC यानी चौकी रेयरिंग सेंटर, सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने अपनी संस्थाएं, अपने केंद्र स्थापित कर रखे हैं। तो आप अपने किसी भी नजदीकी संस्था में जाके संपर्क कर सकते हैं, वो आपको अंडे भी दे देंगे और बच्चे भी दे देंगे और पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है और आप आसानी से उसको शुरुआत कर सकते हैं। कहाँ करना चाहते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर किसी भी राज्य में करना चाहते हैं तो वहां पे कौन सी फसल आप लेंगे। जैसे अगर हम असम की बात करें तो वहां का मूंगा सिल्क, आपने सुना होगा कि मूंगा सिल्क की साड़ियां, मेखला चादर वगैरह बनती है। तो अगर असम या हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट यानी झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, यहाँ करना चाहते हैं तो इरी सिल्क वॉर्म यानी कि जो कैस्टर पर रहता है और मूगा सिल्क वॉर्म जो सोमन श्वाल, क्योंकि जहां पर भी उसके पेड़ होंगे, होस्ट जिस पर हम पालेंगे कीड़ों को यानी जो रेशम कीट के कीड़े होंगे उनको पालने वाले पेड़ों का होना भी आवश्यक है। तो पहले तो आप हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ पे करना है और किस रेशम कीट को करना है। एक्चुअली दो तरह के रेशम कीट हैं, एक तो होता है जंगली और दूसरा होता है पालतू वाला।
1: चलिए इसी के साथ हम काफी समय से मोटे अनाज की खेती को लेकर काफी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि हमें मोटे अनाज की कौन कौन सी फसलें लेनी चाहिए, इससे कौन सी फसलों में हमें अधिक लाभ हो सकता है।
2: बिल्कुल डॉक्टर ऋतु।
4: हाँ, मोटे अनाज में आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, जौ है, कोदो है, सवा है, ये आपके सब मोटे अनाज में आती हैं।
2: जी,
4: तो आपके यहाँ पे ये जैसे ज्वार और बाजरा की खेती आप कर सकते हैं, मक्के की भी खेती आपके यहाँ पे हो सकती है, तो आप इसमें प्रसंस्करण की संभावनाएं दे सकते हैं अपने क्षेत्र में।

0: जी जी बिल्कुल। मकई की बात की आपने, मकई में किस तरह से प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के विकल्प है किसानों के पास, बताएं
1: जी। जैसे मक्का है, जैसे बात करें अगर इसमें पोषणता की दृष्टि से, तो मक्का आपका जो आता है प्रोटीन से भरपूर होता है
0: जी,
1: ठीक है। और खासकर और पीली मक्का की बात करें तो उसमें विटामिन ए काफी मात्रा में होता है, जो कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पोषण के साथ साथ इसमें रेशा बहुत होता है हमारे, जो कि हमारे खाने में जरूरत है। तो अगर इस बात करें इसकी प्रसंस्करण की, तो मक्की का आटा बनता है, पर मक्की के आटे में थोड़ा सा ये ऐसी दिक्कत की वो थोड़े दिन के लिए ही रह पाता है, पर प्रसंस्करण तकनीक आ गई है, बहुत छोटी सी तकनीक है, जिसका इस्तेमाल करके इस आटे की अवधि हम जो है लंबे समय तक, जैसे हम गेहूं का आटा रखते हैं वैसे ही हम इसको रख सकते हैं। फिर इसी आटे से, मक्की के आटे से आप कई प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। जैसे हम रोटी तो हो ही गई, पर आपका इसी मक्की के आटे से सूजी आपका बन जाता है, इसी मक्के से आप दलिया बना सकते हैं, उस दलिया से आप अन्य जो बच्चों के लिए शिशु आहार जो हम कहते हैं वो बना सकते हैं। और इसके अलावा आपका मक्की का कई उत्पाद, लड्डू है आपका, फिर केक है, बिस्किट है, ये सब उत्पाद भी इससे मक्के से आपके बन सकते हैं और बन रहे हैं। अभी सरकार ने ये भी किया है कि कई राज्यों में मिड डे मील जैसे बच्चों के लिए जाता है, तो उनमें भी इन अनाजों का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया है, ताकि बच्चों को पोषण से सुरक्षित रखा जा सके।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: जैसे बाजरे के बिस्किट के लिए आपको जो हमारी बेकिंग सिकाई की मशीन आती है, जिसमें हमारे केक वगैरह बनते हैं, वो आपको लेना होगा। मशीन आपके अलग अलग प्रकार की आती है, मतलब कहेंगे क्षमता के आधार पे आती है कि आपने 30 किलो बेक करना है, 40 किलो बेक करना है, 20 किलो बेक करना है, तो उसके आधार पे ये मशीनें आती हैं और ये बिजली से भी चलती हैं, ईंधन से भी चलती हैं।
0: अच्छा,
1: तो आपको अगर ये जैसे बाजरे के मशीन आप कह रहे हैं कि कहाँ से आप ले सकते हैं शायद, है ना
0: जी, जी।
1: तो आपने जैसे प्रशिक्षण सबसे पहले आप इसमें दीजिएगा, किसी भी आप कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या कोई संस्था ऐसी हो तो वहां से आप लें। और आपको खादी विलेज, जो खादी ग्राम उद्योग है, उनका एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, उसमें आप इसमें इस योजना के तहत आप अप्लाई करें कि आप इस यूनिट को लगाना चाहते हैं। उन मशीनों के आपको नाम लिखने हैं, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ मशीन बेकिंग के नहीं, आपको इसमें बिस्किट जो है हमारा आटा गूंद के बनता है, तो उसकी गूंदने की मशीन आती है, वो गूंदने के लिए मशीन चाहिए होती है। फिर थोड़ा आपको सामान, टेबल है, कटिंग के लिए आपको चाहिए, कटर चाहिए होते हैं, और आकार देने के लिए अलग नाप वो आते हैं, ये आपको सब लेने पड़ेंगे। फिर पैकिंग आती है, तो ये सारा इकाई लगाने के लिए आपको खादी ग्राम उद्योग से भी ऋण मिल सकता है। पर आप पहले प्रशिक्षण ले लें, और उसी प्रशिक्षण में आपको मशीनों की जानकारी और उनके एड्रेस या पता, वो वहीं पे आपको पता लग जाएंगे।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, चलिए रुक करते हैं रेशम कीट के ऊपर। कैसे ये रेशम कीट रेशम को बनाता है, क्या उसमें क्या खासियत होती है जो रेशम बना देता है, और कैसे बनाता है, हम इसका पालन कैसे करते हैं, और क्या क्या किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए आदि जानकारियों को लेते हैं इसमें। आइए लेते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
4: देखिए, सबसे पहले तो बात अगर हम करेंगे तो कौन सी वैरायटी और कौन सी ब्रीड, अगर हम रेशम कीट पालन की बात करें तो आपने ली कहाँ से है और आपके जगह के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा, लेते समय हमें ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रेन या वैरायटी हम ले रहे हैं, जो भी जिस भी प्रजाति का ले रहे हैं, उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सेरिकल्चर यानी कि सिल्क फॉर्म रेयरिंग यानी रेशम कीट पालन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो बीमारी की, और वो होती है कि हम साफ सफाई का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसमें कई बार बैक्टीरिया वायरस की बीमारी आ जाती है। तो जब भी CRC जो भी हमारे चौकी रेयरिंग सेंटर्स होते हैं, हम उनसे बच्चे लेते हैं और उनको लेकर आकर हम उन्हें पालना शुरू करते हैं। फीडिंग ट्रेज होती है, उसमें हम मलबरी यानी शहतूत की पत्तियों को देते हैं उन्हें खाने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है। और एक बार में, अगर एक दिन में जब हम रेशम कीट पालन करते हैं, तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके खाने की रिक्वायरमेंट भी उसी के अनुसार बढ़ती है। तो एक दिन में हमें लगभग 3 से 4 बार खाना उनको देना पड़ता है। तो जब हम पत्तियां खिला रहे होते हैं, तो जैसे अगर नया बच्चा है तो उनको जो ऊपर की पत्तियां होती है, कोमल पत्तियां होती है, वो खिलानी होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसको हम बड़ी पत्तियां देते हैं जो कि मैच्योर लीव्स होती हैं। पर हर बार इस बात का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम फीडिंग ट्रेस में जो खाने वाली प्लेट्स होती है उसमें हम बच्चा और खाना दोनों रख रहे होते हैं और उनका एक्सक्रीटा भी, मल भी उसी में होता है, तो हमें साफ सफाई का समुचित प्रबंधन करना होता है। और जब रेशम कीट का बड़ा बच्चा हो जाता है, सूरी बड़ी हो जाती है और वो कोया यानी कि जो कुकून होता है सिल्क का, रेशम का बनाना शुरू करती है, तो उसको हम अलग लेकर जो माउंटेज होते हैं, जिसे वुडन में अगर कहें लकड़ी के बने तो चंद्रिका जिसे कहते हैं, उसके अनुसार हम उस बच्चे को वहां शिफ्ट करते हैं ताकि वो गोल गोल घूमकर एट के आकार का घूमकर रेशम बनाना शुरू करता है। रेशम कहाँ से आता है? जो लार्वा होता है उसके मुंह में एक तरह की ग्रंथियां होती है जिसे हम सिल्क ग्लैंड कहते हैं। वो सिल्क अपने मुंह से निकालकर अपने पूरे शरीर के चारों तरफ लपेटना शुरू करता है और एक तरह से फाइनली कुकून बन जाता है। अब उस कुकून को हम मार्केट में लेके आते हैं। अगर आपने अच्छा खाना खिलाया है रेशम कीट को तो अच्छा कुकून बनेगा। और दो तरह के कुकून होते हैं, या तो यूनिवोल्टिन, बाइवोल्टिन और मल्टीवोल्टिन। तो मार्केट में उसके जो कुकून का मार्केट लगता है, पूरी मंडियां लगती है, और अगर अच्छा कुकून है तो अच्छे मार्केट की प्राइस आपको मिलेगी।
0: बिल्कुल
3: किसान साथियों, अभी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर हासिल किया। आपने जाना कैसे एक पालतू रेशम की कीट होती है और जंगली भी रेशम की कीट पाई जाती है, तो इसका हमें कैसे देख रेख करना चाहिए, कैसे हम इसका पालन कर सकते हैं और कैसे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। साथ ही यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भीड़ 90.8 FM में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपनी बातें।

0: वो कौन से समय में लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? इसको बारिश के समय में लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकती है या इसे हम गर्मी के समय में ले सकते हैं? तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे एक्सपर्ट की राय।
1: इसकी फसल के जैसे बाजरे की बात करें तो बरसात के समय, इस समय ये बिजाई का समय बहुत उपयुक्त है आपका बाजरे के लिए। इस हफ्ते तक भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और इसकी क्योंकि अक्टूबर तक आपकी आप इसकी कटाई कर लेंगे तो इसमें उपज आपकी ज्यादा अच्छी होगी। क्षेत्र है तो वहां के लिए जो किस्म है बाजरा की वो ही आप लगाएं। वैसे आप बाजरा की ऐसी किस्में भी आ गई जिसको हम बायो फोर्टिफाइड किस्में कहते हैं,
0: जी
1: तो वो
0: जी
1: भी काफी आ रही। बायोफोर्टिफाइड का मतलब इनमें कुछ ऐसे पोषक तत्व और डाल दिए गए हैं जिनके इससे गुणवत्ता और बढ़ जाए। तो ऐसी ही कई किस्में आ रही हैं, बाजरा में भी ऐसी कई किस्में आई हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये आपके क्षेत्र में आप ये लगा सकते हैं। बायोफोर्टिफाइड किस्म है 1200 AHB, 1200 FE। आप
0: अच्छा
1: ये महाराष्ट्र की निकली हुई किस्म है विश्वविद्यालय की, कृषि विद्यापीठ की, तो वहाँ आप ये किस्म भी ले सकते हैं, लगा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: मक्के की खेती आप 2 बार कर सकते हैं, एक अभी जो अभी फसल आ गई और फिर एक सर्दियों में भी आप कर सकते हैं। दो समय में ले सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो आप 2 बार कर सकते हैं। और मक्का जैसे आपका इस क्षेत्र के आधार पे ही आप किस्म लेंगे। एक मक्का में हमारे वैज्ञानिकों ने यह भी जात किया, क्वालिटी प्रोटीन मक्का, यानी कि जो प्रोटीन की जो गुणवत्ता है उस मक्के में बहुत अच्छी है, जो क्योंकि हमें प्रोटीन सभी खाद्यों में मिल जाता है पर अच्छा क्वालिटी का गुणवत्ता वाला प्रोटीन है वो हमें इस क्वालिटी प्रोटीन मक्का के किस्म मिल जाता है। तो वहां उस क्षेत्र के लिए भी इसके किस्में होंगे, उनको लगाएंगे तो और आपको फायदा होगा। इसी में आपका प्रसंस्करण से अगर आप जुड़ जाएंगे मक्के के प्रसंस्करण से तो आपको कहेंगे डबल, यानी कि दुगना दुगना आपको हो सकता है। तो आप उसी के प्रसंस्करण में भी आ सकते हैं। कई उत्पाद जैसे हमने पहले ही बताए, तो बेकरी के अगर उद्योग में जाते हैं तो आपको ब्रेड, बिस्किट, केक वगैरह लेके जा सकते हैं। अगर आप नाश्ते वाले उसमें चाहते हैं तो आप बढ़िया भी है आपके हैं, नमकीन वाले स्नैक्स हैं, मिक्सचर है, चिड़वा भी इसका बनता है मक्की का, मतलब चपटा जैसे कॉर्नफ्लेक्स जैसे आते हैं वही आपका है। और चिड़वा आपका कच्ची मक्का को मशीन से प्रेस कर दिया जाता है और हल्का भून लिया जाता है, तो एक चिड़वा का स्नैक, एक नमकीन स्नैक बन सकता है।
0: मतलब अगर आप कई तरह के जो उत्पाद है वो किसान बना सकते हैं, मूल्य संवर्धन की जो संभावनाएं हैं इसमें बहुत ज्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाभकारी कीटों में एक अहम कीट लाख कीट भी है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारियां दें।
3: जी बिल्कुल, लाख हमने बात की थी मधुमक्खी की, क्योंकि शहद मिलता है
0: जी।
3: रेशम की की थी क्योंकि रेशम के कपड़े हम सिल्क की साड़ियां पहनते हैं
0: बिल्कुल।
3: और आपने कई बार देखा होगा कि पंजाबी में चूड़ा और बंगाली लोग एक स्पेशली कड़ा पहनते हैं, तो लाख
0: जी।
3: वो लाख का बना होता है और हमारी जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी, उसमें लाख का प्रयोग किया जाता है
0: जी।
3: तो लाख जो है वो कहाँ से मिलता है, वो एक कीड़े की से मिलता है, एक ऐसा कीड़ा जो पेड़ के ऊपर रहता है और अपने ऊपर एक कवर बना के चलता है। उस कवर, वो जो कवर होता है उस कवर को हम, जो ट्विक्स होती है, हम छीलते हैं फिर उसे पीसते हैं और छान के हम लाख बनाते हैं। और लाख के कीड़े जंगलों में बहुत सारे पेड़ों पर रहते हैं और लाख के लिए एक विशेष संस्थान है हमारा रेजिन का, जो कि झारखंड रांची में उपस्थित है नमकुम नामक जगह पर। तो जो लोग लाख में कहते हैं, जो लोग रूरल हैं, जो ग्रामीण हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, वो ऐसी शाखाओं को कलेक्ट कर सकते हैं जिन पे की लाख कीड़ा रहता है और उसे आसानी से प्रोसेस करके हम लाख को बेच सकते हैं। कई तरह के लाख बिकता है मार्केट में, जैसे कच्चा लाख हुआ, प्रोसेस लाख हुआ, और उसकी आसान प्रक्रिया है और इसको भी एक रोजगार का बहुत ही उत्तम साधन अपनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाज का मनाने जा रहे हैं और भारत के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इसकी अगुवाई करने की
1: जी।
0: तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, बहुत अच्छा हमारी सरकार ने पहल लिया कि हम, पहले तो हमने 2018 में देश का बताइए मिलेट का साल मनाया था, पर 2023 में हमारी सरकार ने विश्व में इसको प्रचार करने के लिए, ताकि इसकी मांग जैसे लोगों में बढ़े, जानकारी मिले कि हाँ इसका इस्तेमाल जो हमारे पोषण के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ यही नहीं कि कुपोषण के लिए, हमारे अच्छे भोजन, हमारे शहरीकरण के वजह से हमारी कई बीमारियां, आपके कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है इन मोटे अनाजों में।
0: जी।
1: कैंसर

0: आपका आपका हृदय के संबंधित रोगियों में आजकल आप देख रहे हो कि दिमागी जो मेंटल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं उसको भी कम करने की क्षमता है इन अनाजों में। इसलिए इस पे जोर देने के लिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2023 को, और ये बहुत अच्छी पहल है और इससे लगता है कि हमारे देश में लोग विश्व में जानेंगे कि मोटे अनाज की खेती करने वाला देश क्या क्या मतलब कर सकता है इस क्षेत्र में।
1: जी डॉक्टर ऋतु, आपने लगातार हमें मोटे अनाजों के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत जी।
2: किसान भाइयों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, आपने जाना मोटे अनाज से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को, कैसे अभी मोटा अनाज जो है बहुत ही पौष्टिक आहार बन चुका है और साथ ही इसमें कैंसर से लड़ने तक की ताकत है। तो किसान साथियों, यहाँ पर मोटे अनाज और जो हमारा कीट पालन है इससे भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ही मुनाफा हो सकता है। तो जो भी किसान भाई इसकी तरफ अपना रुख करना चाहते हैं वो अपना रुख कर सकते हैं, साथ ही केवीकी के माध्यम से जो भी अनुदान मिल रहा है उसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो 90.8 FM के साथ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
9: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः खेती बाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगी हुई है। किसान साथियों, हमारा यह हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हमारा जो किसान है उसकी आजीविका सशक्त हो, हमारा किसान खेती में नई से नई तकनीकों को सीखे, साथ ही उन्नत कृषि कैसे कर सके आदि जानकारियों को आप तक पहुंचाने की हमारी यह पहल कहीं ना कहीं हमारे किसानों की आजीविका को सशक्त बनाने की एक पहल है। किसान साथियों, हमारे पूर्वज पहले से ही कृषि करते आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कृषि को पुनः एक नवीनतम उसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो किसान साथियों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी दिन प्रतिदिन जो हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, वो बदलती जा रही है। प्रकृति में बदलाव आते जा रहे हैं और हमारा जो किसान है उन्होंने रासायनिकों का हमने अंधाधुन प्रयोग के माध्यम से कहीं कहीं पर इसके काफी दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर जरूरत है हमें एक बदलाव की और परिवर्तन के साथ प्रकृति के साथ मिलकर हमें कृषि करने की आवश्यकता है। तो यही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी कृषि कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। साथ ही किसान साथियों, हम कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी जो आजीविका के स्रोत हैं, जो हमारे आसपास ही हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उन सब बिंदुओं पर हम नजर डालते हैं और देखते हैं कैसे मधुमक्खी पालन के माध्यम से, मछली पालन के माध्यम से, फूलों की खेती करके, वनस्पति की खेती करके और अन्य खेती के माध्यम से भी हम कितने अच्छे मुनाफे ले सकते हैं। जो हमारा पूर्वज था वह सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्न फसलों की ही खेती करता था, लेकिन आज का किसान औषधीय पौधों की हम खेती करना शुरू कर दिए हैं। साथ ही हमने मत्स्य पालन शुरू किया है, कुक्कुट पालन शुरू किया है और भी अन्य खेती के बहुत सारे ऐसे साधन है जिनके मदद से हमने हमारी खेती में एक नए बदलाव को महसूस किया है। तो किसान साथियों, हमारा रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा किसान है वो भिन्न भिन्न और उन्नत कृषि करे और हमारी अपनी कृषि में नए बदलावों को करे, नए बदलावों को देखे, सीखे और अपने साथी किसान साथियों को भी बताए और हम हमारे एक्सपर्ट की राय से भी हमारी कृषि में एक उन्नति ला सके, एक नवीनता ला सके।
10: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
9: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मुर्गी पालन को लेकर और देसी गाय की किस्मों को लेकर। हमें कैसे इनका रखरखाव करना है, क्या इनके लिए कैसा प्रबंधन करना है, साथ ही हमें किन किन बातों में इनका ध्यान रखना है और कैसे हम इसमें इनका ख्याल रख के हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। तो आइए शुरू करते हैं।
11: जिसे बात करते हैं अधिराज जी, अब जैसे कि हम देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम एक आम किसान, एक पशुपालक की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है?
12: देखिए, ये हम बताएंगे कि देसी नस्ल जो हम बोलते हैं, पहले क्रॉस ब्रीडिंग करके विदेशी नस्ल को यहाँ पे दूध उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था, पर अभी हमने ये देखा है कि देसी नस्ल भी हमारे उतने ही अच्छे दूध दे रहे हैं, उनके गुणवत्ता भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए भारत सरकार का ये योजना है कि कैसे देसी नस्ल का संवर्धन किया जाए और उसका कैसे भी डेवलपमेंट किया जा सके, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ये दोनों का किया जा सके, इसलिए ये किया जाता है। इनको अगर देखेंगे कम लागत में इनसे ज़्यादा हमें फायदा मिल सकता है, जो कि भारत सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है, 2014 से चल रही है, जिसको हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन बताते हैं। उस योजना के तहत देसी नस्ल का संवर्धन किसानों को कैसे पहुंच सके, ये योजना हम चला रहे हैं।
11: जी बिल्कुल। और देखिए, एक समय था जब हम क्रॉस ब्रीड का काफी हमारे जो किसान थे, पशुपालक थे, डेयरी से जुड़े जो हमारे पशुपालक थे, उनमें क्रेज रहता था। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रही है, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की ओर हम रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में देसी गायों की भूमिका या फिर कहें उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
9: इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर और जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, जिन पे हमें काम करने की आवश्यकता है और उनकी मदद से हम कैसे हमारी आय में वृद्धि कर सकते हैं, हमारी कृषि को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
13: पशुओं को किसानों का धन माना जाता है और पशुपालक किसानों की आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुधन से आता है। पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी देसी नस्ल के दुधारू पशुओं के संरक्षण की दिशा में लगातार अहम कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, दूध उत्पादन और मांग में संतुलन के लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं। व्यवसायिक फार्म प्रबंधन और बढ़िया पोषाहार के जरिए भारत में देसी नस्लों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने की काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने 2014 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। योजना के जरिए दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है।
11: लोगों के लिए काम कर रही है, हमारे पशुपालक इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और देसी गाय संरक्षण और संवर्धन को और गति दी जा रही है। चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी मुर्गी पालन। डॉक्टर पंकज, मुर्गी पालन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मुझे समझ आता है और जैसे एक्सपर्ट से बात हुई मेरी, तो बीते इन दो सालों में कोरोना काल में काफी इससे सेटबैक रहा, मतलब काफी नुकसान हुआ मुर्गी पालकों को। अभी मौजूदा स्थिति क्या है?
14: जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो एक बहुत नाजुक व्यवसाय है और जैसा कि आपने कहा और सत्य भी है कि विगत कोरोना काल में शुरुआती तौर पे इस मुर्गी को ही कोरोना संक्रमण फैलने का कारण मान लिया गया था, जो तथा कदापि उचित नहीं था और ना तथ्यों से भरा हुआ था। सब तथ्यों से परे भ्रामक प्रचार के कारण जो हमारा मुर्गी का उद्योग था, जो मुर्गी पालन का उद्योग था, उसको काफ़ी बड़ा सेटबैक रहा और लगभग 2020 की अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर के और जुलाई तक के बीच में जो एस्टिमेटेड आंकड़े हमें बताते हैं, लगभग 25,000 करोड़ का भारतीय जो हमारा मुर्गी पालन का व्यवसाय था उसको नुकसान हुआ था। धीरे धीरे जब लोगों में समझ बढ़ी और उनको पता चला कि ये एक पौष्टिक और संतुलित प्रोटीन का सोर्स है और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, तो अगले 3 महीनों में इस उत्पाद की खपत अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बढ़ी, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और उसके परिणाम भी हमको देखने को मिले कि लोग तेजी से स्वस्थ होते गए और अपना पुराना जो विगर था उसको उन्होंने पुनः प्राप्त किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत में भी मुर्गी पालन जो है काफी एडवांस स्टेज पे है। अगर आप पुराने 70 के दशक की बात करें तो हम इस मुर्गी को पिछवाड़े में पाले जाने वाले एक बर्ड के रूप में जानते थे जिससे कुछ अंडों की प्राप्ति होती थी। 80 के दशक में हमने ये जानना प्रारंभ किया कि एक और प्रजाति मुर्गी की विकसित हुई जिसे ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं और ये मांस उत्पादन की दृष्टि से पाली गई। और उसके बाद 90 का दशक आते आते धीरे धीरे इसके प्रसंस्करण और इसके प्रोसेसिंग पर भी विचार किया गया और अब जो हमारा एरा चल रहा है वो एक क्वालिटी एग और मीट को डिलीवर करने का है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो वो 70 के दशक से आज की अगर हम तुलना करते हैं तो जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है कई सैकड़ों गुना बढ़ा है। वैश्विक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भारत का अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है। जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, जो दूसरा स्थान है वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और भारत में भी अगर आज की तारीख में हम देखें तो लगभग जो अंडे का उत्पादन है वो 122 बिलियन अंडा है, जो लगभग जो दूसरा स्थान है विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके बहुत करीब है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में हम इस दूसरे स्थान को प्राप्त कर लें।
11: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर पंकज की ये बहुत संवेदनशील है और इसीलिए हमारे जो मुर्गी पालक हैं उन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे चेंज ऑफ वेदर होता है या फिर कोई इन्फेक्शन अगर एक मुर्गी में दिखाई दिया तो बहुत जल्दी उसे कदम उठाने की जरूरत होती है। टीकाकरण को कई बार लेकर के हमारे जो मुर्गी पालक हैं वो उतने संजीदा नहीं रहते, उतना ध्यान नहीं देते, उससे भी बहुत तरह के नुकसान हो जाते हैं। तो जैसे कि हमें डॉक्टर पंकज बता रहे हैं कि जो अभी मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही सुखद है और इसमें लगातार हम प्रगति के पथ पर हैं और आने वाले समय में हम बेहतर कर सकते हैं क्षेत्र में। फिलहाल देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
13: अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो ये एक मुनाफे का व्यवसाय साबित होता है। मुर्गी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं, तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने की जगह को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
9: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी को लिया है कैसे हमें मुर्गी पालन के जो मुर्गी पालन करना चाहता है जो किसान उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें थोड़ा सा खुले में उन्हें रखना चाहिए, साथ ही उनके लिए जो रात में बल्ब की सुविधा होना चाहिए, उनके लिए भरपूर पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को मुर्गी पालन से जुड़ी हुई और गाय से जुड़ी हुई।
11: अधिराज, जैसे कि हम देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझे और इसमें हमारे किसान किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें किस तरीके से लाभ भी होगा, ये भी बताएं।
12: देखिए, ये बता सकते हैं कि अभी भारत में जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो देसी नस्ल अगर गायों का हम देखेंगे तो लगभग 50 देसी नस्ल गायों के हैं और 17 देसी नस्ल जो भैंसों के हैं। तो इसमें हम देखेंगे अगर दूध की बात करते हैं, अगर गाय जो किसान भाई पालन करना चाहते हैं, तो देसी नस्ल जैसे गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, इस तरीके के जो नस्ल हैं ये अच्छे दूध देते हैं और डिजीज रेजिस्टेंस भी ये है, जो कि उनके कम मतलब उनके रोग लगते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे संकर जातियां हैं या विदेशी नस्ल के हैं। तो उससे क्योंकि ये हमारे और हीट टॉलरेंट भी हैं, जो कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं और कम लागत में अच्छी तरह इसका दूध भी उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है और गुणवत्ता भी इस दूध का भी बहुत अच्छा है बहुत सारे स्टडीज में।
11: और ये भी इसमें बहुत मेडिसिनल वैल्यू
12: है,
11: पोषक तत्वों से भरपूर है देसी दूध, देसी गाय का दूध। और अब देखिए इसका बाजार भी काफी विस्तार लेता जा रहा है कि उपभोक्ता भी मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार है। तो किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा बाजार खुल रहा है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं।
12: जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम आपको बताना चाहते हैं भारत सरकार की तरफ से ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना जो चलाई गई है 2019 से शुरू गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी से उसका उद्घाटन किया गया था और इसके तहत हमने लगभग 600 जिले लिए थे देश के, जहां पे ये जो आप बोल रहे हैं देसी नस्ल के गाय का जो सिमन होता है उसको उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, कृत्रिम गर्भधान के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि निःशुल्क किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, जो कि हमारे एआई टेक्नीशियंस हैं वो आपके घर पहुंचेंगे, कहीं पे भी होता है आप निकटतम।
11: जी, लेकिन डॉक्टर अधिराज, इनका सवाल था वो यही कि अच्छा वीर्य मिले कहां से जो देसी बछड़े का हो, तो इसके लिए कहां संपर्क करें? कई बार जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पशुपालकों को भी कैसे पता चले कि हाँ वो जो चाहते हैं, जो करना चाह रहे वही है?
12: देखिए, सारे राज्यों में ये हमारे जो सीमेन स्टेशन हैं, सीमेन स्टेशन से अच्छी देसी नस्ल के जो सीमेन बनते हैं, तो वो सीमेन सारे राज्यों को सप्लाई किया जाता है और सारे राज्यों का निकटतम पशु चिकित्सालय जो है वहां से संपर्क कीजिए और जो एआई टेक्नीशियन है जो आपके घर में आके कृत्रिम गर्भधान करते हैं उनसे संपर्क कीजिए और जो नस्ल के आपको चाहिए वहां पे अवेलेबल किया गया है तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। और बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि रीजन वाइज भी हमने कुछ किया है, जो कि अपने स्टेट का जो ब्रीडिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से कोई कोई स्टेट अपने जो देसी नस्ल चाहिए उनके राज्यों के लिए, जो उनके राज्यों के लिए सही हो सकता है, उस हिसाब से किया गया है।
9: जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप में से कोई किसान साथी देसी गायों का पालन करना चाहता है कि वो गर्भाशय कराए, तो अपने पास के केवीकी केंद्र में हम इस संपर्क कर सकते हैं और ये भी अभी हमें मिल सकता है। अभी इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका शुभारंभ कर चुके हैं। हमारे देसी गाय का जो दूध हो सकता है कि थोड़ा कम जरूर देती है, लेकिन उसमें जो गुण है वो काफी उच्च गुण है उनमें। तो किसान साथियों, हमारे में से काफी किसान साथी देसी गाय का घी है, देसी गाय का दूध है, उसकी महत्वता को जानते हैं, समझते हैं और इसे पालते भी है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारी देसी गाय का घी

0: तुलनात्मक बाकी घीयों की तुलना में काफ़ी महंगा मिलता है, और अधिकतर तो ये मिलना अभी दुर्लभ हो चुका है क्योंकि अधिकतर लोग जर्सी गाय ही रखते हैं, लेकिन देसी गाय का घी जो होता है काफ़ी गुणकारी होता है, ये बात हमारा किसान अच्छे से जानता है और ये काफ़ी दुर्लभ है। साथ ही अगर हम बात करें हमारे देसी मुर्गियों की, तो देसी मुर्गी का अंडा भी काफ़ी गुणकारी माना जाता है और यह भी काफ़ी दुर्लभ होता जा रहा है। किसान साथियों, यहाँ पर हम आइए लेते हैं एक्सपर्ट से राय कि अगर कोई देसी मुर्गी का पालन करना चाहता है, कोई किसान साथी, तो कैसे कर सकता है। हाँ, हमें हमारे पास के किसान साथियों से ये मिल जाता है, लेकिन क्या हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर या अन्य संस्थाओं पर क्या ये इसकी उपलब्धता है, या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: मुर्गी पालन की लगभग सारे ही क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। अगर विस्तृत दृष्टि से देखें तो मुर्गी पालन दो प्रकार का होता है। एक वो जो हम घर के पिछवाड़े पे पालते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री, और दूसरा जो बहुत एडवांस स्टेज पे हम मुर्गी को पालते हैं और आजकल वो उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग लेते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि शुरुआती तौर पे आप कम संख्या में मुर्गी को पहले पालने का प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संसाधन आपको कितने आवश्यक हैं, उन संसाधनों के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करें। अगर मीडियम स्तर पर या बीच वाले स्तर पर आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं, तो आपको खासकर धन के क्या स्रोत होंगे और आपके पास क्या संसाधन हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और फिर नस्ल का चयन करना चाहिए कि आप अंडे की मुर्गी पालना चाहते हैं, अंडा देने वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मांस उत्पादन वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मुर्गियों की अन्य नस्लें जो इस देश में उपलब्ध हैं उनको पालना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास जापानी बटेर भी है, हमारे पास चीनी मुर्गा या गिनी फाउल भी है, हमारे पास टर्की भी है। तो आप किस प्रकार की मुर्गी पालना चाहते हैं वो भी आपको निर्धारित करना होगा। और संसाधनों के जो आपके पास उपलब्ध हैं, आपके पास धन की उपलब्धता है, उनके आधार पर सामान्यतया विशेषज्ञों की ये सलाह होती है कि आप पहले छोटे स्तर से इस कार्य को प्रारंभ करें और जैसे जैसे इस कार्य में आप निपुण होते जाएं, आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते जाएं। तो ये पूर्णतः आपका चयन होगा। जहां तक आप थोड़ा बैकयार्ड से और मीडियम स्केल से प्रारंभ करेंगे तो उचित होगा। अंडा देने वाली अगर मुर्गी पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी, उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं। और जो मांस उत्पादन वाली मुर्गी है, ब्रॉयलर, उसकी भी व्यवस्थाएं अलग हैं। पर ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो विचार है वो क्या है, आपके संसाधन क्या हैं, और आपके जो धन का या पूंजी का स्रोत है वो क्या है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो जो जो प्रश्न होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये भी होता है कि आपका जब उत्पाद बाजार में जाने के लिए तैयार होगा तो उसके विपणन की व्यवस्था क्या है, ताकि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें कि कम से कम लागत से ज्यादा मुनाफा उठा सकें और उसके अनुरूप कार्रवाई करें।
2: जी।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, साथ ही हमारी देसी गायों की नस्ल है उसके गुणों को। तो किसान साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को।
1: कहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हमारे कोई कुछ सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं जो सूरतगढ़ में हैं, जहाँ पे थारपारकर ब्रीड आपको अवेलेबल हो सकता है, वहाँ से आप संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप निकटतम जो आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छे किसान होते हैं जो ये फार्म अच्छा खोलते हैं, वहाँ से भी आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत और एक योजना भी चल रहा है जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी अभी ये प्रावधान किया गया है कि जो 200 गाय या भैंस रख के, मिनिमम 200 रख के अपना फार्म खोलना चाहते हैं, उधर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से 2 करोड़ की सब्सिडी है, वो भी फार्म्स जहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए हैं वहाँ से आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, तो अभी आप समझ चुके हैं कि कहाँ से आप देसी नस्ल की गाय प्राप्त कर सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: कि कौन सी नस्ल अच्छी देती है, तो अगर हम दूध की बात करें तो गिर जो कि बहुत अच्छी है उसको हम रख सकते हैं। साहिवाल एक ब्रीड है जिसको भी हम पाल सकते हैं, और इसके अलावा रेड सिंधी भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं जो कि दूध देने वाले नस्ल हैं, ये अच्छे दूध देते हैं। और इसका भी अगर आपके पास कोई भी अपने घर में गाय है तो उसको भी, उससे भी आप अपना यही ब्रीड निकाल सकते हैं। अगर आप कृत्रिम गर्भधान करवाते हैं, इस जो सीमेन अवेलेबल होता है इससे करवाइए, और आपके घर में भी ये अच्छी पैदा हो सकते हैं।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: के गर्भधारण नहीं रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर भी हम आपको कुछ साधारण उपाय बताते हैं, वो आप देख लीजिए। पहले तो एक है उसका बॉडी वेट कितना हुआ, अगर सफिशिएंट बॉडी वेट बन गया है तो गर्भधारण कर सकता है। उसके अलावा ये भी देखना है सफिशिएंट अगर प्रोटीन का मात्रा अगर सही है उसके जो
2: आहार
1: में प्रोटीन का मात्रा सही है उसको आप देख सकते हैं। कुल्थी भी दे सकते हैं उसके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए। और उसके अलावा अगर देखेंगे कोई इन्फेक्शन, मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये पहली बार आपको इसके लिए कर रहे हैं तो इसके इन्फेक्शन का चांसेस नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो कुछ कमियां रहते हैं जैसे ओवरी का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ होगा, उसको दिखाने के लिए एक बार आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर लीजिए, वो एक बार आपके पशु का जांच करवा लें, और जांच करने के बाद वो कुछ उपाय बता सकते हैं जो कि मेडिसिन मिलते हैं जो कि प्रॉपर उसका गर्भधारण करवा सकते हैं। इसके अलावा छोटे से कुछ भी चीजें होते हैं जैसे कि कीड़े होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, अगर कीड़े भी हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो भी आप एक बार उसका फीकल सैंपल जांच करवा लें, और कीड़े अगर हैं या नहीं तो प्रॉपर जांच करवा के एक बार देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये सही हो जाएगा क्योंकि गिर नस्ल बहुत अच्छा है, तो कुछ तकलीफ नहीं आना चाहिए इसके।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: सामान्यतः हमारे यहाँ जो ब्रॉयलर का प्रोडक्शन है भी वृहद स्तर पर देखा गया है और लोग कर भी रहे हैं, तो क्या ग्रोथ ज्यादा होगी या उसकी बढ़ोतरी ज्यादा होगी? तो सुशांत जी, मेरा एक आपको मशविरा है कि जो ये पक्षी है, जो ब्रॉयलर है, वो ब्रॉयलर पहले जो 2 महीने में बाजार जाने के लिए तैयार होता था, अब उस वृद्धि को वो 28 दिन में प्राप्त कर लेता है, 1 किलो से 1.5 किलो हो जाता है। सो प्रतिदिन उसकी आहार व्यवस्था बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें उसको बहुत ही संतुलित आहार देना होता है, और खासकर जब उसमें ग्रोथ हो रही हो तो उस समय पे हमको उसको स्टार्टर राशन देना होता है, जब वो बड़ा हो चुका होता है तो और बाजार में जाने के लिए तैयार होता है तो फिनिशर राशन देना होता है। सामान्यतया इसका जो हम लोग चयन करते हैं वो पहले 4 हफ्ते स्टार्टर राशन और उसके बाद फिर हम लोग फिनिशर राशन देते हैं। इसको कई जगह पे खासकर जो नए नीति बन रही हैं, जो लोगों के नए फीडिंग शेड्यूल्स बन रहे हैं, उसके अनुसार 3-3 हफ्ते में इसको बांट दिया गया है। पहले प्रथम 2 सप्ताह हम उनको स्टार्टर राशन देते हैं और उसके बाद फिनिशर राशन प्रारंभ कर देते हैं, ताकि मुर्गी में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि दर हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मांस का उत्पादन हो और बाजार में जाते समय उसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। रही बात ग्रोथ प्रोमोटर की, तो आजकल अगर आप देख रहे हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर कई तरीके के होते हैं। इस स्तर पर इसको समझना बूझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारे देश में 2-3 समस्याएं इस समय चल रही हैं। एक तो एंटी माइक्रोबियल रेसिड्यू की प्रॉब्लम है, और कई ग्रोथ प्रोमोटर हैं जो नेचुरल ग्रोथ प्रोमोटर हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु संतुलित भोजन के सबसे ज्यादा आवश्यक है। और उसमें अगर ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप भोजन को संतुलित रखते हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर की आपको आवश्यकता होती ही नहीं है।
2: जी जी।
4: और दूसरा, अगर आप पक्षी को एक सामान्यतया स्वस्थ वातावरण में रखते हैं तो उसमें भी ग्रोथ प्रोमोटर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सामान्य तरीके से आप पाल सकते हैं। किंतु हमेशा याद रखिए कि अगर आपका आहार संतुलित नहीं होगा, आपका आहार पक्षी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा, तो आपको पक्षी में वृद्धि दर नहीं मिलेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पक्षी का चुनाव, जो उसका जर्मप्लाज्म है वो बहुत अच्छा हो, और दूसरा उसको जो आप फीड देते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का और संतुलित हो।
2: जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर अजय की, माफ कीजिएगा डॉक्टर पंकज की, जो अगर आप संतुलित आहार देते हैं तो वैसे ही आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप मुर्गियों को संतुलित आहार दें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: जरूर उपयोग करेगा देसी। देखिए देसी नस्ल की बात, हम गाय की नस्ल की बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत के ही हैं, ये कहीं बाहर के नहीं हैं, ये हमारे एरिया के ही हैं, तो इसको हम पालन कर सकते हैं। और जरूर आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप मतलब दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो गिर रख सकते हैं, साहिवाल रख सकते हैं, उसमें कुछ दुविधा नहीं होगी। इसके अलावा ये भी हम बता सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से और भी योजनाएं शुरू की गई हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, जो कि IVF भी आप करवा सकते हैं अपने जो भी घर में पशु है, जो गाय है, उसका IVF आप करवा के गिर या एक साहिवाल हो, या जो भी आप भैंस का भी चाहते हैं, मुर्रा चाहते हैं, जो जहां भैंस रखते हैं लोग, तो वो भी आप उसका फायदा ले सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की एक सब्सिडी भी रखी गई है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं।
2: जी बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आप देसी गाय अगर आप पालना चाहते हैं या फिर डेयरी लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु के अनुकूल ही होती है तो बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं होती है। अब मैं डॉक्टर पंकज आशीष बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आए लेकिन जो मुख्य सवाल थे उन पर अभी तक हम नहीं जा पाए हैं। तो जो नए हमारे मुर्गी पालक हैं, अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपने ज्यादातर हमारे किसानों को ये बताया कि कम से शुरुआत करें, मुख्य बातें कौन कौन सी होती जिसका ध्यान रखना चाहिए।
4: देखिए, जब भी मुर्गी पालन का व्यवसाय आप अपनाना चाहें तो मुख्य मुख्य बातें हमने कर ली कि हमें सबसे पहले अपने जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेने के बाद अपने संसाधनों को तलाशना चाहिए और अपने पूंजीगत व्यय जो आप करने की स्थिति में हैं उसका एक असेसमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जो प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये जो मुर्गी और मुर्गी से पाए जो प्राप्त होते हैं उत्पाद, वो सब पेरिशेबल नेचर के होते हैं, उनको लंबा समय तक आप स्टोर करके अपने पास नहीं रख पाते हैं, तो जैसे ही वो तैयार होते हैं उनको तुरंत मार्केट में भेजने के लिए विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो एक बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। तो शुरुआती तौर पे हम इसलिए कहते हैं कि आप छोटे स्तर से इस व्यवसाय को प्रारंभ करें, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ आगे पीछे या नफा नुकसान भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, आप दोबारा से उस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। और जो मात्रा प्रोडक्ट की आपके पास होती है उसकी भी विपणन व्यवस्था आप बहुत आराम से अपने स्तर पर कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारे देश का जो उत्पादन का स्थिति है वो काफ़ी वृहद स्तर पर हो रहा है, और पूर्व में भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा कर ली है कि भारत ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है मुर्गी और मुर्गी के उत्पाद की दृष्टि से, वैश्विक स्थान भी बना लिया है। और इन सारे उत्पादों का लगभग 20 से 27 प्रतिशत हमारा इस बैकयार्ड से आता है, जो हमारे घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन होता है उससे आता है। और इसकी सबसे ज्यादा खूबसूरती यह होती है कि जब ग्रामीण परिवेश में हमारे किसान भाई इसको घर के पिछवाड़े पे एक सहयोगी धंधे के रूप में अपनाते हैं, अपने कृषि कार्यों के साथ साथ 50 या 100 मुर्गियों को पीछे रख करके उनसे इस व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, तो होता क्या है, उसके जो अंडे प्राप्त होते हैं वो आपके परिवार के लिए, परिवार के इस्तेमाल करने के लिए भी होते हैं, आपको एक संतुलित प्रोटीन और संतुलित आहार की प्राप्ति आपको और आपके परिवार को होती है। उसके साथ साथ कभी जब आवश्यकता पड़े तो ये मुर्गी आपके लिए एक एटीएम का कार्य भी करती है, आप उसको रूरल मार्केट में 100-200-250 रुपए में बेच भी सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो एक इन दो उद्देश्यों के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को आप रखते हैं तो आपको फायदा भी होता है और धीरे धीरे जब आप इस मुर्गी पालन के व्यवसाय में परिपक्व होते जाते हैं तो इस व्यवसाय को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में विपणन की व्यवस्था बहुत ज्यादा हमें करनी नहीं होती है। पर हाँ, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है तो वो है मुर्गी की एक विपणन व्यवस्था, क्योंकि ऑर्गेनाइज मार्केट हमारे भारत में नहीं है। यद्यपि अब हम लोग औद्योगिक स्तर पर पहुंच गए हैं और अब बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी अभी हमारी जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, जो विपणन की व्यवस्था है, बहुत ही प्राथमिक टाइप की है।
2: सप्लाई चेन जो है वो और भी बेहतर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, तभी और बेहतर हमारे जो मुर्गी पालक है उन्हें लाभ होगा।
4: एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ अब तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंज्यूमर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी संभाल ली है। सो जितने एंसिलरी यूनिट्स हैं जो मुर्गी पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं उनने भी काम किया है। आपने कोरोना के समय पे देखा कि अगर आपको मुर्गी की या मुर्गी के मांस की या मुर्गी के अंडे की आवश्यकता थी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीजें उपलब्ध थी। आप चाहते जिस समय आप चाहें उस समय पे इन उत्पादों को अपने घर पे बैठे हुए प्रोसेस्ड हों या रॉ हों आप बुलवा सकते थे। तो धीरे धीरे इसकी विपणन व्यवस्था ने एक नया आयाम लेना शुरू किया है, डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू हुआ है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी ईज आउट हुई है। उसके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी भी शुरू की है। तो जिनको अगर बड़े लार्ज स्केल में मुर्गी के उत्पादों की आवश्यकता होती है, जैसे चिकन की आवश्यकता होती है या अंडों की आवश्यकता होती है, तो वो बैकवर्ड लिंकेजेस अपने डेवलप करते हैं, कुछ फार्म्स और फार्मर्स के साथ बात करते हैं, उनके जितने भी उत्पाद होता है वो डायरेक्ट लेते हैं और अपने अनुरूप उनको पैदा करवाते हैं, जिससे वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, यानी धीरे धीरे जैसा कि आप बता रहे हैं कि और ऑर्गेनाइज होता जा रहा है ये सेक्टर।
0: किसान साथियों, मुर्गी का व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है, यह बात हमारे झाबुआ का किसान बहुत ही अच्छे से जानता है। जब भी हमारा जो किसान है, जब भी उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, वे हाट का जो हमारा दिन होता है, हाट बाजार के दिन में आते हैं और जो मुर्गी है वो अभी 300 से 400 रुपए के बीच में बिक रही है। साथ ही अगर हम मुर्गे की बात करें तो मुर्गा 700 से 1000 के बीच

0: में ही बिकता है। और अगर देसी मुर्गा और कड़कनाथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा सा अच्छा दाम मिलता है। तो किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। साथ ही जैसे कि हम प्रारंभ में हम चर्चा कर रहे थे कि जो देसी अंडे हैं, देसी अंडे का जो अभी मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। हमें बाज़ार में अंडे ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन जो देसी अंडा है जिसका स्वाद अलग होता है और वो गुणकारी होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा किसान भाई इसमें थोड़ा सा और ध्यान लगा दे, और जो हमारे घर के पीछे हम पालते हैं, हमारे घर पे ही हमारे पेड़ों पे जो मुर्गियां होती है, उकेड़ा है, उकेड़े में से वो काफ़ी अपने ज़रूरतमंद ज़रूरी कीड़ों को वो खाती है, और इस तरीके से हमारे हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये कम लागत पर होने वाली कृषि है। तो किसान साथियों, आप इसमें भी अपना रुख कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा और ज़्यादा मुनाफा इसके माध्यम से भी हम कमा सकते हैं। आइए जानते हैं इसे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
2: साहिवाल भी बहुत अच्छा है। थारपारकर देखिए, थारपारकर साहिवाल अगर देखेंगे सिर्फ दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो साहिवाल बहुत ही अच्छा है। और थारपारकर अगर देखेंगे ये डुअल पर्पस है, मतलब इससे दूध का लाभ भी ले सकते हैं और अगर मतलब मेल काफ हो गया तो उसको आप मतलब खेती में भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज बहुत अच्छे हैं आपके राजस्थान के लिए।
3: जी,
2: और हमारा एक जो मैंने पहले भी बताया था एक कि राजस्थान में हमारा सूरतगढ़ में एक सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म है जहाँ पे थारपारकर की उपलब्धि भी हो सकती है। वहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं और कहाँ अवेलेबल है बता सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं इसकी फायदा।
3: जी बिल्कुल। साथ ही अधिराज जी बताया कि जैसे कि आपने हमें ई गोपाला ऐप के बारे में भी बताया था कार्यक्रम से पहले, हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये बहुत हमारे किसानों के लिए अच्छी सुविधा है, तो किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं और किस किस तरह की जानकारी या फिर सर्विसेज इस ऐप पर उपलब्ध हैं?
2: जैसे कि अभी सर ने बताया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब सारी चीज़ें अवेलेबल हो रहे हैं, तो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए और किसानों को सुविधा मिलने के लिए ये ई गोपाला ऐप का भी लॉन्च जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाया गया था, तो ये जो हुआ था तो इसमें क्या है, आप अगर कोई अच्छे नस्ल के पशु चाहते हैं, जो गाय है या भैंस है वो भी चाहते हैं, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो उसको आप खरीदारी कर सकते हैं और उसके जो किसान है उससे बात करके ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो सिमेन जो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए चाहिए उस वो भी वहाँ अवेलेबल है, और कहाँ से आप ले सकते हैं वो भी सारा, और उसके पर्टिकुलर प्राइस के साथ कितना मूल्य है वो भी अवेलेबल है, किस सांड का है वो भी सारा चीज़ अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एम्ब्रियो अगर चाहते हैं, अगर कोई IVF करना चाहता है तो उसके लिए एम्ब्रियो अवेलेबिलिटी भी वहीं दिया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ छोटे छोटे चीज़ें दिए गए हैं कि कोई अगर रोग आ जाता है, मतलब छोटा कंडीशन आ जाता है, उसका कैसे घरेलू उपचार हम कर सकते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको लगा के

0: करवाके अपने हिसाब से वो ले सकता
1: जी।
0: है।
1: चले तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी लाभ हमारे पशुपालक ले सकते हैं, और खास तौर पर ये ई गोपाला ऐप है जिसे खुद प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, और इससे बहुत तरह की सुविधाएं आपके बिल्कुल डोर स्टेप पर भी मिलेगी।
2: किसान साथियों, अभी आपने ई गोपाला ऐप के बारे में सुना। क्या है ई गोपाला ऐप किसान साथियों? ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा एक मौका है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें वहां पर मिल सकती है। हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के माध्यम से जो भी जानकारी हमें चाहिए हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से ढूंढ सकते हैं। साथ ही पहले हमें इन सारी चीजों को ढूंढने की काफी दिक्कत होती थी, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके पास मिलेगा आदि चीजों की हमें दिक्कत होती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ऐप का शुभारंभ किया है और ये बहुत ही अच्छी ऐप है। इसके माध्यम से हम अच्छे से अच्छी किस्म की वीर्य प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को इस ऐप के माध्यम से हम ले सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
0: देखिए, इसका कारण है ये फैट नहीं आ रही है जिसके वह आप जो दूध बेच रहे हैं उसका प्राइस भी कम हो रहा होगा। आप जो आहार देते हैं उसको संतुलित आहार दीजिए, जो कॉमर्शियल फीड मिलता है वो कॉमर्शियल फीड बाहर से खरीद के दीजिए, और उसके साथ आप उसको हरा चारा का भी सफिशिएंट हरा चारा दीजिए। मिनिमम उसको ये 5-6 लीटर दूध दे रहा है तो मिनिमम 25 किलो हरा चारा उसको रेगुलर चाहिए। ये देखिए, दूसरा चीज है आप कॉमर्शियल फीड जो मिल रहा है बाहर गाय के लिए मिल रहा है उसका अवेलेबिलिटी करवाइए। अगर हम देखते हैं कि जो पोषण हम देते हैं तो अगर वो हर 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो कॉमर्शियल फीड हमें उसको देना चाहिए तो इसका एक बार देखिए। दूसरा चीज आपको देखना होगा कि अगर कुछ मिनरल मिक्सचर उसके फीड में डाल सकते हैं वो डालने से भी, अगर डेली 50 ग्राम अगर मिनरल मिक्सचर जो मिल रहा है बाहर कॉमर्शियली अवेलेबल है, फीड सप्लीमेंट की तरह अवेलेबल होता है, उसको भी आप डाल के उसके आहार में डालिए तो इसके हिसाब से आपका जो गाढ़ापन आ जाएगा दूध में।
1: जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर पंकज, जैसे कि मैं जानना चाह रही थी आपसे कि कौन कौन से नस्लें हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो अलग अलग जो उद्देश्य है हमारे मुर्गी पालकों के उसके अनुसार जिसका चुनाव कर सकते हैं।
4: देखिए, नस्लों के मामले में भारत इस समय, मैं अगर कहूँ कि सबसे सर्वप्रथम है और सबसे उच्च स्थान पर है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास से विभिन्न जो हमारे इको क्लाइमेटिक जोन हैं उनके हिसाब से और उत्पादन की दृष्टि से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बर्ड्स तैयार कर लिए हैं। हमारे पास अगर घर के पिछवाड़े में पाले जाने वाली मुर्गियों की करीब करीब 13 से 17 नस्लें हमारे पास उपलब्ध हैं। अलग अलग इलाकों में ये विकसित की गई हैं और उन इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। अगर विकसित उत्पादन वाली मुर्गियों को अगर हम देखें तो अंडा देने वाली हो या ब्रॉयलर हो, उस पर भी उत्पादन की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, और हमारे पास वो सारी नस्लें जो विश्व के किसी भी कोने में मौजूद हैं वो भारत में मौजूद हैं। और इनकी विपणन व्यवस्था भी देखें, इनकी उपलब्धता भी देखें, तो जो हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनीज हैं, जो हमारे यहाँ की सरकारी हैचरीज भी हैं, उसमें इनका उत्पादन अपेक्षाकृत जितना भी आवश्यकता है उस स्तर पर किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि हम थोड़े ही समय में अंडा उत्पादन करने वाले दूसरे देश बन जाएं वैश्विक स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें इन बातों पर डिपेंड करती हैं कि हमारे पास चूजों की उपलब्धता है कि नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप चूजे की मांग बढ़ती और घटती रहती है। क्योंकि आपने देखा है कि भारत हमारा जो है वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। श्रावण के मास में मुर्गी के खपत पे कमी आ जाती है, गर्मी के दिनों में कमी आ जाती है, और जाड़ों में ये अपेक्षाकृत बढ़ जाती है।
1: जी, जी, जी,
4: तो इसकी मांग के अनुरूप इसका उत्पादन हमारे यहाँ किया जा सकता है और जो कंपनियां हैं वो आपके घर तक आपको ये चूजे उपलब्ध करा सकती है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
4: आपकी हो सकती हैं, परंतु इसका चिकित्सीय परीक्षण और इसका शव परीक्षण आवश्यक रूप से करा लें और चिकित्सक की सलाह लें, क्योंकि नॉर्मल आप जो बता रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं, दो समस्याओं के कारण ये हो सकता है। एक, कि आपने मुर्गी को प्रथम दिवस पे जो टीका

0: आना होता है, जो हैचरी के स्तर पे टीका लगाना होता है वो होता है मैरेक्स डिजीज का, जिसके कारण दोनों टांगों में पैरालिसिस होता है। उस कारण में अगर प्राथमिक स्तर पर आप देखें और एक सप्ताह दो सप्ताह के अंदर ये बीमारी हो रही है तो वो उस कारण से हो सकती है, और अगर 3 से 4 सप्ताह के अंतर पे ये बीमारी हो रही है तो वो सामान्यतया जो हमारा B2 होता है उसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन B2। तो बी कॉम्प्लेक्स का भरपूर उपयोग करें उसके लिए, अगर उससे करेक्ट हो जाता है तो ये मानिए कि वो विटामिन के कारण है। परंतु अगर जब इसमें मृत्यु दर हो रही है या ये पक्षी अपंग हो रहा है तो इसका चिकित्सकीय परीक्षण जरूर कराएं और ये जानने का प्रयास करें कि ये बीमारी के कारण हो रहा है या ये किसी डेफिशिएंसी के कारण।
1: मैरिक्स के बारे में जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब, तो उसमें भी बताते हैं कि बहुत एकदम शुरुआत में ही चूजों को टीका लगा देना चाहिए। तो अगर आप टीका नहीं लगवाया तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं ये चूक तो आपसे नहीं हो गई है। अंत में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे?
2: ये हम बताना चाहते हैं कि हमने भी बहुत सारे देसी नस्ल के बारे में भी बात की, और एक भारत सरकार का ये भी जैसे प्रोत्साहित किया जाए जो कि अच्छी देसी नस्ल पाल रहे हैं भारत में, उस तरीके के जो पशुपालक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं। उसमें भी एक चीज़ है गोपाल रत्न अवार्ड, जो कि पुरस्कार राशि दी जाती है, फर्स्ट को 5 लाख की और सेकंड को 3 लाख की और थर्ड को 2 लाख की राशि दी जाती है। तो ये वर्ष में एक बार किया जाता है, तो इसमें भी भाग लें और देसी नस्ल के लिए सुधार के लिए जो हमारे पशुपालक हैं।
3: किसान भाइयों, हमारे किसान साथियों के लिए एक सुनहरा मौका है, यहाँ अवार्ड रिवॉर्ड के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह खेती करे, उन्नत अच्छी से अच्छी खेती करे, अच्छी पैदावार ले, जिससे हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि हमारा किसान जो है हमारे पूरे देश के सभी लोगों का पेट भरता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार द्वारा प्रोत्साहित राशि दी जा रही है, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भाग लें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भी 90.8 FM के साथ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
7: हर घर

0: लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है आपका प्यारा प्रोग्राम, आपका फेवरेट प्रोग्राम आज के कलाकार। और जैसा आप हमेशा से जानते आए हैं, हम कोशिश करते हैं नए कलाकारों को, नए गायकों को, नई गायिकाओं को एक मंच देने की, जहां से वो अपने प्रतिभा को पूरे संसार तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया सीजन नए कलाकारों के साथ और भी बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ। तो चलिए मजे लेते हैं। आइए दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो टैलेंट मौजूद हैं, जो कलाकार मौजूद हैं, जो गायिका हमारे साथ है, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। वो है अनीशा पवार जी। और बाकी अनीशा पवार जी लीजिए खुद अपने बारे में बताएंगी। अनीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए प्लीज। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कौन है आप?
1: थैंक यू समीर भाई। मैं अनीशा पवार, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। और सुनने वाले सभी को पहले तो मैं प्रणाम करूंगी। और मैं एक गृहिणी हूँ, पहले जॉब करती थी लेकिन अब गृहिणी हूँ। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके बिजनेस में उनका थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। तो ऐसी मेरी रूटीन होती है और उसी के बीच टाइम मिले तो थोड़ा गा लेती हूँ।
0: वाह क्या बात है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है अनीशा जी, ट्रस्ट में। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद हमारे साथ, हमारी फैमिली में, इस ग्रुप में दोस्तों के साथ जुड़ने के बाद आप अब वक्त निकालेंगे। ये नहीं होगा कि आपके पास टाइम बचा तो गा लिया, नहीं, अब तो आप गाएंगे और खूब गाएंगे और बहुत बढ़िया गाएंगे, हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा जी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को अनीशा जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत ही प्यारी शुरुआत अनिता जी, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं और पूछना चाहूंगा आपसे, ये गीतों का संसार है, संगीत का प्रोग्राम है, आपको गाने का शौक कब से हुआ?
1: वैसे तो मुझे बचपन से ही गाने सुनने का बहुत शौक है। मतलब जब से याद आता है कि 4 या 5 साल की थी तभी से मैं गाने बहुत सुनती थी और उसके साथ ही गाने लग गई। तो स्कूल में जब मेरे टीचर्स ने मुझे सुना तो उन्होंने मुझे थोड़ा ट्रेनिंग भी दिया म्यूजिक के बारे में, और स्कूल के सारे फंक्शंस में मैं हमेशा सबसे आगे होती थी सिंगिंग में। तो तभी से मुझे सिंगिंग के बारे में बहुत मतलब रुचि पैदा हो गई। और उसके बाद थोड़ी गैप भी हो गई, लेकिन फिर से जब मुझे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स मिले सिंगिंग के तो मैंने फिर से गाना शुरू किया। तो ऐसे मतलब मुझे बचपन से ही वैसे तो आदत मतलब रुचि है सिंगिंग में।
0: बहुत बढ़िया, ये तो बात ठीक है कि किसी भी कला से मोहब्बत, किसी भी कला के प्रति इज्जत, श्रद्धा, प्यार बहुत पहले से हमारे चरित्र में, हमारे शख्सियत में आ जाता है। और उस चीज को पहचानना कि हम बचपन से ही इसको प्यार करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत बढ़िया अनिशा जी, बहुत ही बेहतरीन बात है कि आपको महसूस पहले से था, आपको पता था, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप ही का गाया हुआ अगला गीत हम पेश करते हैं हमारे दोस्तों को।

0: बहुत सुंदर। तो क्योंकि संगीत भी अनिशा जी एक कला है, एक पूजा है, और इसी तरीके से हमारे संसार में बहुत सारी कलाएं हैं। खाना बनाना भी एक कला है, जी हाँ, और भी इसी तरीके की बड़ी सारी कलाएं हैं। अपने घर चलाना भी एक कला है। मैनेजमेंट स्कूल्स खुले हुए हैं इस चक्कर में। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बहुत सारी कलाएं सीखना चाहेंगे या फिर शायद किसी एक कला में महारत हासिल करना चाहेंगे, एक्सपर्ट बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप, बहुत सारी कलाएं या सिर्फ एक?
1: वैसे तो देखा जाए तो एक ही कोई कला में अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो वो कला निखर आती है, उसमें हम और बेहतर कर सकते हैं। तो लेकिन मैं खुद मतलब नेचुरली ही मुझ में वो बात है कि मैं जो भी देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है मैं सीख लेती हूँ। तो जैसे कि सिंगिंग तो मैं करती ही हूँ, वो मेरी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। लेकिन मुझे पेंटिंग्स करना, स्केचेस बनाना, कैनवस पेंटिंग करती हूँ मैं, और हमारे घर में जो गणेश जी की स्थापना होती है तो वो मूर्ति भी मैं खुद बनाती हूँ घर पे। तो मुझे सारी कलाएं सीखना बहुत पसंद है वैसे तो।
0: माय गॉड, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों देखिए, ये बड़ी ही प्यारी बात है कि हम बहुत सारी कलाएं एक साथ सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत सारी कलाओं के हम मास्टर भी बन सकते हैं, ये भी तय है। बात सिर्फ आपके महसूस करने की और उसकी तरफ कदम बढ़ाने की है। अनिशा जी ने बताया कि गणपति स्थापना में जो गणपति की मूर्ति होती है वो भी अनिशा जी खुद अपने हाथों से बनाती हैं। देखिए, श्रद्धा की पराकाष्ठा है ये कि अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को हम लोग खुद आकार दें। यूं देखा जाए तो ईश्वर ने हमें आकार दिया है, लेकिन हम अपने प्यार से, अपनी श्रद्धा से उनको सजाते हैं, संवारते हैं, और अनिशा जी ये काम अपने हाथों से करती हैं। बेहद बेहद खूबसूरत बात। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी कलाएं सीखने के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, कोशिश करते हैं, करने को कर भी सकते हैं। तब तक एक प्यारा सा गीत सुनते हैं अनिशा जी की ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर।
1: तो
0: बात संगीत की है, ये पूरा प्रोग्राम गीतों का है, संगीतों का है। तो आपको संगीत में क्या पसंद है अनीशा जी? गाने पसंद हैं, गजलें पसंद हैं, भजन पसंद हैं, फिल्मी, नॉन फिल्मी, क्लासिकल और या कुछ और, क्या क्या पसंद है आपको?
2: मैं वैसे हर तरह, लेकिन जब मुझे गाने के लिए कोई बोले तो मैं ज्यादातर बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद करती हूँ। जब से बचपन से जो हम लोगों ने सॉन्ग्स सुने हैं, लता जी के, अलका याग्निक जी है, अनुराधा पौडवाल है, तो लता जी तो मेरे लिए मतलब एक देवी है। उनके सारे सॉन्ग्स गाना मुझे बहुत पसंद है, सुनना भी पसंद है। और मतलब बॉलीवुड म्यूजिक छोड़ के अगर कुछ है तो गजल्स मुझे पसंद है। उसमें मैं जगजीत सिंह जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनके सिंगिंग में जो ठहराव है, सादगी है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं गजल्स भी सुनती हूँ और गाती भी हूँ कभी कभी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भजन?
2: भजन मैं मराठी भजन सुनती हूँ और बहुत रेयरली गाती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें क्लासिकल बेस होता है और मैंने जबकि म्यूजिक सीखा नहीं है तो मुझे वो गाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन सुनना मुझे बहुत पसंद है। सुरेश वाडकर जी है, अनुराधा पौडवाल जी है, उनके भजन मैं जरूर सुनती हूँ। मोस्टली फेस्टिवल्स में वगैरह हमारे घर में भजन मतलब दिन भर बजते हैं।
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो दोस्तों आपने सुना कि अनीशा जी वैसे सारे तरीके के संगीत को पसंद करती हैं। अब संगीत की तो वैसे भी कोई भाषा नहीं होती, कोई विधा तो सब अलग अलग हैं, गजलें अलग हैं, भजन अलग हैं, गीत अलग हैं, क्लासिकल म्यूजिक अलग है, सब अलग अलग हैं, लेकिन है संगीत जो कि हमारे कानों को मधुर लगता है। बस हम उसी में मजा लेते हैं, उसी में खोए रहते हैं और ये प्रोग्राम आपका और मेरा है भी इसी चीज से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हो जाए फिर एक और बहुत खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत सुंदर। अनीशा जी, थोड़ा सा शेड बदलते हैं, बातचीत का दौर बदलते हैं, बात करते हैं त्योहारों की। आपको सबसे पसंद का आपका सबसे ज्यादा पसंद का त्योहार भला कौन सा है और क्यों, कैसे मनाते हैं आप उस त्योहार को जो आपको पसंद है?
1: वैसे तो मुझे दिवाली और गणेश स्थापना ये दोनों पसंद है। दिवाली में क्योंकि सारे घर के लोग खुश होते हैं, कुछ खरीदारी होती है, घर में नई चीजें आती हैं और सुख समृद्धि आती है, बच्चे तो बहुत मतलब एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरा खुद का पसंदीदा है गणेश स्थापना, क्योंकि मैं पहले से गणेश भक्त हूँ और 10 दिन घर में गणपति की स्थापना होती है तो ऐसे लगता है जैसे हमारा ही कोई फैमिली मेंबर घर पे है और उसकी पसंद के सब खाना बनाओ, उसे भोग चढ़ाओ, सुबह शाम हम आरती करते हैं, घर में सारे मेहमान आते हैं, पूरा घर भरा हुआ होता है और दिन भर मतलब एक प्रसन्न और मंगलमय वातावरण होता है। तो मुझे खुद को तो गणेश स्थापना के 10 दिन बहुत पसंद है।
0: बहुत बढ़िया बात कही अनीशा जी। इस बात को मतलब हम जानते जरूर हैं, सुना भी हो है, लेकिन इतने प्यार से गौर नहीं किया कभी, मैंने तो नहीं किया। दोस्तों गौर कीजिए जरा, अनीशा जी ने कहा कि जब कभी भी कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हमें वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब बाय लार्ज। अब कोई इस तरीके का इंसान आए जो शायद आप उसे आना पसंद ना करते हो तो वो बात अलग है, लेकिन हमेशा मैक्सिमम टाइम्स तो मेहमान आता है तो हमें अच्छा लगता है। और अनीशा जी ने गणपति को अपने घर में मेहमान बताया, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। और वो लगातार घर पे रहते हैं तो लगातार घर में उल्लास का और खुशी का माहौल बना ही रहता है, उन्हीं के पसंद के खाने बनते हैं, सब लोग हंसते खेलते हैं, गीत गाते हैं, और भी लोग आते हैं उन मेहमान के साथ बातचीत करने, मिलने, बैठने, खुशी मनाने, उनका आशीर्वाद लेने। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता अनीशा जी ने डिस्क्राइब किया और उस त्योहार को बहुत प्यार से मनाया जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत बात कही। हम लोग चलते फिरते कई बार छोटी छोटी चीजों पर गौर नहीं करते, कीजिए तो बहुत बढ़िया लगती है वो बात। चलिए तो फिर एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं अनीशा जी की ही आवाज में।

0: बात त्योहारों की हुई, खाने पीने की हुई, बहुत उल्लास की हुई, बहुत उत्साह की हुई। तो अनीशा जी, आपका सबसे पसंदीदा भोजन, खाना, डिश क्या है और भला क्यों?
1: मैं सब तरह का खाना खा लेती हूँ, ऐसे कोई मतलब ये नहीं है कि मुझे स्पेसिफिकली ये पसंद है। मैं जो भी सामने है वो मन लगा के खाती हूँ, लेकिन मुझे किसी को अगर खिलाना है तो मैं मोस्टली जो हमारे पारंपरिक खाना है, जैसे हमारे महाराष्ट्र का है पूरणपोली और मोदक, जो फिर से देखिए गणेश जी का ही फेवरेट है,
0: जी जी
1: तो मोदक बनाना और पूरणपोली बनाना मुझे बहुत पसंद है। जो मैं मेरे सिंगिंग प्लेटफॉर्म पे जो फ्रेंड्स है उनको भी कोई पूछे जो नॉन महाराष्ट्रियन है तो मैं उनको पूरणपोली की पूरी रेसिपी बता देती हूँ,
0: वाह
1: तो वो लोगों ने तो मेरा नाम भी पूरणपोली रख दिया है। तो मतलब वो मुझे जानते हैं कि मुझे ट्रेडिशनल फूड बहुत पसंद है, मतलब महाराष्ट्र के नहीं, केरला, अभी साउथ में जाएंगे तो मुझे इडली डोसा पसंद है, नॉर्थ में जाएंगे तो मुझे चाट पसंद है जो वहाँ का ट्रेडिशन है। जो आजकल जो चटकीले चाइनीज वगैरह आता है वो मैं मोस्टली नहीं खाती हूँ, बच्चों के साथ कभी खा लेती हूँ लेकिन ज्यादा पसंद नहीं है।
0: भाई वाह, क्या बात कही, बड़ी खूबसूरत बात। जाहिर सी बात है, अगर हम अपने पुराने ट्रेडिशनल संस्कृति से जुड़े हुए स्नैक्स या खानों की तरफ जाते हैं तो वो न्यूट्रिशनल्स भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं और बहुत बहुत जबरदस्त स्वादिष्ट भी होते हैं। हम अपने बच्चों को भी उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हमें उन्हें बतलाना चाहिए कि क्या थे हमारे ट्रेडिशनल खाने। एक बड़ी खूबसूरत बात कहीं पर मैंने सुनी थी कि हमें प्लांट बेस्ड खाना चाहिए, न कि प्लांट बेस्ड। हमें प्लांट बेस्ड खाना चाहिए न कि प्लांट बेस्ड, मतलब जो प्लांट यानी कि पौधों से जो खाने आते हैं, मतलब कि पौधों से या वेजिटेशन से जो खाना आता है हमें वो खाना चाहिए, न कि फैक्ट्रियों में जो बनता है वो खाना चाहिए। प्लांट बेस्ड न कि प्लांट पैक्ड। तो हमें हमारे संस्कार से, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो खाना पीना है वो अगर हम खाते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं और हमेशा स्वस्थ भी रहते हैं। बड़ी बढ़िया बात कही अनीशा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा एक गीत सुनते हैं इसी बात पर, मुंह में टेस्ट के साथ तमाम तमाम व्यंजनों के। ये लीजिए, ये गीत सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं अनीशा जी, और एक मजेदार सवाल पूछता हूं आपसे। फर्ज कीजिए कि अगर आपको 24 घंटे के लिए गायब कर दिया जाए, आप दिखाई ना दें लेकिन आप हों, तो आप उन 24 घंटों में क्या क्या करना चाहेंगी?
1: अच्छा, अगर मैं गायब हो गई तो पहली बात तो मैं ये करूंगी कि मेरे जितने भी पहचान में लोग हैं, मैं सबके घरों में जाके चुप चुप के देखूंगी और बातें सुनूंगी कि मेरे बारे में कौन क्या बात करता है, क्योंकि
0: ये
1: मौका हमें हमेशा नहीं मिलेगा। और जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में बुराई फैला रहे हैं, जो अपने ही देश को खराब करना या देश का नुकसान करने की बातें करते हैं, तो अगर मुझे ऐसी मिले कि मैं मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया बन जाऊं और लोगों के यहाँ जाके देख सकूं, तो मैं ऐसे लोगों की खबर जाके सरकार में या पुलिस में जरूर दूंगी, ताकि उन्हें पकड़ा जाए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिस इज नाइस। सो इसी तरीके के कुछ विचार दोस्तों हम अपने जहन में बना सकते हैं कि हम क्या करें। अगर हम सोच के देखिए ना, बहुत मजा आएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आराम से बैठिए, चाहिए तो एक पेपर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, और इमेजिन कीजिए कि आप 24 घंटे के लिए गायब हो गए हैं, तो क्या क्या करेंगे, लिखिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, जब तक हम विचार करें।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो निशा जी, जब आप छोटे थे बचपन में, कौन थे आपके हीरो और भला क्यों?
1: हीरो आप फिल्मी पूछ रहे हैं या मतलब समाज में?
0: कोई भी मैम, कोई भी जिनको आप अपना आइडल मानते हो, जिनको आप एडमायर करते हो, जिनसे ऐसा लगता हो इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखना है, इनके जैसा बनना है। अब वो कोई डेटी भी हो सकते हैं, कोई फिल्मी हीरो भी हो सकते हैं, कोई पेंटर, एनीबॉडी।
1: ओके, तो हम लोग रहते थे कैंटोनमेंट एरिया जैसा था। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वहाँ खड़कवासला एनडीए में जो मिलिट्री के जो कैडेट्स होते थे उनका ट्रेनिंग चलता था।
0: जी,
1: तो वो जो कैडेट्स होते थे वो हर संडे उनको एक 20 या 30 किलोमीटर की एक परेड होती थी, जिसमें उन्हें पीठ पे बहुत सारा वेट भर के पूरा राउंड चक्कर लगाना पड़ता। पूरे पसीने से वो भीगे होते थे, फिर भी वो चलते रहते थे। और हम लोग स्कूल जाते थे तो नीचे, मतलब वहाँ बस स्टॉप पे देखते थे उनको। तो मैं सोचती थी कि सच में ये लोग कितने हार्डवर्किंग है। इनको देख के ऐसे लगता है कि कितनी भी परेशानियां आए, कुछ भी हो, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं आज भी उनको याद करती हूँ तो लगता है कि हाँ, दे आर द रियल हीरोज। वो रियल हीरो है मेरे लिए।
0: क्या क्या बात है, बहुत खूब। जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत करने के बाद तो किसी भी व्यक्ति की शख्सियत निखर के आ ही जाती है, वो एडमायरेबल हो ही जाता है। जैसे आज आप हैं निशा मैम, इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतना रियाज, इतनी प्रैक्टिस के बाद आप इतना प्यारा गाती हैं, तो जाहिर सी बात है हम और सुनने वाले आपको एडमायर करते हैं, आपकी मेहनत की तारीफ करते हैं। हाँ, कभी कभी ये जरूर हम हल्के में भूल जाते हैं कि आपने कितनी तकलीफ उठाई इस प्रैक्टिस में। मतलब वो तकलीफ, मतलब तकलीफ बड़ी प्यारी होती है, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत तो मेहनत है। कितने घंटे आपने रियाज किया, हम लोग उसको भूल जाते हैं, तो उसको भी पूरी पूरी तवज्जो और इज्जत देने की जरूरत है। दोस्तों, आपने सुना तो अनीशा जी लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, और आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। वी सिंसियरली सिंसियरली अप्रिशिएट यू। हम आपको एडमायर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी मेहनत की पूरी पूरी तारीफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा जी। चलिए, तो इसी डेडिकेशन के नाम एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: तो अनिशा जी, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे गानों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए। कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस तरह मेरे सारे सॉन्ग्स आपने लोगों को सुनाए। होप ऑल ऑफ देम लाइक इट। और मैं तो लोगों से बस यही कहूंगी कि हमारा भारतीय संगीत जो है वो एक हमारा एक अनमोल खजाना है। और मैं चाहती हूँ कि उस मतलब जैसे हम कभी मेंटली डिप्रेस होते हैं या कोई परेशानी होती है, तो उसमें से संगीत हमें बहुत हेल्प करता है।

0: बहुत खूब राघवेंद्र जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत के बारे में ही बताइए, आपने कहा कि आपको संगीत का शौक है, यू आर पैशनेट अबाउट सिंगिंग, सो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछना चाहेगा कि किस तरीके का संगीत आप पसंद करते हैं, गाने में, दूसरा सुनने में, मतलब कहने का मतलब है आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और किस तरीके के गीत आप गाना पसंद करते हैं।
1: बहुत अच्छा। तो गीत जो मैं सुनना पसंद करता हूं वो उसमें कोई सीमा नहीं है। मैं तमाम हिंदी के गाने सुनता हूं, कन्नड़ा के गाने सुनते हुए बड़ा हुआ हूं। पहले पहले मेरा इंटरेस्ट हुआ करता था सिंगर बेस्ड, मतलब किशोरदा गा रहे हैं, रफ़ी साहब गा रहे हैं, बाला सुब्रमण्यम साहब गा रहे हैं, आशाताई गा रही है। लेकिन बाद में जो 80 और 90 के दशक के कई सारे जो सिंगर्स आए तो उन्हें मैं सुनता गया और अलग सा एक संगीत का मजा आ रहा था उस समय। जो मैं गाना पसंद करता हूं वो है गुरुदेव किशोरदा, मतलब के गानों के बिना जिंदगी अधूरा लगता है मुझे। तो रोज तो मैं किशोरदा के एक दो गाने सुनता भी हूं और गुनगुनाता भी हूं। साथ में मैं एसपी बालासुब्रमण्यम साहब का जो जो कन्नड़ा कन्नड़ा के गीत हैं या फिर हिंदी के उनके कई सारे हिट्स हैं वो मैं सुनता हूं। तो मैं थोड़े पुराने पुराने कह सकते हैं, क्योंकि 70-80 के दशक के गाने या फिर 90 के जो नदीम श्रवण जतिन ललित वाले स्टाइल के जो गाने हैं वो मैं सुनना पसंद करता हूं। बाकी इंस्ट्रूमेंटल में थोड़ा अभिरुचि है क्योंकि उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो जो कंटिन्यूसली बजते हैं वो कानों में लगा करके यदि काम कर रहा हूँ या फिर नींद नहीं आ रही है तो वो अगर सुनता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे।
0: और किस तरह के गीत आप गाना पसंद करते हैं?
1: किस तरह के गीत? किशोरदा के बहुत सारे किशोरदा के ऐसे गाने हैं जो मुझे बहुत ही पसंद आता है और मैं उन्हें गुनगुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। जब भी कोई मुझसे बोलता है कि यार थोड़ा गाना गा दे तो मैं मुसाफिर हूँ यारो पिक कर लेता हूँ, कुछ ऐसे ही किशोरदा के गाने मैं पिक करके मैं गाना शुरू कर देता हूँ। कन्नड़ा में यदि कोई बोलता है तो कुछ कहा तो एसपी बालासुब्रमण्यम साहब का मैं गाना गा देता हूँ। वो होता है कि वो जो टॉप ऑफ द माइंड गाने होते हैं ना वो ऐसे गाने मैं बहुत ही पसंद करता हूँ।
0: मतलब आप कैटेगराइज कर रहे हैं कि आप सिर्फ किशोर कुमार जी के गाने गाते हैं। अगर इसको फर्दर कैटेगराइज करते हुए कहें कि आप रोमांटिक गाते हैं, सैड गाते हैं, अच्छे हंसने वाले गाते हैं, मोटिवेशनल गाते हैं, मेलोडी बेस्ड गाते हैं, म्यूजिक बेस्ड गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ किशोर
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किशोरदा अलग अलग मूड के गाने मतलब इतने सरलता से गा चुके हैं तो हमें कैटेगराइज करने का कोई हक नहीं बनता एज अ सिंगर, एज अ लिसनर, है ना। तो सैड, मैड, ग्लैड ऐसा एक थीम अगर हम रख दे तो किशोरदा के सारे गाने उसमें फिट हो जाएंगे। तो मैं ऐसे कोई सब कैटेगराइज नहीं करता, जो दिल को लगा, मन को लगा कि आज वो गाना गाना है तो गा दिया आज।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी गायक को ऐसा ही होना चाहिए, जब जिस वक्त जो मूड हो उसको गाएं और अपने को आनंद लें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इन गीतों का हम आनंद उठाएं जो राघवेंद्र जी ने हमारे लिए रिकॉर्ड किए।

0: बहुत खूब राघवेंद्र भाई, बहुत खूब। चलिए, आपने जब आप अपने बारे में बता रहे थे तो आपने कहा कि आजकल का जो दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आज मतलब आप जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं आप, तो मैं तो कोई मतलब आईटी इंडस्ट्री वो नहीं हूँ, टेक्नीशियन या आईटी ग्रेजुएट नहीं हूँ, मुझे आईटी के बारे में कुछ नहीं पता है, और बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको ज़रूर पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे सुनकर या मेरे हिसाब से एक नॉर्मल रूटीन लेमैन के लिए, मैं एक लेमैन हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मायने है चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे जाके पोस्टर बनाना। मैं चैट जीपीटी पे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन मोशन पूछना तो स्टुपिडिटी है। मैं उसको बोलता हूँ कि भैया मेरे को इस तरीके का पोस्टर चाहिए, उसमें ये रंग डाल देना, उसमें ये इमोशंस डाल देना, ये लिख देना। दैट इज द बेस्ट यूसेज ऑफ एआई फॉर मी। तो आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है देशमुख भाई, आगे के 10 सालों के बाद हमारे जैसे लेमैन खत्म हो जाएंगे और कुछ जो नई जनरेशन आएगी वो एआई को कुछ और अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही होगी क्या? सो व्हाट इज द फ्यूचर यूसेज ऑफ एआई, माय रियल क्वेश्चन इज।
1: जी, एआई आमतौर पे कई सारे हम जैसे लोग भी हैं जो उसको यूज करते हैं या पढ़ाते हैं। हमने भी कई बार पोस्टर ही बनाया है चैट जीपीटी, जेमिना या बहुत सारे ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिन्हें कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं। लेकिन आजकल जो चल रहा है, जो मेरा नजरिया है और जो 30 साल मैंने टेक इंडस्ट्री में गुजारा है, उसको देखते हुए मैं बता सकता हूं कि एआई जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है। और ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे फोन्स में भी एआई जमा हुआ है, हमारा हम जो सेल्फी वगैरह लेते हैं उसको भी वो ठीक कर देता है, हमें तो हीरो जैसा दिखा भी देता है वो कभी कभी, है ना। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में वो उसका इस्तेमाल होने लग गया है। हम आउटडेटेड नहीं होंगे बिकॉज ह्यूमन इंट्यूशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गो हैंड इन हैंड। आज के तारीख में लोग, बड़े लोग कहते हैं टेक इंडस्ट्री के काम चला जाएगा आदि इत्यादि, कुछ नहीं होगा, पीपल विल पिवट। हम लोग कुछ अलग दिशा में कुछ और करने लगेंगे, लेकिन एआई को हमारी बात सुननी होगी बिकॉज ह्यूमन इंट्यूशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ऑलवेज गो टूगेदर। ये मेरा मानना है, दावा करता हूं मैं कि ह्यूमन इंट्यूशन विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन।
0: ऑल राइट, दो ऑफ कोर्स आई हैव अ क्वेश्चन हियर, लेकिन ये बातचीत लंबी हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूसेज बढ़ती है, बढ़ती जा रही है, और हमारा इंट्यूशन कम पर कम होते जा रहे हैं बिकॉज हम और ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं एआई के ऊपर, तो हमने सोचना बंद कर दिया है। हम इंट्यूटिव है ही नहीं कि हम पोस्टर बनाए तो खुद अपने हाथों से बनाना हमने बंद कर दिया है, चैट जीपीटी को बोल देते हैं वो बना देता है। सो वेयर इज द इंट्यूशन इज गोइंग। सो दो ऑफ कोर्स ये लंबा टॉपिक हो जाएगा बॉस, कि हमारी इंट्यूशन आप जैसे कह रहे हो तो वो साथ में साथ मेरे को तो नहीं लग रहा। एनीवेज, अभी हम लोग संगीत के इस प्रोग्राम में हैं, तो चलिए जब तक हमारा इंट्यूशन काम कर रहा है, जब तक हमारा टैलेंट हमारे साथ है, जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राघवेंद्र देशमुख जी की आवाज में गाने ना लग जाए, तब तक राघवेंद्र जी की ओरिजिनल आवाज में ये प्यारे से गीत सुने, बाकी फ्यूचर में देखेंगे। दोस्तों आइए मजे लें इन गीतों का।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: तो राघवेंद्र भाई, दूसरी बात आपने कही थी कि आपको फिल्मों का बहुत शौक है, एंड आई सिंसियरली अप्रिशिएट, क्योंकि फिल्मों का शौक मुझे भी बहुत ज्यादा है। वो बात थोड़ी सी अलग है कि मुझे आई मीन आई वुड लाइक टू सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर सेइंग दिस कि मुझे हिंदी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती हैं। बॉलीवुड मूवीज मुझे बहुत ज्यादा जमती नहीं है, क्योंकि 90% मूवीज, जो मेरा मानना है, वो या तो स्टार सेंट्रिक होती हैं कि जी सलमान खान के ऊपर बन रही है मूवी, सो मूवी हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट्स कॉन्टेंट, इट्स म्यूजिक, इट्स स्टोरी। म्यूजिक मूवी इज एंटायरली इज सपोज टू बी अबाउट सलमान खान, खत्म। तो स्टार सेंट्रिक होती हैं, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, मूवी क्या है उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। इस वजह से मैं तो खैर थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल मूवीज देखने की कोशिश करता हूँ, बट बात आपकी पसंद की हो रही है। सो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज एक्चुअली डू यू लाइक, क्योंकि आपने कहा आप बहुत सारी मूवीज देखते हो, सो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक? रोमांटिक, एक्शन, सस्पेंस, सैड, मैड, ग्लैड, वो जो आपने बीच में कहा बड़ा अच्छा कहा था। सो व्हाट काइंड ऑफ

0: मूवीज डू यू लाइक?
1: तो मैं सैड तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि फिल्में एक जरिया है अपने आप को अनवाइंड करने का, ऐसा मेरा मानना है। तो सैड मूवीज क्यों देखना, दर्द तो ऑलरेडी है हमारे इर्द गिर्द, है ना। तो ग्लैड मूवीज हो, एक्शन मूवीज हो, जिसमें ज्यादा दिमाग को खर्च करने की जरूरत ना हो और जिसमें अच्छे गाने हो, तो वो ऐसे फिल्में मैं देखता हूँ। मैं शोले फिल्म का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, मतलब अनगिनत बार शायद देख चुका हूँ शोले, क्योंकि वो फिल्म मुझे, हालांकि बच्चन साहब तब स्टार बने नहीं थे, लेकिन उस फिल्म में कई सारे ऐसे स्टार्स हैं, और जो बहुत बड़ा स्टार उस फिल्म का है वो है कहानी उस फिल्म की उस समय के लिए। तो वैसे फिल्म्स मैं पसंद करता हूँ जिसमें ज्यादा दिमाग को जोर ना देना पड़े, हंसे देखे निकल जाए, याद करे उन गानों को, उन फिल्मों को।
0: ऑलराइट, तो फिर भी अगर बिल्कुल ऑन द लाइटर साइड पार्ट ऑफ इट, अगर मैं यूं ही पूछने की कोशिश करूं आपसे कि अपनी तीन चार फेवरेट फेवरेट मूवीज के नाम बताइए, आपने एक तो बता ही दिया, शोले।
1: जी, तो शोले है, नमक हलाल है, तो वो दोनों तो ऑल टाइम फेवरेट्स रहेंगे मेरे लिए। और एक है दिल चाहता है, जो साल 2000 में बना था, मुझे अहेड ऑफ टाइम्स लगा वो, बिल्कुल ही परफेक्ट फिल्म लगा मुझे वो। और द गुड द बैड एंड द अगली, जो बहुत पुरानी काउबॉय फिल्म है हॉलीवुड की, तो मुझे ये तीन चार फिल्में जो हैं वो बहुत ही पसंद है। और इनमें से तीन हिंदी फिल्मों के नाम जो मैंने लिए, शायद उनके डायलॉग्स भी कभी कभी मैं ऐसे ही बोल देता हूँ।
0: जी, आई गेट इट। बिल्कुल अपने टाइम की जिनको कहना चाहिए स्तंभ, मतलब वो क्या टर्म मुझे यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल पैरागॉन, एकदम ऐसी फिल्में जिनके आगे पीछे भी कोई नहीं आया कभी तक। स्पेसिफिकली आपने मेरी ही पसंद की एक मूवी का नाम लिया, द गुड द बैड अगली, अमेजिंगली ब्यूटिफुल मूवी, 3 घंटे की वो मूवी, मैं आज भी कई बार देखने की कोशिश करता हूँ। बहुत खूब, तो दोस्तों आप विचार कीजिए कि कौन सी मूवीज आपको पसंद आती हैं, और हमें बताइए अगर पॉसिबल हो कि आपको कौन सी मूवीज अच्छी लगती हैं और क्यों। आइए आगे बढ़ते हुए इन गीतों का आनंद उठाएं, राघवेंद्र जी की ही आवाज में जो उन्होंने गाए।

0: बहुत खूब राघवेंद्र भाई, अगर आप इजाजत दें और मुझे माफ करें, मैं एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बात करना चाह रहा हूं। मेरे दिमाग में कूद रहा है, मैं उसको चुप नहीं करा पा रहा हूं, तो पूछ लूं अगर आप कहें तो।
1: जी बिल्कुल सर।
0: आपने कहा कि आप वो स्पोर्ट देखना पसंद करते हैं जो इंडिया का पैशन है,
1: जी
0: दैट इज क्रिकेट।
1: जी
0: आपको नहीं लगता राघवेंद्र भाई कि हम लोगों को क्रिकेट को दरअसल अपना नेशनल स्पोर्ट्स घोषित कर देना चाहिए? हॉकी को खामा खामे रखा हुआ है देखने देखने के लिए, जब 99% दुनिया इंडिया और वही अंग्रेजों के दिए हुए खेल को ही देखना पसंद करती है, तो उसे हम नेशनल स्पोर्ट क्यों नहीं घोषित कर देते? और हॉकी में ऐसा क्या नहीं है जो इंटरेस्ट हमको क्रिकेट में आता है वो हॉकी में क्यों नहीं आता? सो देयर आर टू क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड।
1: जी तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है मेरे हिसाब से, जो स्पोर्ट्स के प्रेमी है। मैं हॉकी भी फॉलो कर रहा हूँ। हाल ही में इंडिया ने बड़े बड़े टीम्स को भी डिफीट किया है, हराया है हॉकी में। तो ऐसा है कि इंडिया अच्छा कर रहा है। अब क्रिकेट को ये बनाना चाहिए नेशनल स्पोर्ट या नहीं, ये तो मैं मानता नहीं हूं कि कोई नेशनल एक स्पोर्ट होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा कवरेज मिलता है, स्टार्स बन जाते हैं ओवरनाइट। वही हम हॉकी या अभी अन्य स्पोर्ट्स को देखें, अभी एक एथलेटिक मीट भी हो रहा है कहीं शायद उड़ीसा में, तो वहां कई सारे ऐसे नेशनल रिकॉर्ड्स बन रहे हैं आज के तारीख में। उसका ज्यादा कवरेज होता नहीं है, ना नेशनल मीडिया पे होता है ना सोशल मीडिया पे, तो एक संतुलन आज के तारीख में नहीं है, वो मेरा मानना है। तो अगर कोई ऐसा एक्शन ले के 3-4 और अधिक स्पोर्ट को ऊपर ले आए और क्रिकेट को स्पोर्ट से हटा करके वो एंटरटेनमेंट कर दे, तो शायद बैलेंस आ जाएगा, मेरा ये मानना है।
0: बट पॉइंट ये है ना मेरे भाई, कौन करेगा ये? आप किसको करने के लिए बोल रहे हो उसको? आप, मैं और आप ही तो हैं जो कुछ करेंगे। इफ एट ऑल वी स्टॉप वॉचिंग क्रिकेट, क्रिकेट विल गो डाउन। इफ एट ऑल वी स्टार्ट वॉचिंग ऑल दीज एथलेटिक इवेंट्स, दोज विल कम अप। हम लगातार अपने टीवी को ट्यून ही करते हैं क्रिकेट के लिए, तो बाकी तो मरेंगे ही मरेंगे। अब किसको आप हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा दे कि वो उसको बंद कर दे, वो उसको चालू कर दे?
1: हमारा सब, हम सबको ऐसे मिल करके करना चाहिए। ये एक डिपार्टमेंट का या एक संस्था का वो इंचार्ज नहीं है, ये हम सबको मिल करके बनाना चाहिए, है ना? तो कई सारे लोग हैं जो ओलंपिक मूवमेंट को, मेरे दोस्तों के सर्कल में 2 लोग हैं जो आर्चरी वगैरह इनको सपोर्ट करते हैं, जो ओलंपिक मूवमेंट है उनको उसमें सपोर्ट करते हैं, यानी पैसा देते हैं उनको और उनके कोचिंग

क्रिकेट। चलिए जाने देते हैं दोस्तों, विचार कीजिए, आप लोग विचार कीजिए कि क्यों हमारा देश ओलंपिक्स में या किसी में जाकर मेडल नहीं ला पाता, क्योंकि शायद हम क्रिकेट के पीछे दीवाने हैं, मे बी। चलिए विचार कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या ठीक हो सकता है। तब तक राघवेंद्र जी के ही गाए हुए इनकी तो का तो आनंद उठाएं। सो लेट्स मेक इट अ बैलेंस, लेट्स लाइक म्यूजिक, लेट्स लव म्यूजिक एंड एंजॉय म्यूजिक।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गायकी, चारों तरफ से मजा आ गया गायकी सुन के। तो राघवेंद्र भाई, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने भी सुनने वाले संगीत प्रेमी, कम से कम जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके फैन बने हैं, आपके गीतों को उन्होंने निहारा है, बहुत प्यार से सुना है, बहुत इंजॉय किया है, उन सब के लिए क्या कहना चाहोगे आप? कुछ मैसेज है आपके पास, कोई भी बात दिल में है जो हमारे दिल तक पहुंचे, कह डालिए।
1: तो ये गूगली क्वेश्चन था और यहां पर भी मैं क्रिकेट लेके आ गया।

0: सोचते सोचते म्यूजिक मेरे लिए एक ऐसा जरिया है, और मैं जानता हूं कि अनगिनत ऐसे लोग हैं हमारे साथ में जो म्यूजिक के बिना जिंदगी अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। तो मेरे लिए वो है स्ट्रेस बस्टर, जिसे कह सकते हैं, या मूड मेकर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ जब मैं उदास हूं तो तब मैं म्यूजिक सुनता हूं, नहीं, कि आई एम ऑलवेज इन टू म्यूजिक, मैं सुनता ही रहता हूँ गाड़ी चलाए वक्त, या फिर मैं अकेले बैठा बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ करता रहता हूँ। तो म्यूजिक एक जरिया है जिससे हम सब लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ बैंगलोर में जिनसे मैं संगीत के जरिए मिला हूँ,
1: जी
0: जो हॉबी ग्रुप्स हैं उनके साथ मैं मिलता हूँ, तो सीखने का बहुत मुझे मौका मिला है उन लोगों से। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि म्यूजिक इज सेकेंड टू गॉड मेरे लिए और बहुत सारे हम लोगों के लिए। तो हमें सुनते रहना चाहिए म्यूजिक, हमें बनाते रहना चाहिए म्यूजिक, और अपने जीवन में कई सारे मूड्स होते हैं उसके हिसाब से आप अपने पसंदीदा गाने सुने, उन्हें याद करें, गुनगुनाए, एंड डोंट वरी। मैं तो कभी चिंता नहीं करता हूं कि ये सुर ऐसे बैठा कि वैसे बैठा। ऐप्स हैं जो बताते हैं कि ये आपका पिच ऊपर नीचे चला गया आधे इत्यादि, लेकिन आई एंजॉय द सॉन्ग, आई एंजॉय द म्यूजिक। तो आई वुड ऑल्सो विश दैट ऑल ऑफ अस कम टुगेदर फॉर दिस वंडरफुल थिंग कॉल्ड म्यूजिक।
1: ब्यूटिफुल, क्या बात कही, मजा आ गया बॉस। कि म्यूजिक को एंजॉय कीजिए किसी भी तरीके के, क्योंकि प्रकृति ने बनाया है म्यूजिक, वो हमारे साथ तो सिंक्रोनाइज करेगा ही, रिलेट करेगा ही, रिजोनेट करेगा ही। राघवेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपसे बात करके दिल खुश हो गया, खुल गया, थैंक यू।
0: थैंक यू समीर भाई, थैंक यू रेडियो SN, और थैंक यू तमाम जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब रेडियो SN। हम सभी लोगों को साथ मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे इस मौके से क्या क्या कह सकते, निहारने के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू।

चल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को